0: पुनेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले, पुनेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले।
1: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा।
2: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग, द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं, द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की जोड़ में सबको बांधता पुनरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज़।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज़ 107.8 FM। खुश रहो।

0: जानने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है, आजकल पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूं, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होने चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: चल चल चल मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल कटारा की छिके।
2: हे महामाया, तेरी सदा ही जय हो। तूने भक्ति का दान देकर एक भक्त का जीवन सफल कर दिया है। इस नाचीज को अपने चरणों की शरण देकर उसका जीवन खास बना दिया है। अब ये भक्त ताउम्र तेरे चरणों में रहना चाहता है। सदैव उसकी सेवा को स्वीकार करते रहना। हे दातिये,

हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुणेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। हम बात कर रहे थे जीवन की सिचुएशंस के बारे में। जब देखा हमने कि परिस्थितियां हमसे ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही हैं और आने वाले वक्त में तो ऐसा और दिखता जा रहा है। ग्लोबली अगर हम देखें या पर्सनल लाइफ में भी देखें कि सिचुएशंस आती जाएंगी और मुश्किलें, मुसीबतें, और अभी तक हम ये भी बातें करते आ रहे थे कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। लेकिन रियल सेंस में जब हमने देखना शुरू किया, हमें पता चला कि कोई भी मुश्किल, कोई भी प्रॉब्लम एक्चुअली एक परिवर्तन, एक चेंज है। और उसको हैंडल करने के लिए या उसको कैसे उससे गुजरना है, उसके लिए हमने देखा था कि हमारे पास हम दो तरीके अभी तक कर रहे थे। या तो हम उससे भिड़ जाते थे उस सिचुएशन से, या फिर हम अपने आप को गिव इन करके उसके साथ बह जाते थे। लेकिन अगर हम जहाँ हम खड़े हैं वहीं खड़े रहें और उस सिचुएशन को गुजर जाने दें, दैट इज़ वेयर यू नो द राइट सेंस हमारे पास आती है। ऐसे में अगर देखें तो पिछली कड़ी में ही हमने बात की थी कि सही सोच हमारी बहुत मदद करती है, पॉजिटिव थिंकिंग, जिसके बारे में कितना कुछ हम पढ़ चुके हैं, लेकिन उसे सही तरीके से कैसे लेना है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आगे भी हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारा सौभाग्य है, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, अगर पिछली कड़ी को देखें तो हमने यही कहा था कि हमारा ही क्रिएट किया हुआ थॉट हमारी डेस्टिनी तय करता है। आप जैसे हम एक जर्नी हमने की थी आपके साथ,
1: आपको सब जर्नी याद है पूरे?
0: मैं ट्राई करती हूँ कि वो जो एक सोच मेरी, एक थॉट मेरा फीलिंग को क्रिएट करता है, और जब बार बार वो फीलिंग आती जाए, हम मुसीबत ये ना समझकर परिवर्तन समझें, चैलेंज समझें। अब परिवर्तन तो होता ही है, हर पल परिवर्तित हो रही है ज़िंदगी, हम सब बिलीव करते आ रहे हैं, हम सब मानते हैं, लेकिन इसे एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है कि मेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन हो जाएगा। उस परिवर्तन में गुडनेस कैसे देखनी है, उस परिवर्तन को रिस्पॉन्ड कैसे करूँगा, उसमें मेरा क्या रिएक्शन होगा, ये मैं खुद तय कर सकता हूँ, मैं खुद सक्षम हो सकता हूँ। और इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए आज का सिलसिला भी शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: एक बार फिर से हम सिस्टर शिवानी उस बात को लेते हैं कि जो जिंदगी में हो रहा है, आज ही नहीं, कल ही नहीं, बल्कि आने वाले वक्त में भी, वो सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें आधा वक्त भय में गुजर रहा है मेरा, आधा वक्त उससे जूझने में गुजर रहा है, आधा वक्त और एनर्जी, और आधा वक्त उसे एक्सेप्ट करने में ही, आधे से ज़्यादा वक्त कि ये मेरे साथ हो गया। चाहे वो डिवोर्स केस की बात की थी, चाहे हमने ये देखा था कि बच्चा मेरा जो है वो, अच्छा इनफैक्ट हमने डेथ की भी बात की थी, लेकिन एक और बहुत बड़ी सिचुएशन, बच्चा मेरी ज़िंदगी से कहीं और जा रहा है, वो चेंज हो रहा है, या उसके जीवन में कुछ ऐसा घट गया है जो मेरे लिए स्वीकार नहीं हो पा रहा। तो इन सब में जो मेरा वक्त जा रहा है, एक थॉट जो है वो उसे चेंज कर सकता है।
1: तो वही जो आपने कहा ना, जूझना, जूझना भी रिस्पॉन्स है। परिस्थिति तो आ गई, अब हम ट्राई करेंगे कि अब हम परिस्थिति को एक तरफ रखते हैं, अब हम रिस्पॉन्स पर चलते हैं, क्योंकि येस वी हैव अंडरस्टूड दैट इट्स वेरी बिग, बट नाउ स्टिल व्हाट डू आई हैव टू डू, आई कैन नॉट चेंज द सिचुएशन, नाउ लुक, लेट मी लुक एट द अदर साइड ऑफ द टेबल, एंड द अदर साइड ऑफ द टेबल आई एम स्टैंडिंग। यू नो सिचुएशन वहाँ है, दिस साइड आई एम स्टैंडिंग, यू आर नॉट इन माई कंट्रोल, इज दिस इन माई कंट्रोल। तो कहीं ना कहीं पहले अपने फोकस को हम शिफ्ट करें कि परिस्थिति है, मान लिया, अब एक साइड पर उसको रखते, बट एनी सिचुएशन, एनी चैलेंज, फर्स्ट थिंग डिमांड्स अ रिस्पॉन्स। परिस्थिति आएगी तो रिस्पॉन्स होना ही है, दैट्स द फर्स्ट थिंग। कोई भी परिस्थिति आपके बिना रिस्पॉन्स के नहीं आगे जाती है, लेकिन अब रिस्पॉन्स क्या और कैसा, दैट्स इन माई हैंड।
0: और उसमें एक मुझे जो दिख रहा है, मेरे को जो समझ में आई एक बात की, जैसी परिस्थिति आती है पहली चीज होती है जो रिस्पॉन्स की बात करती हूँ, पेन। पेन हिट्स अस, और कितनी बार लोग बोलते हैं
1: ना, पेन हिट्स अस, सी सच अ कॉमन सेंटेंस, लॉट ऑफ, वो दर्द मेरी तरफ आ गया, या दैट पेन हिट मी। नाउ व्हेन आई से पेन हिट्स अस, दैट मींस आई एम सेइंग इट्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। पेन हिट्स अस मतलब, तो जैसे कि किसी ने मुझे मारा आकर, तो पेन हिट्स अस मींस द पेन इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। या हमने अभी देखा कि परिस्थिति बाहर से आएगी, एंड जैसे ही परिस्थिति आएगी, आई हैव टू क्रिएट अ रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स किसने क्रिएट किया? आपने क्रिएट किया, मैंने क्रिएट किया। अब रिस्पॉन्स क्रिएट करना मतलब क्या, क्रिएट करना
0: थॉट, क्रिएट
1: थॉट, क्रिएट करना। इमीडिएट परिस्थिति थॉट, परिस्थिति थॉट, दिस इज गोइंग ऑन कंटिन्यूसली. अब परिस्थिति आई कितनी भी बड़ी, थॉट किसने क्रिएट किया?
0: एक्चुअली मुझे तो पता नहीं चलता ना कि मैंने क्रिएट किया.
1: बट नाउ द व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज दैट कि फोकस, यस सिचुएशन वेरी बिग, नाउ रिस्पॉन्स किसने क्रिएट किया? मैंने क्रिएट किया. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्स? रिस्पॉन्स मतलब क्या कि फर्स्ट चीज मैंने क्या क्रिएट की, जैसे आपने कहा एक थॉट क्रिएट की, थॉट क्रिएट की, फीलिंग्स क्रिएट हुई, एक्शन में आ गया. अब एक्शन किसने क्रिएट किया? मैंने क्रिएट किया. दर्द क्रिएट किया किसने? क्रिएट किया
0: मैंने, क्रिएट किया,
1: क्योंकि दर्द इज द रिस्पॉन्स ना, और फिर वो एक्शन में आया. अब जैसे एक्शन में आएगा उसका रिजल्ट फिर सिचुएशन के रूप में फिर मेरे सामने आएगा. लेकिन फिर जब सिचुएशन मेरे सामने आएगी फिर क्या क्रिएट किया? अगेन आई क्रिएटेड अ थॉट. नाउ बिकॉज इट्स लाइक टू पीपल आर हियर, सिचुएशन रिस्पॉन्स, सिचुएशन रिस्पॉन्स, क्योंकि मेरा सारा टाइम इसको देखने में जा रहा है सिचुएशन को, तो मेरा ध्यान इस तरफ तो जा ही नहीं रहा कि आपका रोल क्या है इसमें प्ले करने में. तो इसलिए हमने समझा कि रिस्पॉन्स तो ऑटोमेटेड है,
0: नेचुरल रिएक्शन है. नेचुरल रिएक्शन, सो मेनी टाइम्स वी से दैट कि इट्स अ नेचुरल रिएक्शन.
1: नेचुरल रिएक्शन क्यों? क्योंकि मैंने सोच समझ के रिस्पॉन्स नहीं क्रिएट किया, एक ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स क्रिएट किया. यू नो, एक जैसे हमारे पास ईमेल्स आते हैं, एक है कि उस ईमेल को पढ़ के उसके ऊपर बैठकर सोचकर एक आंसर हम लिखेंगे, और एक है कि एक ऑटोमेटेड रिस्पांस क्रिएट कर दिया है,
0: मुझे आता है.
1: यस, सो एवरी ईमेल व्हेयरएवर वी सेंड टुडे आउट इनटू द वर्ल्ड, आपको इमीडिएट ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स आता है ना. आपकी वहां पहुंची नहीं होगी, अभी आपने सेंड बटन दबाया होगा, 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको वहां से जवाब आया. सोचा समझा हुआ जवाब नहीं था, ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स था. तो ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स मतलब जो एक मेरी पुरानी प्रोग्रामिंग बहुत पहले से फिक्स करके रखी हुई है सिस्टम के अंदर, उसने क्वेश्चन को समझा भी नहीं, उसने परिस्थिति को देखा भी नहीं, लेकिन उसके पास उसका रिस्पॉन्स फिक्स्ड है. एंड दैट इज दैट रिस्पॉन्स, वेदर इट्स ऑफ पेन और फियर और व्हाटएवर, बट इट्स एन ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स. व्हाई? बिकॉज आई डिड नॉट टेक आउट टाइम internally to look at whether I have a choice to create a response, whether I need to sit and think what has to be my response. I just said natural response. Gussa, natural response. Dard, natural response. Stress, natural response. तो उसको फिर हम reaction कहते हैं. जैसे दो words है हम बार बार use कर रहे हैं, reaction, response. तो reaction है
0: Automated. हम बार बार ये भी देखते हैं सर शिवानी कि दूसरा कोई होता तो वो क्या करता. हम ये भी कहते हैं ऐसे ही तो रिस्पॉन्ड करता, ऐसे ही तो उसका रिएक्शन.
1: क्योंकि ज्यादातर फिर हम किसको देख रहे हैं? मेजोरिटी अराउंड अस आर लिविंग विद ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेस. और क्योंकि फिर मेरे आसपास मेजोरिटी लोग ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स पे चल रहे हैं, तो फिर मैंने एक और बिलीव सिस्टम क्रिएट कर लिया कि दिस इज द राइट वे टू लिव. कि अगर एक कुछ गलत करेगा तो ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स है कि गुस्सा तो आएगा ही. मैंने अपने आप को ऑप्शन नहीं दिया बीच में कि डू आई हैव अ चॉइस, कितना गुस्सा करना है, कब तक करना है, किस पर करना है, कितने समय तक उसको पकड़ कर रखना है. ये सिचुएशन पर डिपेंडेंट है.
0: नहीं, इनफैक्ट यस, बट मेरे ऊपर है, आई कैन मेक इट आउट. बट एक्चुअली अगर मैं देखूं तो अभी तक जिंदगी में यही हो रहा था कि इट जस्ट टेक्स ओवर
1: बिकॉज आपने इस पर अटेंशन ही नहीं दिया ना. आप यहाँ जिसकी एनर्जी, जहाँ अटेंशन जाएगी एनर्जी फ्लोज. वी हैव वर्क्ड विद दिस लॉ थ्रू आउट, वेर एवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज. तो जहाँ आप ध्यान देंगे, जिस साइड पर आप अटेंशन डालेंगे, आपकी सारी शक्ति, जितनी भी शक्ति आपके पास, वो उस साइड पर जाएगी. अब ये दो साइड ऑफ द टेबल है, सिचुएशन, माई स्टेट ऑफ माइंड विच इज रिस्पॉन्स. इस तरफ तो ध्यान ही नहीं है
0: पूरा. हाँ,
1: इस तरफ तो ध्यान ही नहीं है, क्योंकि इसको तो कह दिया कि ये तो ऑटोमेटिक है. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ क्यों ध्यान नहीं है? क्योंकि हमने सोचा ये मेरे कंट्रोल में नहीं है. ये तो गुस्सा तो आना ही है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है. मेरे कंट्रोल में मुझे लगा कि वो है, वो परिस्थिति मेरे कंट्रोल में है. तो जो चीज मेरे कंट्रोल में है, मैंने अपना सारा ध्यान किस तरफ लगाना शुरू कर दिया? उस तरफ कि मैं इस सिचुएशन को किसी तरह चेंज कर दूं. और सिचुएशन को चेंज करना मतलब सामने वाले लोगों को चेंज करना,
0: और वो टेंशन में ही मैं सब कुछ कर. ओह यस,
1: सो नाउ राजयोगा मीन्स, स्पिरिचुअलिटी मीन्स शिफ्ट फोकस दिस साइड. Situation, yes, not in my control. हर सिचुएशन में, भले उस टाइम नहीं भी याद रहे लेकिन बाद में भी बैठकर, क्योंकि जो बाद में बैठकर आप इंट्रोस्पेक्ट करके स्टडी करोगे वो आपको नेक्स्ट सिचुएशन में हेल्प करेगी. कई बार ठीक है ये सिचुएशन आई, मैंने नहीं ठीक से हैंडल किया, आई वेंट थ्रू पेन, लेकिन इफ आई सिट बैक एंड आई थिंक ओवर इट, आई विल बी रेडी फॉर माई नेक्स्ट सिचुएशन एंड दैट इज वॉट इज इन माई कंट्रोल. जैसे फॉर एग्जाम्पल बीमारी फैल गई, लेट्स से अभी ये जो स्वाइन फ्लू फैल गया, फैल गया, यू ट्राई टू स्टॉप दैट, यू कांट स्टॉप दैट. तो वट आर बी ट्राइंग टू डू, हाउ डू आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. तो आप लोगों को देखेंगे वो लोग मास्क लगाकर घूम रहे हैं, लोग हर जगह टेम्परेचर, वट एवर मेजर्स दे आर टेकिंग, वो फ्लू को तो नहीं रोक सकते ना, वो किसको बचा सकते हैं, हम अपने को बचा सकते हैं. सो दिस इज इंटेलिजेंस ना. अगर आप सोचे आप वायरस को ढूंढ के उसको रोकने की कोशिश करेंगे, इट्स नॉट हैपनिंग. तो एवरी कंट्री एवरी नेशन व्हाट हैव दे डन, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है जिससे हम अपने को बचा सकें ताकि ये एपिडेमिक फैले नहीं. अब जिस समय एंगर और स्ट्रेस और ये डिप्रेशन हिट कर रहा था, हमने सारा ध्यान किस पर दिया,
0: सिचुएशन
1: वायरस. वो सारा वायरस काम है, उसको वायरस को ही रोक दूं तो मुझे दर्द नहीं होगा. अगर हमने ध्यान अपने ऊपर उसी समय से देना शुरू कर दिया तो बीमारी कैच ही नहीं होगी ना, बीमारी भी पकड़ ली और उसके बाद भी बीमारी को ना ध्यान देते हुए परिस्थिति को ही देते गए, तो परिस्थिति तो क्योंकि मेरे कंट्रोल में थी नहीं तो वो आई नहीं, लेकिन बीमारी मेरी दिन ब दिन
0: बढ़ती
1: गई. वी स्टार्टेड 20 इयर्स बैक विद अ वर्ड कॉल्ड टेंशन, चिंता. स्ट्रेस वर्ड नहीं था 20 साल पहले. आई रिमेम्बर व्हेन वी वर इन स्कूल देयर वाज नो सच वर्ड एज स्ट्रेस. स्ट्रेस हमारे लिए सिर्फ साइंस में आता था कि मेटल का स्ट्रेस कितना होता है. पर्सनल का स्ट्रेस ऐसा कोई शब्द नहीं था, इट वाज नॉट देयर इन द वोकैबुलरी. इस 8-10 साल के अंदर स्कूल के बच्चे बच्चे को ये शब्द मालूम है, स्ट्रेस. आज स्कूल के बच्चों को डिप्रेशन मालूम है, एंड नॉट जस्ट एज अ वर्ड, एज एन एक्सपीरियंस. दे आर एक्सपीरियंसिंग इट. क्यों? क्योंकि जब वो बीमारी स्ट्रेस के लेवल पर थी, रोका नहीं, अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया. सिलेबस को क्या करे, कॉम्पिटिशन को क्या करे, बाहर बैग्स को हल्का कर दो, विच इज ओके, इट्स इम्पोर्टेंट, बट बीमारी कहाँ है, फेस किसको करना है उस सिलेबस को, उसकी ताकत को बढ़ाए. नो वन वॉज थिंकिंग अबाउट दैट, बिकॉज जो लोग सोच रहे थे वो भी तो खुद भी तो अपने ही दर्द में है. तो वो वर्ड स्ट्रेस से बढ़कर आज डिप्रेशन पर आ गया है. टुडे डिप्रेशन इज ग्रेजुअली बिकमिंग अ वेरी, यू नो, जैसे कि एक आम बुखार की तरह है, किसी को भी हो रहा है.
0: शिवानी, बहुत लोग ये बोलने वाले हैं, मतलब मेरे, मैं भी अगर सोचूं कि जब सिचुएशन आ रही है तो उसको ग्रैपल करने का कोशिश करूं, उसको सेव करने की कोशिश करूं, या अपने ऊपर काम, मतलब अपने ऊपर देखने लग जाऊं, यू नो, दिस इज लाइक, उस वक्त मेरा पूरा फोकस इस कि मेरे को सिचुएशन को उस पर कैसे सेव करना है.
1: सिचुएशन आपके कंट्रोल में है नहीं, दैट्स द फर्स्ट बॉटम लाइन. यस, हमें करना है कि व्हाट विल गेट द बेस्ट रिजल्ट. तो बेस्ट रिजल्ट के लिए मुझे दोनों में से फिर चूज करना पड़ेगा, विच वन इन माई कंट्रोल, विच वन आउट ऑफ माई कंट्रोल. अभी क्या हो रहा है, दो साइड्स है, सिचुएशन रिस्पॉन्स. हो क्या रहा है, चैलेंजेस जैसे आपने कहा, दिन ब दिन बहुत फास्ट स्पीड से चेंज की भी जो गति है ना, चेंज की भी एक स्पीड होती है. चेंज तो यस है, लेकिन चेंज जो अब हो रहा है, इट इज़ एट अ वेरी फास्ट रेट. अब ये भी तो हो सकता है इससे आगे आने वाली परिस्थितियां और कुछ लेकर आएंगे. हमें लग, इट्स नॉट टू गेट स्केयर्ड, अगेन दिस इज नॉट बीइंग पेसिमिस्टिक, हम डर नहीं रहे हैं, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड बाहर है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, किसी भी स्पीड पर जा सकता है, मेरे कंट्रोल में ये. लेकिन अब क्या हुआ, ये फास्ट बढ़ता गया, ये फास्ट घटता गया, तो जो गैप है उसके बीच में, चेंज और रिस्पॉन्स के बीच में, वो गैप बहुत बढ़ता गया. और क्योंकि ये गैप बढ़ता गया, क्या फीलिंग आई, मेरे अंदर शक्ति नहीं है टू फेस दिस,
0: गिव अप, देन यू नो लाइक, यस,
1: अ फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस, यू नो, शक्तिहीन, कि मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मेरे से ये दैट्स व्हेन वी हैव दोस काइंड ऑफ थॉट्स के मेरे से नहीं फेस होगा, मेरे जीवन जीने का कोई लक्ष्य नहीं. इतनी एकदम नेगेटिव थॉट क्रिएट करना कि मेरे जीवन का कोई फिर लक्ष्य नहीं है, जीने का कोई मतलब नहीं है, फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस. क्यों? क्योंकि वो गैप वॉज टू मच टू फेस. उसकी वजह से जो मुझे रिस्पॉन्स क्रिएट करना है, जब मैंने अपने आप को बता दिया कि मैं कमज़ोर हूँ, मेरे अंदर ताकत नहीं है इस परिस्थिति को फेस करने के लिए, तो जो मुझे रिस्पॉन्स क्रिएट करना है, आई एम नॉट एबल टू क्रिएट. एंड देन कम्स द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज, बिकॉज आई कैन डू इट, आई स्टार्ट ब्लेमिंग यू, कि ये सब जो मेरे साथ हो रहा है ना, ये सारा जो मुझे फेस करना पड़ रहा है, इसके लिए आप और पूरी दुनिया इसके लिए जिम्मेदार है।
0: भगवान तो आता
1: हाँ है। वो तो जब when I don't get anyone to blame, तो आई से ये उसकी वजह से हो रहा है, ये भगवान कर रहा है। तो ये तीन बहुत डीप चीजें सेट हो जाती हैं, फीलिंग ऑफ पावरलेस, शक्तिहीन, दूसरा नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड, एंड तीसरा ब्लेम। क्योंकि जैसे ही हम ब्लेम मोड में चले जाते हैं और उनकी तरफ उंगली उठाना शुरू करते हैं, तो फिर मेरा अपने पर काम करने वाला प्रोसेस तो बंद हो जाता है, आई स्टॉप इमिडिएटली। तो नॉर्मली क्या होता है, कोई भी सिचुएशन आती है, जितनी भी परिस्थितियां हमने देखी, जो आज हम जिसको नॉर्मल कहेंगे, नॉर्मल नहीं है लेकिन जो एक बहुत कॉमन हो गया है, जो हमारी थॉट क्रिएट होती है, फर्स्ट थॉट उस सिचुएशन को लेकर, वो ज़्यादातर आज नेगेटिव हो रही है। नेगेटिव थिंकिंग, बिकॉज वी सॉ कि आपको रिस्पॉन्स क्रिएट करना है, रिस्पॉन्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ थॉट। एक थॉट क्रिएट करनी है, दैट इज रिस्पॉन्स, और कुछ भी नहीं करना। और वो थॉट फिर एक्शन में आ जाएगी और वो एक्शन फिर आपका अनुभव बन जाएगा। लेकिन वो थॉट की क्वालिटी वो बहुत नेगेटिव की तरफ बढ़ती जा रही है। जैसे कि अपने लिए हम किस तरह की थॉट्स क्रिएट करते हैं, ये बहुत मुश्किल है। मेरे से नहीं हो सकता है, ये दूसरे लोग मुझे लाइक नहीं करते हैं, इसीलिए फिर उन्हें मेरा काम भी पसंद नहीं आता है, मैं ही सिर्फ क्यों बदलूं,
0: अब क्या होगा
1: मेरे साथ,
0: यू नो, ओह माय गॉड, इट्स द एंड, यू नो, ऐसे जो थॉट्स, एक्चुअली आई कैन मेक इट आउट नाउ, द मोमेंट देयर इज अ सिचुएशन, सपोज हमें कुछ भी पता चलता है, पहला जो वो है कि इट्स लाइक व्हाट टू डू नाउ,
1: ट्रू, सो दैट्स दैट नेगेटिव थॉट। एक है सेट ऑफ नेगेटिव थॉट्स फॉर माई सेल्फ, अपने प्रति हम नेगेटिव हो जाते हैं, मेरे से नहीं होगा, ये लोग मुझे कोई लाइक ही नहीं करता, मैं तो हुई ऐसी, मेरे से सब, मैं जो करना शुरू करती हूँ मेरे से गलत हो जाता है। सो अपने लिए एक नेगेटिव थॉट, अपने से स्टार्ट हुआ, उसके बाद औरों के लिए नेगेटिव थॉट, ये कोई काम करने का तरीका है, ऐसे थोड़ी करना होता है, ये इनको ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए था मेरे साथ, यू नो, अगेन I'm going to look at everyone around.
0: In fact, यहाँ पे बहुत बड़ी एक बात होती है कि मैं जब भी कोई काम शुरू करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे परिवार का साथ नहीं मिलता। There is nobody understands me.
1: Nobody understands me.
0: मैं कितना काम करना चाहती हूँ, मेरे किसी भी प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं मिलता। परिवार का ही सपोर्ट नहीं है तो कैसे आगे बढ़ेगा?
1: Now see the whole series of thoughts. किस क्वालिटी की है ये? अब अगर थॉट, क्योंकि बिकॉज वो बीज है आपका, बाकी आगे जो भी आपके साइकिल में होने वाला है, लेकिन बीज इस क्वालिटी का बो देंगे, फिर औरों के प्रति भी, विश्व के प्रति। टुडे द वर्ल्ड इज इन अ मेस, दैट इज वन कॉमन थॉट। माय कंट्री, इट सीम्स टू बी गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, इस देश का कुछ नहीं हो सकता।
0: अच्छा, और वो जो दुनिया में हो रहा है वही तो मुझे मिल रहा है,
1: वो तो फिर साइकिल आ गया ना, क्योंकि मेरी तो गलती वैसे भी नहीं थी, इट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। अच्छा, दुनिया में इतना सब हो रहा है, एक मैंने अगर चेंज कर भी लिया अपने आप को, उससे क्या फायदा होगा? सो ये इस क्वालिटी की जब थिंकिंग हमारी शुरू हो जाती है, एंड इट इज सच अ विशियस साइकिल, कि ये एक बार थिंकिंग का एक जो मैकेनिज्म बैठ के अंदर, तो एक से अगली थॉट फिर नेगेटिव ही होनी है, उसके बाद नेगेटिव ही होनी है, एंड आफ्टर सम टाइम नाउ वी आर नॉट बीइंग एबल टू कम आउट ऑफ दैट साइकिल। पॉजिटिव थिंकिंग इतना कॉमन शब्द हो गया है आज, एवरीवन इज सेइंग पॉजिटिव थिंकिंग। किताबें देखो तो सबसे ज्यादा किस टॉपिक पर है आज मार्केट में? पॉजिटिव थिंकिंग। दैट मीन्स समवेयर देयर इज अ वेरी डीप डिजायर कि मुझे अपनी थिंकिंग की क्वालिटी को बदलना है। लेकिन किताब पढ़ते समय, या सपोज ये सेशन देख रहे हैं, ये देखते समय ठीक लगेगा, लेकिन वो बदलेगा कौन? आई विल हैव टू कॉन्शियसली सिट डाउन, एंड व्हेन आई क्रिएट द नेगेटिव थॉट, इवन इफ उस समय नहीं हुआ मेरे से, चलो वो स्टेज को क्रॉस करे, बाद में बैठकर कौन करेगा? थिंकिंग अपने आप तो नहीं चेंज हो जाएगी, इट विल नॉट हैपन ऑन इट्स ओन, इट हैज गॉट इन टू अ वेरी डीप साइकिल, क्योंकि थॉट नेगेटिव होगी तो फीलिंग भी
0: नेगेटिव होगी कंप्लीट।
1: लेट्स से अ सिंपल चीज जो आपने बोला कि मुझे अपना बॉस पसंद नहीं है, जहां मुझे काम करना है, आई डोंट लाइक माय बॉस, वन थॉट, आई डोंट लाइक माय बॉस, अब या तो जॉब चेंज करो, वो तो आज करने की हालत में नहीं है, अब आप उसी जॉब में हैं, उन्हीं लोगों के साथ हैं, लेकिन थॉट कौन सी शुरू हो गई है साइकिल में? I don't like my boss. I can't stand my boss. You know, the way people will say, I just can't stand that person. So, I don't like my boss. Feeling kaisi wali create hogi automatically?
0: Repel. Yes. Repel. I cannot be with
1: you. Kyunki meri thought hai, I can't stand you. Ye sentence itna common hai. I can't stand you. So, feeling kaun si aayegi? एंगर,
0: हेट्रेड,
1: रिजेंटमेंट, यही आएगा. तो जो मेरा आपके साथ व्यवहार होगा जब वो ऐसी थॉट्स और ऐसी फीलिंग्स पर बेस्ड होगा, तो वो व्यवहार कैसा होगा? नॉट कोऑपरेटिव. देयर विल ऑलवेज बी दैट, यू नो, टेंशन.
0: एंड इनफैक्ट वो जेन्युइन भी मुझे कुछ कहेंगे करने को, माय आई विल नॉट बी एबल टू टेक इट. आई फील कि वो ही इज ट्राइंग टू पुट मी डाउन.
1: नाउ द रिजल्ट ऑफ ऑल दिस, व्हाट विल हैपन टू यू? आप काम तो उसी ऑफिस में कर रहे हैं ना, आपके साथ आपका सीनियर तो वही है, लेकिन क्योंकि ये थॉट और ये फीलिंग के साथ काम चल रहा है, एक थॉट सिर्फ, आई डोंट लाइक माय बॉस, यू सी हाउ इट विल कम आउट इनटू द रिजल्ट. और आपके करियर पर इसका इम्पैक्ट आना ही आना है, क्योंकि यू आर वर्किंग देयर विद दिस थॉट. आप वहां काम कर रहे हैं, लेकिन आपका जो बीज आप रोज बो रहे हैं, हर घंटे हर पल जो आप बीज बो रहे हैं, जो आप लोगों के साथ बार बार डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या है? I don't like this person. I don't like this person. I don't like this person. ये जो energy
0: और मजबूरी का जो पूरा एहसास है, बिल्कुल.
1: और इसका effect हमारी performance पे नहीं आएगा, आएगा. वो किसने create किया? हमने create किया. But I don't see that it started from my thought. I think all this is happening
0: because you are bad. Because I am not able to like you. Yes. But then there are people who say, I am being genuine. You know, to myself. At least मैं अपने आप से सच तो बोल रहा हूँ.
1: भले वो ठीक है, लेकिन फिर अगर आपका जेन्युइन नेगेटिव होने वाला है, यू सी, क्योंकि हर एक में प्लस एंड माइनस, अंडरस्टैंडेबल, वो तो अभी हमें समझ में आया कि एवरीवन विल हैव देयर शेयर ऑफ वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स, एंड सो डू आई, जस्ट शेयर ऑफ माय वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स. बट इफ माय सिचुएशन डिमांड्स कि मुझे उस व्यक्ति के साथ उस क्षेत्र में कार्य करना है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द चॉइस, द थॉट. I can't change my boss. Again, कौन सी चीजें कंट्रोल में हैं, कौन सी चीजें कंट्रोल में नहीं हैं? Job, I can't change. Boss, I can't change. Who can I only change?
0: Myself.
1: Only if I want to cross this whole thing without pain. दर्द के साथ जीना है, दर्द में जीना है,
0: कॉम्प्रोमाइज, मजबूरी, ये सब कुछ,
1: सफोकेशन अंदर. एंड फिर सिर्फ वो अंदर की बात नहीं रहेगी, वी सॉ दैट द रिजल्ट विल कम आउट ऑन द परफॉर्मेंस. फिर सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब वो परफॉर्मेंस पे आपके हिट करेगा और वो रिजल्ट आपको वापस आएगा, बी रेडी टू टेल योरसेल्फ, आई एम रिस्पॉन्सिबल बिकॉज दिस वाज ऑल माय क्रिएशन. लेकिन वहां भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए नहीं लेने क्योंकि वो डाल दिया आपके ऊपर. तो अगर हम ये देखेंगे ये चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज मेरे कंट्रोल में है, माई थॉट. Is it possible that I work on myself, look at my negative thoughts and try to convert? देखो हम negative thought को positive word में convert करते हैं. आप सारा दिन में देखो हम ये बहुत काम करते हैं. अंदर भले मैं आपके बारे में अच्छा नहीं भी सोच रही हूँ, ठीक है, पर भी मैं आपसे बात तो बहुत अच्छी तरह से कर सकती हूँ. तो हमने क्या किया? Convert किया ना, क्योंकि वो negative आपको नहीं सुनाई देना चाहिए, तो उसको अंदर ही रखा. लेकिन आपसे बात कैसे की?
0: तो अपने आप से तो मैं सच्ची रही ना, ये मैं कहती हूँ.
1: यस, लेकिन अगर कन्वर्ट करना ही है जेन्युइनली, तो कन्वर्ट वर्ड लेवल पर करने के बजाय क्यों ना थॉट लेवल पर कर दिया जाए? क्योंकि जो एनर्जी क्रिएट होकर आप तक पहुंचने वाली है, इट्स नॉट ऑफ द वर्ड्स. कई लोग बोलते हैं मेरे पास तो कोई चॉइस नहीं है, मजबूरी है, इधर ही काम करना पड़ेगा. अगेन दैट्स पेन. आई हैव अ चॉइस, एंड द चॉइस इज स्टार्ट सीइंग द अदर साइड ऑफ द पर्सन. Start changing myself. आप उनको नहीं change कर सकते.
0: That's what I'm saying ना, कि मुझे उन्हें like करने का प्रयास करना चाहिए और उसके लिए मुझे उनकी positivity देखनी
1: पड़ेगी. लेकिन उसके लिए मुझे पहले अपने दर्द से निकलना पड़ता है. जब मैं दर्द में हूँ, मुझे आप क्यों अच्छे लगेंगे? आप क्यों अच्छे लगेंगे? क्योंकि मैंने ये समझा कि मेरे दर्द का कारण आप हैं, तो फिर आप कैसे अच्छे लग सकते हैं मेरे को उसके बाद? जब तक मेरा वो दर्द हील नहीं होता ना, तो आप मुझे अच्छे नहीं लग सकते, क्योंकि You are the one who caused me pain. You know, ये जो मैं जिस चीज से आज गुजर रही हूँ ना, सारी इसका सारा
0: आप हैं जिम्मेदार. Of course.
1: So then, how can I like you? When what I didn't understand was the cause is me. आप वहाँ हैं, आप अभी भी उस कुर्सी पर हैं, आप यहाँ नहीं हैं. और दर्द जो सारा क्रिएट हो रहा था, वो यहाँ क्रिएट हो रहा था. आप वहाँ से बैठकर कुछ कर सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, मुझे फिजिकली भी मार सकते हैं, उतना ही आपके कंट्रोल में है. लेकिन यहाँ जो क्रिएशन होती है सारी,
0: वो मेरी है. ओह वाओ,
1: वो सारी मेरी है.
0: आई थिंक दिस इज व्हाट वी नीड टू रब इन एक्चुअली टू अंडरस्टैंड.
1: दिस इज द ओनली थिंग कि ठीक है, यू आर व्हाटएवर यू आर, ओके, बट स्टिल हु इज क्रिएटिंग द पेन? हु इज क्रिएटिंग द पेन? मी. not the other person. Kab tak? Stop, ask yourself, who's creating the pain? I. Kab tak?
0: I can stop it now.
1: Whenever. आप जब रोकना चाहें, आपको एक साल बाद दर्द खत्म करना, आपको छह महीने बाद खत्म करना।
0: No, I want to do it now.
1: Finish it then. Yes, right finish. Now. That's what it is. जब फोकस यहाँ आएगा, तब तो फिनिश होगा ना। That's why we always rubbing this in focus self, self, self. क्योंकि सिर्फ वही है जहाँ बिंदी लगा सकते हो। आपको नहीं बिंदी लगा सकती मैं। अगर आपने मेरे से रूडली बात करनी है तो करनी है, मैं बिंदी नहीं लगा सकती आपको। बिंदी जहाँ लग सकती है।
0: Very true, actually. It's so clear now. In fact, हमारे पास वक्त नहीं रहा है, लेकिन अब ये बहुत बिंदी लगानी कैसे है? How to finish, actually, you know, what to really do. पर पहली बात तो यही समझने की थी कि ये जो सब कुछ है, जहाँ तक सिचुएशन है वो वहाँ है, लेकिन जो कुछ भी मैं अनुभव कर रहा हूँ वो मेरा क्रिएट किया हुआ है. These are the two parameters which we need to work on. Thank you so much. Shanti. और इस पर हम आगे आने वाली कड़ियों में ज़रूर बात करते रहेंगे. अब आप सभी से हम यही

0: और फीलिंग्स एक्चुअली अलग अलग हो गई।
1: है ही अलग।
0: आपके पास कोई सवाल, कोई ऐसी बात जो इस कड़ी से जुड़ी हुई है, या पूरा जो ज्ञान आपके साथ है इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपका हम स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से, क्योंकि हमारी कोशिश है ये प्रोग्राम आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाए, जो हमारा सफ़र है उसमें हर कदम पर आपके साथ हो। तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 0999-344-666, 0987-3555, 0999-799-744-555। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में इन दिनों हम बात कर रहे हैं खुद की। वैसे तो हर बार हमारा प्रयत्न रहता है, जैसे कि सिस्टर शिवानी ने कहा कि फोकस इज ऑन सेल्फ, खुद पर। हम से ज़्यादा सेल्फिश लोग नहीं हो सकते कि बार बार हम ये कहते हैं कि फोकस हम पर होना ज़रूरी है, लेकिन बाहरी के बात बावजूद जो अंदर मैं हूँ, जो बहुत कुछ काम करता है, जो सोचता है, जो फीलिंग्स क्रिएट होती हैं, उस पर फोकस करना ज़रूरी है। आगे हम बहुत सी और बातें करेंगे सिचुएशंस को देखते हुए, लेकिन फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। हम शांति।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप नायकताहित रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन। आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, सो वी नीड टू से।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: आज फिर आप सभी का स्वागत करते हैं अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में ओम शांति। इस तरह आपसे बातचीत करते करते आपके जो हमें इतने ढेर सारे ईमेल्स आ रहे हैं उनसे हमें बहुत कुछ पता चल रहा है कि अभी भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जीवन के जो नहीं सुलझ पा रहे हैं, क्योंकि मकसद यही है कि प्यार से आसानी से खुद को पहचानते हुए इन सभी मुद्दों को सुलझाया जा सके और ज़िंदगी जैसी होनी चाहिए सत्यता के रूप में, प्यार के रूप में, शांति के रूप में, उसी तरह से हमें जीना चाहिए। तो उसको समझते हुए आज हम उस पड़ाव पर पहुँचे हैं जब एक मुद्दा ऐसा है जो अभी भी कहीं परेशान करता है, समझ नहीं आता कि उससे कैसे सुलझा जाए, और वो है प्रेशर। प्रेशर हमारे ऊपर काम का होता है और भी कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, पढ़ाई का होता है, अपनी परफॉर्मेंस को लेकर होता है। तो क्या ये प्रेशर सही है? क्या ये प्रेशर हमें परेशान करता है और क्या हम इस पर प्रेशर से भी परे जा सकते हैं? और इस पर बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। सचमुच अगर हम दर्शकों की बात करते हैं, अपनी बात करते हैं, जीवन में हर वो बात जो हम करते आ रहे हैं उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने शुरू में ही यही कहा था कि ये पूरा ज्ञान अनुभव पर केंद्र करेगा, अनुभव पर कंसंट्रेटेड होगा कि हमें क्या एक्सपीरियंस हो रहा है। एंड बिलीव मी, ये पूरा बहुत से दर्शकों के भी हमें कॉल आ रहे हैं कि हम कोशिश करते हैं इसे इम्प्लीमेंट करने की, याद आ जाता है, एकदम से वो बात याद आ जाती है और हम फिर वो पॉज ले लेते हैं और वो उसी तरह से जीने लगते हैं। वरी की हमने बात की थी, स्ट्रेस की बात की, एंगर की बात की, और ये समझ में आया कि ये प्रॉब्लम्स थी। अब आता है प्रेशर। अगर हम डिफाइन करने को कहें, सो व्हाट इज एक्चुअली प्रेशर?
1: प्रेशर अगेन, आई वुड फील इट इज आउटसाइड बट इट इज एक्चुअली इनसाइड। तो प्रेशर भी एक इमोशन है जो मैं क्रिएट करती हूँ।
0: इमोशन इज ऑलवेज यू नो नेगेटिव,
1: या इट्स एन इमोशन व्हिच आई क्रिएट, क्योंकि मुझे लगता है, आई फील के व्हाट विल हैपन इफ आई एम नॉट एबल टू डू दिस, यू नो। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में उसको दे सकते हैं। चिंता वो थी कि व्हाट, हाउ विल आई फील अगर आपको कुछ हो जाए या बाहर कुछ हो जाए।
0: इमेजिनेशन का एक सिनेरियो
1: था। वो इमेजिनेशन, तो वो ये थी कि मेरी फीलिंग औरों पर डिपेंडेंट थी, तो मैं कैसा महसूस करूंगी अगर ऐसा कुछ हो जाता है। एंड प्रेशर हम तब एक्सपीरियंस करते कि मैं कैसा महसूस करूंगी अगर मैं ये नहीं कर पाई, यू नो, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है।
0: ओके, वरी बिकम्स लाइक मुझे मेरे साथ क्या,
1: या नो, वरिंग अबाउट सो मेनी पीपल। आई विल नेवर से कि आपकी वजह से मुझे प्रेशर महसूस हो रहा है। प्रेशर मुझे हमेशा अपनी ही किसी बात को लेकर होता है। सो दैट्स अ वेरी थिन, व्हाट हैपेंस इज ये सारे इमोशंस हम क्रिएट तो करते हैं सारा दिन में, बट हमें थोड़ा सा बारीकी

0: them. A pressure can be mera apni wajah se, and it also could be ke oron ki expectations ki wajah se mujhe pressure feel hota hai. तो नॉर्मली जो बहुत कॉमन प्रेशर हम फील करते हैं वो है बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं पेरेंट्स का एग्ज़ाम के टाइम पे या अदरवाइज पे उनकी लाइफ में वो क्या बनना चाहते हैं इसमें पेरेंट्स का हमेशा बहुत ज़्यादा प्रेशर वो एक्सपीरियंस करते हैं. ऑफिस में एक जूनियर स्टाफ हमेशा अपने
1: बहुत सीनियर का इवन पीयर प्रेशर नाम ही है पीयर प्रेशर.
0: सो व्हाट इज पीयर प्रेशर? See, I have to ask myself, क्योंकि ये right, it's beautiful, ये word हम इतना commonly use करते हैं, तो what is peer pressure? कि आपको देखकर
1: मुझे लगता है कि मुझे भी ऐसा ही करना है.
0: तो it always comes back to me. तो हम कहते हैं peer pressure में आकर हमने ये कर दिया, मतलब बाकी सब कर रहे थे तो मुझे करना ही था, otherwise I'll feel
1: left out. Yes.
0: Even if my consciousness is telling me this is not
1: smoke,
0: right for you.
1: Basically, yes. You know, ये जो सारी addictions की तरफ जाते हैं. Smoking तो I think starts from here. कि कहीं ना कहीं मतलब maximum से पूछा जाएगा कि आपने smoke कैसे शुरू किया. School college में दोस्त पीते थे. मैं नहीं पीता तो मेरा मजाक उड़ाया जाता.
0: Majority चीज़ें. आप सारा दिन student life में तो majority क्या student क्यों बड़ों के साथ भी आज ये होता. लेकिन you know जैसे bunk करके movie के लिए जाना. This is peer pressure. एक या दो या तीन लोग सोचेंगे ऐसा करने का कि स्कूल मिस करके या कॉलेज मिस करके जाना. और फिर अगर हम नहीं करेंगे तो आई फील के यू नो ये लोग सोचेंगे कि मैं उतना ताकत
1: डेफिनेटली बड़े लोगों के मन में भी मतलब सोसाइटी में मैं एंटर करूँ मेरे ड्राइवर बोलते हैं मुझे कि आपको पता है सबके पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ गई हैं अब इट्स वन वे एंड वी डू क्रिएट दैट प्रेशर.
0: और फिर हम ही तो वो बच्चों के साथ भी वो
1: कैरी
0: फॉरवर्ड कर देते हैं. तो पीयर ये एक अंदर हमें महसूस होता है कि मुझे उस तरफ पहुंचना है. अगर ये ऐसा कर रहे हैं मुझे भी वो करना है, नहीं तो आई फील ट्रबल्ड इनसाइड. तो पीयर प्रेशर यस. फिर एक होता है प्रेशर कि मुझे खुद ही लगता है कि मैं इस लेवल तक पहुंच पाऊंगा नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपके साथ कॉम्पिटिशन है मेरा, लेकिन मैंने अपने लिए कोई ना कोई ऐसा लेवल जैसे स्पोर्ट्स पर्सन एक एथलीट है इन द रेस, लेकिन उसने अपने लिए पर्सनल लेवल कुछ एक सेट किया हुआ है और कहीं ना कहीं वो प्रेशर महसूस करता है कि मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं. प्रेशर मींस मैं कैसे चेक करूं कि आई एम एक्सपीरियंसिंग प्रेशर. मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, मैं नेचुरल नहीं हूं, मैं इजी नहीं हूं, सरल नहीं हूं, अंदर कुछ
1: अनकंफर्टेबलनेस. यू आर ऑन योर टोज एक्चुअली.
0: So that's pressure. तो अब लेकिन अगेन क्या हो गया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी गॉट हैबिचुएटेड टू दिस प्रेशर. स्ट्रेस भले हो ना हो, चिंता भी शायद ना हो सबको, लेकिन प्रेशर
1: हर कोई महसूस करता है. बिल्कुल
0: हर कोई महसूस कर रहा है. एंड वी हैव गिवन आवरसेल्फ द लिबर्टी
1: टू कंटिन्यू टू टेक इट यू नो अगेन, बिकॉज़ वो हम प्रेशर और चिंता के साथ तो आई थिंक बहुत ज्यादा हमने काम ही नहीं किया इस पे. वो दबाव जो है वो महसूस
0: बिल्कुल वो महसूस करते हैं और वो इसीलिए कि इफ आई एम नॉट एबल टू डू इट तब क्या. एंड मेजोरिटी हम में से बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि प्रेशर अगर फील करेंगे, बिकॉज अगेन दैट्स अ फीलिंग ना, मतलब इमोशन है बट आई स्टार्ट फीलिंग दैट पेन. तो प्रेशर अगर हम क्रिएट करेंगे तो मेरी परफॉर्मेंस और भी बढ़ जाएगी. प्रेशर नहीं होना मतलब वेरी लेड बैक, विच इज नॉट ट्रू. क्योंकि जैसे ही प्रेशर फील करना शुरू करते हैं तो मेरी परफॉर्मेंस पर उल्टा नेगेटिव इफेक्ट आता है. बच्चों में तो कितनी बार हम ये देखते हैं कि प्रेशर के अंडर वो जितना परफॉर्म कर सकते थे वो भी नहीं कर पाते. इवन स्पोर्ट्समैन आज उनके लिए कितनी काउंसलिंग और मेडिटेशन क्यों कराई जाती है कि कंपटीशन है, सब कुछ है, लेकिन जब आप प्रेशर में आ जाते हो, यू नो सो मेनी टाइम्स वी सी इन द क्रिकेट मैच कि जब उनके साथ सामने बहुत बड़ा टारगेट है सेट करने का तो अच्छे से अच्छे एंड देन दे से दे क्रम्पल अंडर प्रेशर. Such brilliant sportsman, wonderful batsman, लेकिन क्या हो गया suddenly? और एक के बाद एक के बाद एक, क्योंकि जितना वो target set हो गया, वो देख देख के डर लगता गया, तो मेरी जो actual performance थी, उससे भी मैं, तो how can I say that pressure is good for me?
1: Good, yes. Pressure can never be. In fact, अगर हम देखें तो कितनी बार live performances में block हो जाता है.
0: कितनी बार एग्जाम के दिन पे बच्चा ब्लॉक हो जाता
1: है, ब्लॉक हो जाते
0: हैं, जिसको हम कहते हैं ब्लैंक आउट हो गया, पूरा बीमार हो जाते हैं उसकी वजह से,
1: भूल जाते हैं, पूरी मेमोरी से गायब हो जाते हैं. कितनी बार बच्चों के ये ब्रेकडाउन्स होते हैं
0: आजकल बहुत ज्यादा बच्चों के अंदर, स्पेशली जो प्रेशर वो लोग ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं जो

0: हाई अचीवर्स होते हैं बच्चों में भी, क्योंकि एक बार वो एक आदत पड़ जाती है फर्स्ट आना है या 90% या जो भी प्लस है वो आना है, तो उससे इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट होने के बावजूद वो स्मूथली सेल कर जाएंगे अपने एग्जाम्स के थ्रू, अच्छे भी मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन प्रेशर कि मैं सेकंड नहीं आ सकते, और वो उनको पूरे वो स्टडी लीव जब वो पढ़ रहे हैं वो इसी थॉट के साथ है, इतना पावरफुल मुझे फर्स्ट आना है।
1: सर शिवानी, आपने कहा कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो फर्स्ट आते ही जा रहे हैं वो उस प्रेशर में रहते हैं कि मुझे फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, वो पूरा टाइम उसमें गुजार देते हैं, एग्जाम्स होते हैं, फर्स्ट आ भी जाते हैं। फर्स्ट वो वैसे भी आ सकते थे क्योंकि उनका इंटेलिजेंस लेवल था उतना हाई, लेकिन मैं यह जानना चाहती हूँ, बहुत से दर्शक भी जानना चाहेंगे कि जब हम उस प्रेशर में होते हैं, उस दबाव में होते हैं, हमारे साथ क्या हो रहा होता है?
0: नॉर्मली क्या होता, जैसे आपने कहा वो प्रेशर में है और फिर वो फर्स्ट भी आ जाते हैं। अब जब वो फर्स्ट आ जाते हैं वो ये फील करते हैं कि वो प्रेशर बिल्डअप करने की वजह से उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई, तो द नेक्स्ट टाइम वो प्रेशर अपने लिए फिर वो क्रिएट करते हैं। कई बार जरूरी नहीं है पेरेंट्स का प्रेशर हो बच्चों पर, कई बार बच्चे अपना प्रेशर खुद क्रिएट करते हैं, क्योंकि बहुत परिवारों में हम देखते हैं कि पेरेंट्स कह रहे हैं इट्स ओके, रिलैक्स, इट्स ओके, वी हैव नो प्रॉब्लम कि अगर आप सेकंड भी आओ, लेकिन बच्चे ने अपना टारगेट अपने आप सेट किया है कि मुझे फर्स्ट आना है, और जब वो प्रेशर क्रिएट करके आ जाता है ना, वो उसके बिलीफ सिस्टम को और भी स्ट्रॉन्ग कर देता है, और धीरे धीरे वो हैबिट इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि हम दूसरा ऑप्शन ट्राई नहीं करते, क्योंकि मुझे सेकंड नहीं आना ना। अगर सपोज मैंने वो प्रेशर नहीं बिल्डअप किया इस बार और मैं सेकंड आ गई, तो वो एक्सपेरिमेंट के रूप में मेरा तो नुकसान हो जाएगा। ऑफिस में भी अगर हम देखें कि वो डेडलाइन है, 2-3-4 लोग सेम डेडलाइन की तरफ काम कर रहे हैं और चारों लोग अचीव कर लेंगे। स्कूल में भी जो लोग वो टारगेट रखते हैं सभी अचीव कर लेते हैं, लेकिन उस यात्रा का क्या,
1: वही जर्नी जो है वो इतनी प्रेशर से भरी हुई।
0: बिल्कुल। अब अगर वो डेडलाइन को पूरा करने में कई बार हमें 1 या 2 दिन होते हैं, लेकिन कई बार 1 महीने के बाद डेडलाइन पूरी होती है। अब 1 महीना 2 लोग वही डेडलाइन पर काम कर रहे हैं, एक बहुत आराम से कि हो जाएगा मैं कर लूंगा, और दूसरा इस थॉट के साथ अगर नहीं हुआ तो
1: नहीं, मुझे करना है,
0: मुझे करना है। क्यों? बिकॉज़ द फियर बिहाइंड दिस इज अगर नहीं हुआ तो क्या, तो वो अगर नहीं हुआ तो का जो फियर है, तो वो 1 महीना किसमें बीता, फियर में, तो वो फियर क्रिएट करने से मेंटली ड्रेन्ड, और फिर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ापन आना। आप देखो एनीबॉडी हु इज गोइंग थ्रू प्रेशर उनका पूरा व्यवहार चेंज हो जाता है।
1: ब्यूटीफुल। आई थिंक वंस अगेन इट कम्स डाउन टू कि डेस्टिनेशन जो है वो तो है इम्पोर्टेंट, जर्नी इज,
0: लेकिन डेस्टिनेशन से ज्यादा शायद जर्नी इम्पोर्टेंट है इस केस में, क्योंकि इस केस में डेस्टिनेशन वर्क है, डेस्टिनेशन बाहर की कोई चीज है कि आपने अचीव कर लिया मार्क्स, रिजल्ट, टारगेट, सैलरी, बोनस, व्हाटएवर, लेकिन जो जर्नी है वो अंदर की चीज है, और वो अंदर की चीज मेरे रिलेशनशिप्स पे भी अफेक्ट करती है। उस 1 महीने के दौरान उस व्यक्ति का घर पे जो रिलेशनशिप रहेगा, एंड इवन मे बी ऑफिस में कोलीग्स के साथ जो रिलेशनशिप रहेगा,
1: वो कहते हैं कि ये तो कांस्टेंट प्रेशर में रहते हैं, ये तो हमेशा ही प्रेशर में रहते हैं,
0: तो वो नेचुरल पता चल जाएगा, और जिस दिन डेडलाइन हो गई पूरी यू विल सी कि वो डिफरेंट होंगे, क्योंकि जैसे कि उनके ऊपर से एक प्रेशर हट गया। तो मतलब वो प्रेशर के आने से इफेक्ट सिर्फ काम से नहीं रिलेटेड होता, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी फैमिली लाइफ, मेरी सोशल लाइफ सब पे असर पड़ता, एंड मेरी फिजिकल हेल्थ, क्योंकि ये हाई ब्लड प्रेशर, अल्सर्स, आर्थराइटिस, डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर, ये सारी प्रॉब्लम्स ये आ कहाँ से रही है? अनहेल्दी माइंड। अब हमने इन इलनेसेस को भी एक्सेप्ट कर लिया कि चलता है, ये तो होता रहता है, लेकिन ये सारा इधर है क्योंकि आई एम यूज टू लिविंग इन प्रेशर। और डेडलाइन अब एक तो होगी नहीं, या तो है कि ठीक है ये 1 महीना है, ये डेडलाइन पूरी कर लो उसके बाद आराम है, तो ठीक है बॉडी कहीं ना कहीं थोड़ा ले लेगी, लेकिन उस डेडलाइन के बाद
1: we get actually so much used to of taking deadlines, you know.
0: तो प्रेशर सिर्फ डेडलाइन का नहीं होगा, और भी बहुत सारी बातों का होगा। अगर मैंने वो बिलीफ सिस्टम बना लिया कि प्रेशर से ही आई अचीव, तो देन वेरी सून आई विल बी अंडर प्रेशर मोस्ट ऑफ द टाइम।
1: यस, टेंडेंसी आपकी जो है वो ये बना लेते हैं।
0: एंड इफ आई स्टार्ट लिविंग अंडर प्रेशर मोस्ट ऑफ द टाइम, देन द बॉडी कैन नॉट टेक इट एनीमोर, और तब वो प्रेशर सिर्फ यहाँ ड्रेन नहीं करता, यहाँ भी ड्रेन करना शुरू कर देता है एंड फिर उसका रिजल्ट मेरे रिलेशनशिप्स में दिखाई देता. तो आई नीड टू आस्क माई सेल्फ, इज इट वर्थ ऑल द पेन दैट आई गो थ्रू. इससे तो अच्छा मे बी, आई डोंट नो, मे बी द स्टूडेंट्स वुड नॉट लाइक, बट आई वुड से इससे तो अच्छा मैं सेकेंड आ जाऊँ. वुडंट रियली मेक मच ऑफ अ डिफरेंस.
1: एक्चुअली यस, यू नो दिस, वो फर्स्ट आने का जो या 95% तक पहुँचने का जो एक टारगेट्स होते हैं बच्चों के, जो अगेन यू नो उसके ऊपर इतना प्रेशर करके अगर वो स्मूथली पहुंचा जा सके तो ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा लेके जो चलते हैं,
0: क्योंकि हमें ये मे बी आजकल बच्चे बोलेंगे नहीं लेकिन आपको क्या पता कंपटीशन है, एडमिशन नहीं मिलती है.
1: अनदर क्वेश्चन व्हिच कैन बी यू नो लाइक जो उठ सकता है वो ये कि अचीवर्स नहीं होंगे फिर हमारे,
0: वो रैंक होल्डर्स,
1: विल नॉट हैव दोस अचीवर्स, वो कप उठाने वाले नहीं होंगे हमारे पास.
0: हाँ मे बी, बट आई हैव नेवर सीन कि अगर आप प्रेशर हटा दो तो आपकी अचीवमेंट कम हो जाती है. लॉजिकली एंड एक्सपीरियंस ओनली सेज कि अगर आप प्रेशर हटा दो तो आपकी जो अचीवमेंट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रेशर आपको सिर्फ ड्रेन आउट करता है. तो लेट मी गेट रिड ऑफ द बिलीफ सिस्टम. हाउ आई विल गेट रिड ऑफ द प्रेशर इज अगेन अ सेकेंडरी, बट फर्स्ट आई हैव टू गेट रिड ऑफ द बिलीफ सिस्टम कि प्रेशर मेरी परफॉर्मेंस को इनहांस करता है. और ये सबसे इजी तब हो जाता है जब पता चलता कि डेडलाइन प्रेशर नहीं क्रिएट करती, वो डेडलाइन के बारे में सोच के और अगर मैं नहीं अचीव कर पाऊंगा उसके बारे में सोच के मैं प्रेशर क्रिएट करती. तो प्रेशर से मुक्त होने के लिए अगेन फर्स्ट स्टेप विल बी प्रेस द पॉज बटन. आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप अनुभव कर रहे हैं कि कुछ जैसे बहुत बोझ है आपके ऊपर, स्टॉप एक मिनट के लिए, स्टॉप एंड इंटरप्ट द थॉट, क्योंकि ये एक सीरीज चलती है, नहीं हुआ तो क्या, नहीं हुआ तो क्या, होना ही होगा, बाकी लोग क्या बोलेंगे, इट्स जस्ट गोइंग ऑन वेरी फास्ट. स्टॉप इट, पहला स्टेप होगा पॉज, उससे डिटैच हो जाए. और दूसरा स्टेप ये अंदर देखें बहुत ध्यान से कि जो फियर का इमोशन हम फील कर रहे हैं, आई एम फीलिंग दैट इमोशन एंड आई फील फियर, बट इट्स नॉट दैट आई एम जस्ट फीलिंग द फियर, I am creating the fear. I first create the fear.
1: Then only I can experience
0: then
1: it.
0: Then I feel it. अभी क्या होता है, हमें वो वाला पार्ट नहीं याद रहता, मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं खुद डर क्रिएट कर रहा हूँ.
1: तभी तो डर लग रहा है. Wonderful. Actually, you know, हम हर बार ये very true. हम कहते हैं कि मुझे डर लग रहा है, लेकिन डर किसी और ने तो क्रिएट किया ही नहीं, मैंने खुद ही किया.
0: तो ये जब समझ में आ जाएगा कि I first create that fear and then I feel the fear. अब feeling का source क्या? Thoughts. Thought create होती है तो feeling follows. तो जब मुझे ये समझ में आ जाता है ये feeling मैंने create की है, then मैं एक step और पीछे जाती हूँ. What is the thought behind this? कौन सा संकल्प आ रहा है मन में जिसकी वजह से ये feeling डर की create हो रही है? And mostly the thought will be अगर नहीं हुआ तो, अगर मैं fail हुआ तो, अगर deadline miss हो गई तो, whatever. ये these kind of thoughts. एक बार thought को देख लिया, देन अगेन जैसे हमने चिंता में किया कि थॉट को
1: कन्वर्ट
0: रिवर्स कर दो, कि जो ये डर वाली फियरसम थॉट्स क्रिएट हो रही है, एंथुसियास्टिक थॉट्स क्रिएट करो, उसको थॉट को चेंज करो.
1: आई हैव द कैपेबिलिटी, यू नो आई एम कैपेबल.
0: एब्सोल्युटली. सो आई हैव टू चेंज द थॉट, बट थॉट इज बेस्ड ऑन बिलीफ, तो बिलीफ को फिर पकड़ना होगा. बहुत सारी बिलीफ्स जो हमारी लाइफ में सिचुएशंस हैं, बहुत सारी बिलीफ्स को लेकर हम चलते हैं. फॉर एग्जांपल डेडलाइन है मेरे सामने, तो मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि अगर मैंने ये डेडलाइन नहीं मीट की तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, एंड आई लिव विद दैट फियर. नहीं मीट की तो क्या, नहीं मीट की तो क्या. स्टॉप. और अपने आप को सत्यता से वाकिफ करें कि अगर नहीं मीट की तो भी क्या. एक डेडलाइन मिस होने से कुछ भी नहीं होता है. और फिर भी अगर फील करते कि अगर ये डेडलाइन मिस हो गई तो जॉब चली जाएगी तो भी क्या. अगेन मे बी अ लॉट ऑफ पीपल विल से हाउ इलॉजिकल, इनके लिए बोलना कितना इजी है.
1: और एक और लोग बोलेंगे कि इसका मतलब तो हम लेजी हो जाएंगे, फिर हम कहेंगे कि ठीक है फिर उससे भी क्या, अचीव करने से क्या.
0: सो इट्स नॉट दैट वी आर नॉट, सी इट्स अ वेरी थिन लाइन अगेन कि हमें कहाँ समझना पड़ता है कि परफॉर्म करना है लेकिन बोझ रख के परफॉर्म नहीं करना.
1: एक्चुअली हम ना जानते हैं अंदर, वी ऑल अंडरस्टैंड. अगर हम अपने सभी दर्शकों से भी कहें कि अंदर अगर जरा टटोलेंगे, हम जानते हैं
0: सब पता है, लेकिन काम करना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए हम कह देते हैं इनको क्या पता ये कितनी, क्योंकि आई वाज जस्ट थिंकिंग कि हाँ व्हाट इज द ट्रुथ बिहाइंड द डेडलाइन, कि आई लूज माय जॉब, बट देन थिंक अबाउट इट, व्हाट्स द वर्स्ट,
1: क्या हो जाएगा जॉब.
0: बट आई थॉट इफ एनीबडी हैज टू हियर दिस, वो कहेंगे अच्छा इनको क्या पता एक जॉब आज मिलना कितना मुश्किल है. यस, बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपके अंदर वो इमोशनल स्टेबिलिटी है तो 99.999% आपका तो वो जॉब जाएगा नहीं.
1: हाँ, बिल्कुल नहीं जाएगा.
0: मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, ये हमारी हैलुसिनेशन होती है जो हम क्रिएट कर देते हैं, तो ये जॉब जाएगा नहीं. और अगर वर्स्ट केस 0.1% चला भी जाता है, लेकिन आप स्टेबल रहे उससे, तो मे बी इट्स जस्ट अ चांस जहाँ आपके लिए कुछ बहुत अच्छा वेट कर रहा था. लेकिन ये नेगेटिव सोच सोच के तो जॉब पता नहीं जाए या ना जाए, लेकिन और पता नहीं क्या क्या चला जाएगा. दैट आई हैव टू अंडरस्टैंड, मेरी पूरी लाइफ खत्म हो रही है उस प्रोसेस में, मेरे अंदर की खुशी जा रही है. वो नहीं सोचते कि खुशी जा रही है, उमंग उत्साह खत्म हो रहा है, संबंध टूट रहे हैं, तबीयत खराब हो रही है. वी हैव अंडरस्टूड कि चाहे कुछ भी हो जाए, लाइफ विल गो ऑन वेरी ब्यूटिफुली इफ आई एम हैप्पी एंड स्टेबल इनसाइड. Then there are so many openings all waiting for me.
1: Another thing which we at times think is ki bina pressure ke performance nahi ho sakti. Bosses, wo jo humne anger ki bhi baat ki thi, anger nahi to pressure do. Pressure do, pressure ke baad hi performance karenge, perform karenge.
0: Aur ye bhi pata hai, deep down I know the truth actually ki pressure apply karte hi performance affect ho jati hai. Aap dekhenge normally gharon mein ya offices mein aap dekhiye. बहुत आराम से काम चल रहा होगा. इनफैक्ट जस्ट माई एक्सपीरियंस, आई वॉज एट अ हॉस्पिटल रिसेप्शन पर, एंड वो हॉस्पिटल मतलब एक ब्यूटिफुल कल्चर था उस हॉस्पिटल का. वो लोग बहुत ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी पर ध्यान देते थे कि रिसेप्शन पे व्यवहार, बात करने का तरीका शुड बी वेरी गुड. एंड मैंने बहुत बार गई थी उस रिसेप्शन पे, मिली थी उन सबसे, एंड आई यूज़ टू ऑलवेज अप्रिशिएट कि ये लोग यू नो इन स्पाइट ऑफ इतने लोग इनके ऊपर सारे खड़े हैं, ये कितना कम्फर्टेबली काम करते हैं. उस दिन उनके हॉस्पिटल का कोई बहुत सीनियर चेक करने के लिए आकर वहाँ बैठ गए, और वो बीच बीच में ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए. एंड यू नो व्हाट एक्चुअली हैपेंड, वो लोग, वो ही लोग जो रोज बहुत स्मूथली काम करते थे, उस दिन गलतियां करते गए.
1: फंबलिंग,
0: गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलत एंट्री, कैश दिया नहीं किसी का वापस, किसी की रिसीट देनी भूल गए,
1: घबराहट में है
0: ना. Going all wrong, and जितना वो गलती करते जा रहे थे, उतना वो जो senior बैठा था,
1: और उनका वो belief system और strong होता जा रहा था.
0: Now, and that senior walks off thinking कि ये लोग हमेशा ही ऐसे काम करते हैं, but they are so good otherwise. And यही normally बहुत बार होता है office में, अगर boss आकर वहाँ खड़ा हो जाए, तो मेरा सारा कुछ गलत होने लग जाता है. कहते आप फिर कहेंगे आप हमेशा गलतियां करते हो. नहीं सर, हमेशा ठीक हो जाता है काम, पता नहीं आपके सामने क्यों गलती हो रही है. कई बार हमें भी रीजन नहीं पता होता, बट व्हाट इज हैपनिंग, फियर क्रिएट हो रहा है, और फियर क्रिएट होने से मेरी एफिशिएंसी क्रिपल होती जा रही है. और कई बार प्रेशर इस बात का हो जाता है कि अगर मैंने वो परफॉर्मेंस नहीं अचीव की तो क्या होगा. तो ट्रुथ, सत्यता से अपने आप को वाकिफ करें कि मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ. सी, प्रेशर से रिलीव होना डजंट मीन परफॉर्म करना बंद कर दे, बट टेल योरसेल्फ कि मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, और अभी के लिए मेरी कैपेसिटी में ये बेस्ट है. इवन इफ आई एम नॉट एबल टू अचीव वो फर्स्ट रैंक, लेट्स से, लेकिन इतना जो मैं पढ़ूंगी और जो सब करूंगी और अपने आप को इस ट्रेनिंग से लेकर जाऊंगी, ये मुझे नेक्स्ट टाइम के लिए हेल्प करेगा. इस पर शायद मैं थर्ड या फोर्थ आ जाऊँ, नेक्स्ट टाइम आई विल अचीव. इट्स नॉट नेसेसरी कि मुझे इसी बार में उस चीज को अचीव करना. तो वो भी एक बहुत डीप प्रेशर हमारे पर बिल्ड होता है. और जो बहुत सूक्ष्म एक प्रेशर हम सारा दिन एक्सपीरियंस करते, एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर्स, मुझे आपकी एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरना, आई हैव टू लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशन. और बिलीव क्या है कि इफ आई डोंट लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशन, you will not love me and my self esteem will go down. ab iske sath hum chalte rehte hain. satyata kya hai? most important ke have to nahi hai. i don't have to live up to somebody's expectations. i can choose to live up
1: to
0: somebody's.
1: i want to, you know, it's again my decision.
0: agar main karna chahu तो करूं, और दूसरी बात मेरी सेल्फ एस्टीम
1: इस पे
0: दूसरों के एक्सपेक्टेशंस पे डिपेंडेंट नहीं है, मैं इतना प्रेशर एक्सपीरियंस कर सकती हूँ सिर्फ ये एक रॉन्ग बिलीफ के साथ चल के कि मेरी सेल्फ एस्टीम क्रैश हो जाएगी अगर आपकी अप्रूवल मुझे नहीं मिलती। तो रुक रुक के बीच में ये बिलीव्स को चेक करके ट्रुथ अपने आप को देनी पड़ेगी। और जो बहुत बड़ी बड़े लेवल पर हमारा बिलीफ होता है कि जो मेरे गोल्स और एम्बिशंस मैंने अपनी लाइफ में सेट किए हैं वो मिलेंगे तो ही खुशी मिलेगी।
1: अगेन अचीवर्स की जहाँ हम बात कर रहे हैं वो कॉन्स्टेंट इस प्रेशर में रहते हैं कि वही मेरी मंजिल है, वही जाके मैं खुश होऊंगा। अगेन यू नो अचीविंग दैट विल मेक मी हैप्पी, नॉट द जर्नी,
0: नॉट द जर्नी। तो कहीं ना कहीं मेडिटेशन हमें बहुत ज्यादा इसमें मदद करता है, क्योंकि सिचुएशंस हैं, लोग हैं, लेकिन प्रेशर एक्सपीरियंस करना या नहीं करना ये मेरे हाथ में है। तो मेडिटेशन के कुछ क्षण अगर हम हर रोज बिताते हैं, फ्यू मिनट्स ऑल्सो एवरी डे, तो एक तो वो मेरे बिलीफ सिस्टम्स को राइट ट्रैक पे ठीक रखता और मुझे पावर दे देता है कि जब वो सिचुएशन कोई आएगी भी आई हैव दैट इंटरनल पावर टू बी एबल टू क्रॉस थ्रू द सिचुएशन। एंड मेडिटेशन सबसे इम्पोर्टेंट क्या करता है, हमें फियरलेस बताना शुरू कर देता है। डर धीरे धीरे से ये सारे जो बिकॉज ये सारा जो खेल है वो डर का है,
1: डर का, क्योंकि हमने यही माना हुआ अल्टीमेटली कि दिस इज व्हाट माय लाइफ इज, यू नो। अगेन बड़े लेवल पे अगर हम जाते हैं इसका विस्तार करते हैं तो वही बात आ जाती है कि यहीं तक सीमित नहीं है, ये तो इसी पार्ट का हिस्सा है, इस प्ले का,
0: ये सब मेरा रोल है जो मुझे प्ले करना है। मैं एक्टर क्या हूँ, प्योर पावरफुल हैप्पी, लेकिन एक्टर सब कुछ भूल जाता है अपने बारे में और सिर्फ रोल में ही फंस जाता है और कहीं ना कहीं रोल की परफॉर्मेंस में इतना इंग्रोस्ड हो जाता है कि एक्टर अपनी ओरिजिनल नेचर को कॉम्प्रोमाइज भी करने के लिए रेडी है। कोई बात नहीं शांति नहीं है लाइफ में, कोई बात नहीं खुशी नहीं है, कोई बात नहीं प्यार नहीं है, परफॉर्म तो करना है, अचीव तो करना है। तो मेरी प्रायोरिटी कितनी ट्रुथ से कितनी बाह्य की तरफ चली गई, और जब ये हम अपनी सत्य पहचान, इसलिए सेल्फ रियलाइजेशन इतनी डीप है, जैसे ही वो पता चल जाता है प्रायोरिटी राइट आ जाती है और डेफिनेटली स्टेबिलिटी अंदर आ जाएगी तो परफॉर्मेंस अपने आप हो जाएगी, उसके पीछे बहुत ज्यादा
1: भागने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बहुत सुंदर शिवानी, और जिस तरह से प्रेशर जिसे हम अगेन बार बार मैं यही कहती हूँ लेकिन बात यही आ जाती है सामने कि इसके ऊपर हमने काम ही नहीं किया होता। प्रेशर तो चाहिए ही, प्रेशर तो लेना ही पड़ेगा, प्रेशर तो है ही, प्रेशर है तो इसीलिए, लेकिन अब ये बात समझ में आती है कि प्रेशर है ये भी हमने ही कहा है और प्रेशर हम नहीं लेंगे ये भी हमें ही तय करना है। आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बहुत से ऐसे मुद्दों को साथ मिलकर देखा है और हर बार बात यहीं पर आ जाती है, चॉइस मेरी अपनी है, मुझे अपने आप सिलेक्ट करना है, मुझे अपने आप तय करना है कि किस जिंदगी को मैं अपनाना चाहती हूँ। सारे एस्पेक्ट्स देख लिए, इस जिंदगी पे भी चलते हुए देख लिया, इन सब चीज़ों को सच मान के भी जिंदगी चली हमने और ये देखा कि हम खुश नहीं थे, हम शांत नहीं थे, हमें प्यार नहीं मिल रहा था, हम प्यार का एहसास नहीं कर पा रहे थे। दूसरा एस्पेक्ट देखा, इन छोटी छोटी चीज़ों से जब खुद को परे करना शुरू किया, सचमुच वो सारी चीज़ें जो हमें चाहिए थी वो अपने आप अपने अंदर से ही बाहर आती गई और हम बांटना शुरू कर देते हैं। ऐसी कोई बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, जो आपके मन में सवाल उठ रहा है, हम हर बार की तरह कहेंगे कि आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9999 3445 9999 3446 9873 666 555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसका ये सफर यूं ही चलता रहेगा, आने वाले एपिसोड्स में कुछ और बातें करेंगे, आपके सवालों को भी उठाएंगे जो खास हमारे पास पहुंच रहे हैं। अब दीजिए इजाजत, ओम शांति।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
2: रेडियो मधुबन 107।

0: मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: और नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। हर शनिवार को हम लोग शाम इस कार्यक्रम को सुनते हैं, जिसमें खास युवाओं को टारगेट करके हम लोग ये प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। तो हमने पिछले एपिसोड में खास करियर इन जर्नलिज्म के बारे में बातें की थी, और उसके पहले हमने करियर इन एजुकेशन के बारे में बातें की थी। तो निश्चित तौर पे आप सोच रहे होंगे कि आज इस बार भी कुछ नया टॉपिक लेकर ही आप बात करेंगे। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, आज हम लोग करियर इन होम्योपैथी मेडिकल फील्ड में किस तरह से हम युवा साथी एंटर कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और क्या क्या चीजें इसमें हम लोग अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है और कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बात कर रही है। तो आइए, हमारे साथ आज के शो में डॉक्टर शेलके, संदीप शेलके सर जुड़े हैं औरंगाबाद से, जो होम्योपैथिक डॉक्टर भी है, काउंसलर भी है और एग्जामिनर भी है। तो बच्चों को पढ़ाते भी हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं। तो बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको जो है होम्योपैथी से रिलेटेड करियर के बारे में बातें बताने वाले। तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर शेलके जी का बहुत बहुत स्वागत है।
2: ओम शांति रमेश भाई, बहुत बढ़िया है, काफी दिनों के बाद आपसे बात हो रही है।
1: जी जी,
2: और बढ़िया चल रहा है सब।
1: बहुत बहुत स्वागत है, और मैं चाहूंगा कि आपका इस होम्योपैथी में कैसे एंट्री करना हुआ, किस तरह से आप इस मेडिकल फील्ड से जुड़े, वो थोड़ा सा आप बताएं हमें।
2: जी जी, तो सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उनके लिए काफी एक सपना होता है कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चों को कम मार्क्स मिल जाते हैं, कभी आजकल तो आप जानते ही है कि काफी कंपटीशन है। जैसे अभी MBBS का अगर आप कटआउट लेते हैं, अभी 2 दिन पहले ही रिजल्ट आया है, तो लगभग 700 में से 630 मार्क के ऊपर ही गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, 630 या 650 मार्क तक। तो और अगर समझो आपको 600 मार्क है तो आपको सेमी गवर्नमेंट में मिल सकता है। इसके बाद क्या होता है कि कुछ बच्चे, और फाइनेंशियली भी काफी इम्पोर्टेंट होता है कि भाई आपको फाइनेंस कैसा है आपका। तो दूसरी ये बात होती है कि भाई कुछ बच्चों को फिर भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उसमें फिर एक 2-3 अल्टरनेटिव मेडिसिन रहता है, जो कि आयुर्वेदिक कॉलेज होता है और होम्योपैथिक कॉलेज होता है। तो एडमिशन में ऐसा होता है कि अगर आपको MBBS के मार्क्स नहीं मिलते हैं तो फिर आपके इंटरेस्ट के अनुसार कुछ बच्चे आयुर्वेद में जाते हैं और कुछ होम्योपैथी में। तो जैसा थोड़ा बहुत अगर स्कोर कम होता है अगर और आप अगर डॉक्टर ही बनना चाहते हैं तो होम्योपैथी में आ सकते हैं। जी
1: जी जी, चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि वर्तमान समय में क्या सिनेरियो है, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं किस तरह की बातें होती हैं, ये आपने बताया। तो मैं चाहूंगा कि आप डॉक्टर संदीप शेलके, आपकी बचपन की कुछ यादें हमें ताजा कराइए कि आपका पढ़ाई और कहाँ पर हुआ, किस तरह से आप कॉलेज ज्वाइन किया, उसके बारे में बताइए।
2: जी, तो सबसे पहले तो मेरा जो बेसिक एजुकेशन था, जो कि होता है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10वीं तक, वो जालना में हुआ। उसके बाद 11वीं 12वीं जालना में हुआ, और मैं खुद MBBS के लिए एडमिशन चाहता था, लेकिन उस समय मेरा जो परसेंटेज था मेरे हिसाब से 88% थे, शायद 90 पे क्लोज हुआ था। थोड़ा निराश होने के बाद फिर मैंने सोचा कि भाई अभी डॉक्टरी नहीं करना है, और पुणे में सिम्बोसिस कॉलेज और सिम्बोसिस में एडमिशन लिया और फर्ग्यूसन में लिया कि भाई चलो अभी MPSC UPSC करते हैं। एडमिशन लेने के बाद फिर मेरा जो एजुकेशन था माँ बाप से दूर हुआ है, तो मेरी मम्मी के जो चाचा थे, जैसे मेरे ग्रैंडफादर ही बोल सकते हैं, तो उनके पास था। तो मेरी जो मौसी है वो भी होम्योपैथिक में ही थे, तो फिर उनका कॉल आया कि भाई आप MPSC UPSC मत करो, दोबारा यहाँ पे आपको मिल जा रहा है, अच्छे सीट मिल जा रही है औरंगाबाद में। तो फिर उन्हीं के कॉलेज में मैं होम्योपैथिक कोर्स को ज्वाइन किया।
1: अच्छा।
2: फिर होम्योपैथिक कोर्स 4.5 साल का होता है, उसके बाद 1 साल इंटर्नशिप, के बाद ये हो गया ग्रेजुएशन, के बाद हमने MD किया।
1: डॉक्टर संदीप जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कैसे आपको जो है मेडिकल फील्ड में एंटर करने का मौका मिला, और उसके पहले क्या चीजें हुई वो भी आपने बताया। मैं एक और बात पूछना चाहूंगा, जैसे कि आज के समय में डॉक्टर बनना कितना मुश्किल है या आसान है, वो थोड़ा सा बताइए। मुश्किल क्यों है और आसान क्यों है वो बताइए।
2: दोनों चीज पे हाईलाइट करते हैं। आसान तो कहा जाए तो बिल्कुल नहीं। क्या हो रहा है कि आजकल के जो पीढ़ी हर एक को क्या है, डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है, तो इतना आसान नहीं है। अब जब होम्योपैथी में अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है तो सबने समझ लेना चाहिए कि उसका परसेंटेज कम है। और मेडिकल फैकल्टी में जैसा आप सिलेबस की बात करते हैं, वो होम्योपैथी हो, आयुर्वेदा हो या फिर आपका MBBS हो, सब में लगभग 90% सिलेबस सेम है। जैसे कि एनाटॉमी आता है, फिजियोलॉजी आता है और पूरी बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन आती है। तो ये इसमें किताबों में कोई कुछ भी चेंजेस नहीं होते। अगर बच्चा होम्योपैथी में आता है तो उसको MBBS की किताब पढ़ने के बाद होम्योपैथिक शास्त्र की भी किताब पढ़ना है, या वो आयुर्वेदा में जाता है तो MBBS की किताब भी पढ़ना है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी और उसके साथ आयुर्वेदा का भी पढ़ना है। तो पढ़ाई इतनी आसान नहीं है। दूसरा क्या होता है कि जैसा कम परसेंटेज वाला बच्चा है तो हमने ये देखा है कि फर्स्ट ईयर में काफी लो रिजल्ट लगता है और थोड़ा डिफिकल्ट जाता है होम्योपैथी और आयुर्वेदा। तो जो जिसमें पढ़ाई की लगन है उन्होंने ही डॉक्टरी फील्ड में आना चाहिए। और आजकल क्या हो गया है कि काफी ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस हो चुके हैं और हर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो कंपटीशन भी काफी है और काफी डॉक्टर्स भी है, तो इतना आसान नहीं है डॉक्टर बनना। और दूसरी एक चीज अगर आप एनालाइज करते हैं तो जैसा मेडिकल ग्रेजुएशन ये 5.5 साल का तो लगभग 6 साल का होता है, और उसके बाद PG करना है जो कि MD करना है, तो लगभग आपको 9 साल पढ़ाई करने के बाद आपका करियर चालू होता है। इसके अलावा अगर कोई दूसरी फील्ड आप लेते हैं, जैसे इंजीनियरिंग में 4 साल का ग्रेजुएशन है और 2 साल, तो 6 साल में वो पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है। और बाकी जगह पे भी अगर समझो इंजीनियरिंग करता है पॉलिटेक्निक वगैरह, तो कम टाइम में एक कोई भी अच्छा ऑक्यूपेशनल कोर्स लेकर वो जल्दी से उसका सेटलमेंट हो सकता है। तो कंपटीशन ज्यादा है तो उस हिसाब से जो मेहनती बच्चे हैं और जो कुछ उनको डॉक्टर ही बनना है उन्होंने ही ट्राई करना चाहिए।
1: बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर संदीप शेल के सर। मैं चाहूंगा कि अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक, सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत, उसके बाद फिर से होम्योपैथी एज ए करियर कैसे हम लोग चुन सकते हैं, इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। आप सुना है रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। डॉक्टर संदीप शेलके जी हमारे साथ औरंगाबाद से जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छी बातें वो बता रहे हैं, अपना अनुभव भी उन्होंने साझा किया है। तो अब मैं चाहूंगा कि जो नए बच्चे हैं और खास होम्योपैथी में कुछ करना चाहते हैं, तो उनको किस तरह से सीधा तरीका क्या है, सिंपली वो किस स्टेप्स को फॉलो करें वो बताइए।
1: तो अभी कैसा है कि मेडिकल एजुकेशन में जो भी छात्र एडमिशन लेना चाहता है उसमें तरीका एक ही है कि आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म भरना है। सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद जो प्रोसेस होती है, एक महाराष्ट्र की मेरिट लिस्ट होती है या जो भी स्टेट में जो बच्चा है, एक तो सेंट्रल लिस्ट होती है और एक स्टेट लिस्ट होती है। तो जो जिस तरह उसका मेरिट आएगा उस हिसाब से उसका एडमिशन होता है और कट ऑफ मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे एमबीबीएस का सपोज आप ऐसा पकड़ लो कि एमबीबीएस का हो गया है 590 पे क्लोज होता है गवर्नमेंट कॉलेज। उसके बाद फिर शुरू होगा 590 से नीचे तक जो भी कॉलेजेस है, जितने जितने सीट है। तो फॉर एग्जांपल अगर महाराष्ट्र में 1500 सीट एमबीबीएस की है, तो इस 1500 सीट भरने के बाद उसके बाद होगा सेमी गवर्नमेंट एमबीबीएस, उसके बाद डेंटल की सीट भरी जाएगी, उसके बाद आयुर्वेदा की सीट भरी जाएगी। अच्छा, और उसके बाद आएगा होम्योपैथी की सीट। तो आप ये समझ लो कि सपोज अभी इस वक्त महाराष्ट्र में लगभग 58 होम्योपैथिक कॉलेजेस है। 58 इंटू सपोज आप एक ऐसा पकड़ लो कि एक 70 सीट, कुछ कॉलेजेस में 100 सीट है, कुछ कॉलेज में 50 सीट है, तो लगभग आप 50 × 5 × 25, तो लगभग 3-4 हजार सीट महाराष्ट्र में होम्योपैथिक है। तो मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको करना है, जिस जैसा भी आपका मेरिट आता है तो आपको मेरिट कॉलेज का नाम डालना है, 2 या 3 कॉलेज की प्रेफरेंस डालना है, और फिर जैसे जैसे राउंड होते हैं उस हिसाब से आपको कॉल आएगी। लेकिन इसमें ये ख्याल रखना चाहिए कि आपने कॉलेज सही चुनना है, उसका पिछला कटआउट देखना है और उसी प्रकार से थोड़ा ऑनलाइन में अलर्ट रहना है और एडमिशन होना है। अभी आपको कॉलेज में जाके एडमिशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरना ही एक मेडिकल एजुकेशन का फिलहाल का तरीका है जी।
0: अच्छा, तो ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, क्योंकि कई बार हम लोग जो है कॉलेज ढूंढ लेते हैं एडमिशन के लिए, हम लोग चले जाते हैं, तो निश्चित तौर पे आपने इसको ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो सिस्टम है उसके बारे में आप
1: जी सर।
0: तो ये गवर्नमेंट के लिए है या फिर प्राइवेट के लिए भी है?
1: जी अभी गवर्नमेंट और प्राइवेट का बताता हूँ। मोस्टली होम्योपैथी में गवर्नमेंट कॉलेजेस कम है। अगर अभी महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है, बाकी पूरे प्राइवेट कॉलेज है। अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है, वो भोपाल में है। तो एक हर स्टेट में लगभग अभी एक ही कॉलेज है महाराष्ट्र में। और अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो उसका भी जो है ना कि कट ऑफ मार्क्स आपको देना है और वैसा प्रिफरेंस आपको देना पड़ेगा। तो अभी 99% गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं है, सब पूरे प्राइवेट ही कॉलेज है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया, अभी जो आपने करंट सिनेरियो के बारे में बताया। और इसके साथ में चलिए एडमिशन हो गया, उसमें एडमिशन होने के बाद किस तरह से हमें जो है आगे इम्प्रूवमेंट करना है, कैसे हम लोग ध्यान दे पढ़ाई पर, होम्योपैथी में क्या चीजों का बहुत इम्पोर्टेंट है जो हमें समझना है।
1: मान लो कि आपका एडमिशन हो जाता है, तो अभी एडमिशन होने के बाद ये जो कोर्स होता है 4.5 साल का होता है, जो मेडिकल में सभी कोर्सेस 4.5+1 रहता है, 1 साल का इंटर्नशिप, 4.5 साल का कोर्स, तो उसमें 1.5 साल फिर एक साल, तो ऐसा 1.5, 2.5, 3.5, 4.5। ठीक है, पहला साल होगा 1.5 साल का, दूसरा साल 1 साल का, तीसरा साल 1 साल का, चौथा साल 1 साल का, उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप। और एमबीबीएस में जो होता है कि 3 ही साल होते हैं 1.5-1.5 साल के। तो एडमिशन हो जाए आपकी, उसके बाद फर्स्ट ईयर की एग्जाम आएगी आपको। और अभी जो है एक नया तरीका या चेंजेस किए गवर्नमेंट ने, अभी आ रहा है नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी। तो काफी जो एडमिशन की प्रोसेस है उसमें भी थोड़े चेंजेस हो गए, सिलेबस में भी चेंजेस हो रही है, और गवर्नमेंट क्या कर रही है कि काफी चीजें उनके पास लेके थोड़े रिफॉर्म्स ला रही है। इसके कारण क्या होगा कि थोड़ा एक सिस्टम आ रहा है अच्छी तरह, टीचिंग सिस्टम चेंज हो गया है, सिलेबस चेंज हुआ है और प्लान ऑफ टीचिंग भी बदल गया है। तो इससे थोड़ा एक एजुकेशन में बेहतर चीज आएगी। तो मुझे लगता है कि 2-3 साल में आयुर्वेदा होम्योपैथी का जो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि स्टैंडर्ड कम है, तो अभी गवर्नमेंट खुद उसमें ख्याल दे रही है। तो टीचर्स का भी अपग्रेडेशन हो रहा है, स्टूडेंट्स का भी अपग्रेडेशन हो जाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले महीने जो प्रिंसिपल मीटिंग थी उसमें भी मैं भोपाल में 3 दिन का कॉन्फ्रेंस था, तो वो खुद मैं अटेंड किया हूँ।
0: अच्छा,
1: तो गवर्नमेंट के काफी अच्छे प्लानिंग्स है, और अगर बच्चा चाहे कि अच्छी, देखिए अगर सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए होम्योपैथी में एडमिशन ना ले, अगर वो होम्योपैथिक प्रैक्टिस करना चाहता है, क्योंकि आज के डेट में भी काफी जिसे जो पुरानी बीमारियां होती है, कैसा है कि MBBS का स्टूडेंट है, एक्यूट स्टेज में आप सर्जरी केस में MBBS का छात्र अच्छा काम कर सकता है, लेकिन 90% जो बीमारियां है वो जटिल बीमारियां होती है, पुरानी बीमारियां होती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होती है, और इसी में जहां तक अंग्रेजी दवा का इलाज है वो टेम्परेवरी होता है, लॉन्ग टर्म नहीं होता है, और उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो लॉन्ग टर्म परमानेंट इलाज के लिए होम्योपैथी और आयुर्वेदा मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। तो बच्चों ने ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भाई ये पैथी कम है या वो पैथी कम है, मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, आज 23 ईयर्स से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो काफी अच्छी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस के साथ साथ मैं मेडिकल कॉलेज में भी आज प्रोफेसर हूँ, HOD हूँ, और काफी बोले तो कोई रिजल्ट्स के बारे में कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि कॉलेज सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, और बच्चे में एक हुनर होना चाहिए और पढ़ाई करने की जिद होना चाहिए। तो वो एडमिशन होने के बाद अगर वो फोकस करता है, प्रॉपर पढ़ाई करता है, तो मुझे नहीं लगता है कि भाई कोई पैथी के बारे में कोई प्रॉब्लम आएगा। जी
0: बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर साहब। एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, जब आपने बताया कि सिर्फ डॉक्टर बनना है इसलिए होम्योपैथी में एडमिशन ना लें, तो इसका क्या भाव अर्थ है, थोड़ा स्पष्ट कीजिए।
1: हाँ, तो जनरली क्या होता है कि काफी लोग डॉक्टर बनने के बाद वो कोई जनरल प्रैक्टिशनर बन जाता है, और वो होम्योपैथी पढ़ने के बाद भी एलोपैथी प्रैक्टिस करता है। ये जो सिनेरियो है 80% स्टूडेंट्स यही करते हैं, हालांकि उसे जो पढ़ाया जाता है वो पूरा होम्योपैथिक शास्त्र पढ़ाया जाता है या आयुर्वेदा का शास्त्र पढ़ाया जाता है। तो जो छात्र आयुर्वेदा में पढ़ता है उसने आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करना चाहिए, जो छात्र होम्योपैथी में पढ़ाई कर रहा है उसने होम्योपैथिक प्रैक्टिस करना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि फास्ट रिजल्ट और जल्दी पैसा कमाने के बच्चों को लगता है, इसके कारण वो शॉर्टकट प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं और वो जनरल प्रैक्टिस करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर होम्योपैथी का जिसको अच्छा नॉलेज है, जिस छात्र को अच्छा नॉलेज है, वो होम्योपैथी में अगर फोकस करे तो काफी अच्छी प्रैक्टिस कर सकता है, और उसी में इसे कमाई भी अच्छी हो सकती है और सेटिस्फेक्शन भी बहुत अच्छा होगा। जी
0: जी जी जी, ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताया, क्योंकि कई बार चीजें जो है हमें सिर्फ डॉक्टर बनना है इसलिए पढ़ते हैं, तो हमारा पढ़ने का जो जुनून है वो शायद ढीला ढाला ही रहता है।
1: yes.
0: ये आपने थोड़ा सा बताया, इसलिए मैं भी चाह रहा था कि इस चीज को थोड़ा सा हाईलाइट करें आप। आगे हम लोग बातें करेंगे कि होम्योपैथी में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज और सरकार की तरफ से क्या पहल हो रहे हैं, इसके बारे में जानते हैं। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक। आप सुना है रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में, जहां पर हम लोग जीवन विकास नाम से भी इस कार्यक्रम को करते हैं, जहां पर व्यक्ति के जीवन को एक नया मोड़ दे, एक उनका विकास हो, उनका व्यक्तित्व में विकास हो, नाम कमाए, काम करे, अच्छा काम करे, सोसाइटी के लिए काम करे, उनका पूरा ऑलराउंड हेल्थ जो है इम्प्रूव हो, इसलिए हम लोग इसमें बात करते हैं। जैसे अभी डॉक्टर संदीप जी ने बहुत ही आत्मदृष्टि की बात कही कि सिर्फ डॉक्टर बनना है इसलिए होम्योपैथी में एडमिशन न लें, आपको प्रॉपर डॉक्टर बनना है और अच्छे डॉक्टर बनना है, सोसाइटी में एक नाम करना है, होम्योपैथी का भी नाम करना है, ये अगर मकसद लेके आप करते हैं तो बहुत अच्छा है। कि कोई भी फील्ड छोटा नहीं है, आप हर फील्ड में मास्टरी हासिल कर सकते हैं और लोग आपके नाम से होम्योपैथी को पहचानेंगे, तो इसीलिए आप होम्योपैथी के एम्बेसिडर बनते हो। सिर्फ एडमिशन लेना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, एडमिशन के बाद ही आपका काम शुरू हो जाता है, तो इसीलिए किसी भी फील्ड को छोटा ना समझे और जो भी फील्ड है उसको पूरे ईमानदारी से आप करें। आइए डॉक्टर संदीप जी, मैं चाहूंगा कि आप होम्योपैथी में जब एंटर किए तब क्या सिचुएशन था और अभी होम्योपैथी में क्या क्या नया चेंजेस आए हैं और सरकार इस पे क्या काम कर रही है, जो आपने बीच में थोड़ा सा हिंट दिया उसको और स्पष्ट की।
2: जी, तो काफी अच्छा सवाल है आपका रमेश जी। तो सबसे पहले जब मेरा जो एडमिशन था होम्योपैथी में 1996, तो उस समय सिनेरियो काफी डिफरेंट था कि एडमिशंस इजीली हो जाते थे, प्रोसेस डिफरेंट थी और लोगों में इतना इंटरेस्ट नहीं था। आज के डेट में लोग या जो भी पब्लिक है बाय चॉइस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को आती है। सबसे ये डेवलपमेंट हो सकता है होम्योपैथी के बारे में बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि करियर ऑप्शंस क्या होते हैं होम्योपैथी में। तो सबसे पहले करियर ऑप्शंस क्या है कि जब भी आप, कुछ लोग कैसा है कि BHMS जैसे कि ग्रेजुएशन करने के बाद आपकी खुद की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, जो कि होम्योपैथी का खुद का एक छोटा क्लिनिक चालू करके वो पेशेंट को सेवा दे सकते हैं। ये होगा पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन होता है फिर उसने पोस्ट ग्रेजुएशन करना, जो कि MD होता है, जो 3 साल का कोर्स होता है। जब भी कोई छात्र MD करता है तो उस शास्त्र के बारे में उसको डिटेल मालूमात होती है और वो और अच्छी सेवा दे सकता है। अगर MD करने के बाद उसके जॉब ऑप्शंस भी बढ़ते हैं। काफी लोग ये भी करते हैं कि BHMS हो गया, MD हो गया, तो प्रैक्टिस के अलावा आप मेडिकल कॉलेज में टीचर या प्रोफेसर बोल के ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको शिक्षक बनना है होम्योपैथी में तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होता है वो है MD, और उसके बाद आजकल उसके आगे भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो PhD कर सकते हो। अभी MD करने का सबसे मेन फायदा जो होता है कि काफी लोगों को या पेशेंट भी सोचते हैं कि भाई अगर मुझे ट्रीटमेंट लेना है तो कम से कम डॉक्टर MD होना चाहिए। तो ये एक साइकोलॉजिकल भी उसको फायदा होता है और उसका नॉलेज अपग्रेड होने के कारण उसको सही मात्रा में, सही दिशा में वो ट्रीटमेंट दे सकता है। इसके बाद जैसा आपका ग्रेजुएशन हुआ है तो आप MPSC UPSC से भी ट्राई कर सकते हैं। ये एक होगा तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन मैं ये बताना चाहता हूँ कि काफी स्टूडेंट्स, अभी आज पूरे महाराष्ट्र में मैं पढ़ाता हूँ, ऑल इंडिया में मैं जाता हूँ, तो काफी स्टूडेंट्स ने अच्छे अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स में HR मैनेजर हो गए या हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं। कुछ बच्चे इमरजेंसी कोर्सेज करते हैं होम्योपैथी के बाद। कुछ बच्चे जो है ना कि एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस करते हैं। और कुछ छात्रों ने हमने ये भी देखा है कि खुद के क्लासेस शुरू किए जो होम्योपैथी पढ़ाते हैं। तो ये ऐसे डिफरेंट ऑप्शन है। अभी मेरे काफी स्टूडेंट्स है जो कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में अच्छी सेवा दे रहे हैं। तो अगर आप में कुछ करने की चाहत है तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्षेत्र, जैसा आपने बताया कि छोटा या बड़ा है, तो काफी स्कोप है। तो मुझे नहीं लगता है कि

0: कॉलेजेस काफी कम थे। अगर आपको एग्जाम्पल देना तो महाराष्ट्र में तो था ही नहीं, तो अभी एक नया कॉलेज जलगांव में चालू हुआ है। फिर काफी जगह में जाता तो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, केरला में हैदराबाद में है, उसके बाद भोपाल में है। तो अभी इतने अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लेकिन आगे चल के जैसा कि हर गांव में एक सिविल अस्पताल होता है, या तुम्हारा आरोग्य केंद्र होता है, तो हर जगह पे मेडिकल ऑफिसर की जगह निकलने के बाद अभी फिलहाल तो होम्योपैथिक डॉक्टर्स को इतना स्कोप नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 4-5 साल में हर हॉस्पिटल में होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए भी एक मेडिकल ऑफिसर, या जिसको RMO कहते हैं, रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर, इनके लिए जगह निकलेंगी, तो ये भी एक ऑप्शन है। तो एक सरकारी नौकरी के लिए अगर कोई छात्र चाहता है तो आगे चल के उसको नौकरी मिलने के एक 30% चांसेस है। जी
1: हाँ, जैसे राजस्थान में आप देखेंगे कि हर टाउन में, छोटे छोटे टाउन में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है और वो राजस्थान सरकार के द्वारा इस्टेब्लिश्ड है सारे। तो ऐसा क्या हो सकता है इन फ्यूचर के होम्योपैथी हॉस्पिटल्स भी जगह जगह खुले और वहां पर होम्योपैथिस्ट बैठे? तो चलिए, मैं चाहूंगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, सरकार अगर चाहे तो कर सकता है। जैसे राजस्थान में आयुर्वेदिक के हॉस्पिटल हर जगह मिलेंगे आपको और वहां बेकायदा डॉक्टर भी बैठते हैं और मेडिसिन भी लोगों को फ्री दिया जाता है।
0: मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जैसा कोरोना पीरियड में होम्योपैथी में जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया था कि एक आर्सेनिक एल्बम नाम की दवा है, तो हर किसी ने लेना चाहिए और खाना चाहिए। तो उस समय दवा का रिजल्ट तो था ही था, काफी हद तक कोरोना कंट्रोल करने में हेल्प हुई, लेकिन इससे ये पता चला गवर्नमेंट से कि उनको भी पता चला कि होम्योपैथिक दवा अच्छी तरह काम कर सकती है, और लोगों में जो जागरूकता थी होम्योपैथिक के बारे में, होम्योपैथिक के बारे में जागरूकता बढ़ी, उनका विश्वास बढ़ा, और डेफिनेटली काफी हद तक होम्योपैथी ने कोरोना कंट्रोल करने में मदद की। तो इस तरह लोगों की जो आज होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी काफी प्रैक्टिस भी बढ़ी और लोगों का उसमें विश्वास कायम रहा। तो ये चीज होती है कि गवर्नमेंट अगर थोड़ा एक पहल लेती है तो लोगों में एक विश्वास बढ़ता है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट उस दिशा में सोच रही है, जैसे कि योगा है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है, ये एक पिलर्स कह सकते हैं आप, कि इससे
1: जी
0: ही इसके कारण देश में सेवा करने का भी मौका मिल रहा है, और जैसे कि बीमारियां कंट्रोल करने में, जटिल बीमारियां कंट्रोल करने में डेफिनेटली होम्योपैथी काफी काफी मदद कर रही है और बहुत इम्पोर्टेंट रोल है।
1: जी जी जी एक बात और पूछना चाहूंगा। होम्योपैथी में जैसे कि जो कॉन्सेंट्रेशंस होते हैं, लिक्विड्स होते हैं और वो व्हाइट कलर के गोलियां होती
0: जी
1: हैं, है ना?
0: जी जी
1: तो ये जो ये कॉन्सेंट्रेशन बनता है, ये कैसे बनता है? हर्ब से बनता है
0: हाँ,
1: या
0: तो
1: इसमें अल्कोहल की मात्रा भी होती है, तो कितना
0: जी
1: होती
0: जी
1: है? थोड़ा सा
0: बता
1: वो
0: रहा
1: थोड़ा सा डिफाइन कीजिए।
0: हूँ, होम्योपैथिक मेडिसिन का जैसा बताना चाहता हूँ कि इसमें केमिकल कोई होता नहीं है। अगर आपको अभी एग्जाम्पल लेना, पैरासिटामोल जो क्रोसिन गोली आती है, उसको अगर बनती है तो पूरी एक पाउडर फॉर्म में बनती है, उसमें केमिकल होता है। होम्योपैथिक में अगर दवा जो होती है, इसका मेन सोर्स होता है हर्बली सोर्स होता है, एनिमल सोर्स होता है, मिनरल सोर्स होता है। तो जितनी भी चीज धरती पे पाई जाती है, एग्जाम्पल के लिए अगर बता जाओ तो नमक से भी दवा बनती है, हल्दी से भी दवा बनती है, तुलसी से भी दवा बनती है, और जितने भी आयुर्वेद में जितने भी झाड़ या जितने भी सोर्सेस बताए गए, उसी सोर्स से ये दवा बनती है। लेकिन आयुर्वेदा से भी जो होम्योपैथी में जो दवा होती है, उसकी मात्रा बिल्कुल नैनो टेक्नोलॉजी जैसा, एक नैनो पार्टिकल जैसी होती है। जैसा कि अगर आपको एग्जाम्पल देना है, तो अगर तुलसी के इससे दवा बनाना है, तो तुलसी का एक बूंद लेना है दवा का, जो जूस का, और उसको क्या करना है कि एक 100 ml, फॉर एग्जाम्पल एक 100 ml अल्कोहल में डालते हैं। अल्कोहल में डालने के बाद उसमें से फिर एक एक बूंद लेना है और उसको एक 100 स्ट्रोक मारना है या 100 झटके मारना है, तो उसके बाद ये एक पावर की दवा होती है। तो अगर आपको 30 पावर की दवा होना है, फिर दोबारा उसको क्या करेंगे, 100 ml अल्कोहल में डाला जाता है, फिर उसमें से एक बूंद लेने का, फिर उसको 100 स्ट्रोक मारना है, तो ये हो गई 2 पावर की दवा। तो ऐसा कंटिन्यू 30 बार हर इसमें से, वो जो हर हर बार एक एक ड्रॉप उसमें से लेके 100 ml में डाला जाएगा, और ऐसा 100 जब 30 बार किया जाएगा तो वो हो जाएगी 30 पोटेंसी की दवा। तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि दवा जो है इसमें नाम मात्र होती है और ये अल्कोहल बेस्ड होती है, तो शरीर में पाई नहीं जाती है, लेकिन इसकी जो पावर है वो काफी अच्छी होती है। इसको डायनेमिक पावर बोलते हैं, वाइटल पावर बोलते हैं।

0: हैं, और हम जब ये शरीर में दवा देते हैं तो ये स्टिमुलेशन का काम करता है, और वो स्टिमुलेशन होने के बाद वो बीमारी जल्द से जल्द ठीक होने में मदद करता है। जी सर।
1: तो इसमें अल्कोहल का कोई परसेंटेज भी होता है कि नहीं होता है?
0: अल्कोहल लगभग 99% होता है, लेकिन
1: अच्छा
0: ये
1: अच्छा
0: जो होता है कि जो मार्केट में अल्कोहल पाया जाता है, ये मेडिसिनल अल्कोहल होता है, और ये
1: अच्छा
0: जो है ना आपको एक या दो ही बूंद दिया जाता है दवा के अंदर, तो इसी
1: अच्छा
0: से शरीर को कोई हानि नहीं होती। और दूसरी बात जो थी आपने जो बताया कि जो गोलियां होती है, वो सफेद सफेद गोलियां जो होती है,
1: हाँ
0: मीठी मीठी गोल, जैसे होम्योपैथी को सब उसी के नाम से पहचानते हैं,
1: हाँ
0: तो ये जो गोली होती है सबसे पहले तो बहुत मीठी होती है, तो छोटे बच्चे काफी आकर्षित होते हैं गोली खाने के लिए। अब ये गोली जो है वो दूध और शक्कर से बनती है, जनरली बकरी का दूध, बकरी के दूध से एक पोटेंडाइज मेथड से इसको बनाते हैं, और छोटी छोटी गोलियां बनती है, और शुगर की मात्रा बहुत कम होती है इसमें, तो डायबिटीज के पेशेंट भी इसको आसानी से खाते हैं। जो शुगर इससे डायबिटीज की शुगर बिल्कुल नहीं बनती बढ़ती, तो बहुत अच्छी प्रकार से बनती है, स्टेराइल रहती है, और आसानी से। मैं सबको, दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि सबसे आसान इजीली जो दवा आप खा सकते हैं वो होम्योपैथिक है। आयुर्वेदिक में भी काढ़ा होता है या कड़वी दवा होती है, होम्योपैथी में ऐसी कोई चीज आपको कभी लगेगा नहीं कि मैं दवा खा रहा हूँ। जैसे एलोपैथिक दवा भी आप खाएंगे तो खाने के बाद थोड़ा रेस्टलेस होता है पेशेंट, या कोई साइड इफेक्ट होता है, तो ये ऐसा कोई चीज होम्योपैथी में पाई जाती नहीं, इसीलिए ये बच्चों में, बूढ़ों में और सब लोगों में काफी लोकप्रिय है।
1: डॉक्टर संदीप जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि होम्योपैथी कैसे बनता है और क्या क्या चीजें उसमें होती है, और उसके पावर्स के बारे में आपने स्ट्रोक के साथ समझाया। इसके साथ में क्या होम्योपैथी में लिक्विड्स भी, जैसे एलोपैथी में सिरप्स होते हैं,
0: जी,
1: वैसे होम्योपैथी में सिरप्स भी बनते हैं क्या?
0: काफी अच्छा सवाल है आपका। तो अभी जैसी एलोपैथी में जैसी कंपनियां है, वैसे होम्योपैथी में भी काफी कंपनियां है। कुछ नाम बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि SBL है, लॉर्ड्स है, श्वेबे है। तो आजकल कैसा है कि ये इस प्रकार के मेडिसिन भी होम्योपैथी में उपलब्ध है, इसे पेटेंट मेडिसिन कहा जाता है। जैसे कि कफ सिरप होता है, टॉनिक होता है। अब होम्योपैथी में अगर कहा जाए तो नाम के लिए एक बताता हूँ, अल्फा अल्फा टॉनिक आता है, कफ सिरप भी काफी आते हैं। तो सभी प्रकार की होम्योपैथी में भी लिवर टॉनिक, अल्फा टॉनिक, कफ सिरप, डायबिटीज के ड्रॉप, सब प्रकार के दवा अवेलेबल है, और काफी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अच्छा बिजनेस भी कर रही है और अच्छे रिजल्ट्स भी दे रहे हैं। तो पेशेंट्स को आजकल कुछ डॉक्टर्स इस गोलियों के साथ, अगर खांसी की दवा है, टॉनिक है, क्योंकि क्या होता है कि पेशेंट को क्या लगता है कि सिर्फ ये गोली ठीक नहीं करेंगी, ये एक साइकोलॉजिकल पेशेंट में एक धारणा होती है। तो इसी कारण कुछ कंपनियां अच्छे दवा लेकर आई है, और काफी लोग सक्सेसफुली ये जो एलोपैथी जैसी दवा होम्योपैथी में भी उपलब्ध है और वो दे रहे हैं।
1: जी, चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, और मुझे लगता है कि हमारे सभी जो युवा साथी हैं या जो सुन रहे हैं, उन सभी को काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। इसके साथ में एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, होम्योपैथी में अगर हम समझो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला, तो वो और कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं क्या? इसके अलावा
0: जी,
1: प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन सी जगह पे काम कर सकते हैं, वो थोड़ा सा बताएं।
0: काफी अच्छा सवाल है आपका। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, अगर वो पढ़ाई पढ़ाने में इंटरेस्टेड है तो कोई मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर सकता है। इसके अलावा नर्सिंग कॉलेज है, पैरा मेडिकल कॉलेज है, इनमें भी वो जाके पढ़ा सकते हैं। इसके बाद वो पर्सनल कोचिंग चालू कर सकते हैं। उसके बाद जो है कि जैसा मैंने बताया आपको कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 90%, जैसा भी औरंगाबाद में भी आप मुझे पूछते हैं, तो जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स है, तो हर जगह हमारे ही स्टूडेंट्स, होम्योपैथी के स्टूडेंट्स काम करते हैं एज अ असिस्टेंट डॉक्टर, जो मेन डॉक्टर्स होते हैं उनको हेल्प करने के लिए, और काफी अच्छी तगड़ी कमाई भी करती है, अच्छी उनकी पगार भी होती है, और काम भी अच्छा करते हैं। तो ऐसा ये नहीं है कि भाई सिर्फ MBBS करने के बाद ही हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। और अपनी जैसी चर्चा हुई है कि गवर्नमेंट जॉब्स भी है, तो 10-20% है, स्लोली स्लोली वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो ऐसे काफी ऑप्शंस है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोग एक छोटे छोटे कोर्सेस करते हैं, कोई कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स करता है, या कोई HR मैनेजर का कोर्स करता है, और एक नया कोर्स करते हैं सब, हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो होम्योपैथी करने के बाद, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करने के बाद भी कुछ अच्छे हॉस्पिटल्स में, जैसे कि काफी स्टूडेंट्स हैं हमारे कि जो हॉस्पिटल में भी अच्छी तरह हॉस्पिटल संभालना, ये भी एक बहुत बड़ी कला होती है, तो ये बच्चे ये भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऐसे काफी ऑप्शन है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया डॉक्टर संदीप जी, बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया। और जो नए बच्चे होम्योपैथी में जुड़ना चाहते हैं उन सभी के लिए आप एक मैसेज के तौर पे, संदेश के रूप में क्या बताना चाहेंगे अभी?
0: संदेश में यही बताना चाहूंगा कि डॉक्टर बनना है तो आपका निश्चय दृढ़ होना चाहिए, कोई पैथी छोटी या बड़ी होती नहीं है। आप अगर अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वो होम्योपैथी हो, आयुर्वेदा हो, या MBBS या एलोपैथी हो, आपका निश्चय मजबूत होना चाहिए। अगर आपकी पढ़ाई स्ट्रांग है, आपका विश्वास अच्छा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अच्छा डॉक्टर बनने में कोई रोक सकता है। और अगर आप में सेवा करने की रुचि है, तो मुझे लगता है कि आप डॉक्टर बनने के लिए ही इस धरती पे जन्म लिया है। तो मुझे लगता है कि आप होम्योपैथी में आइए, विस्तार कीजिए होम्योपैथी का, और लोगों की सेवा कीजिए। धन्यवाद।
1: चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया होम्योपैथी के बारे में, छोटी छोटी बातें आपने सुनाया है, और निश्चित तौर पे हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों के लिए ये सेशन बहुत ही फ्रूटफुल है, और जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं मेडिकल में, खास होम्योपैथी में, उनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल सेशन रहा। तो चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में हमने डॉक्टर संदीप जी से सारी जानकारी करियर इन होम्योपैथी के बारे में लिया। अगर फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशन रह जाता है या कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिला ऐसा लगता है, तो आप रेडियो मधुबन पर मैसेज कर सकते हैं 9414151415 इस नंबर पे, अपना नाम के साथ आप मैसेज कीजिए, तो आपको फॉलोअप करेंगे और आपको जवाब भी देंगे। तो चलिए इन्हीं शुभ आशाओं के साथ अपना और देश का नाम रोशन करें, ऐसी शुभ इच्छा के साथ आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति
0: ओम शांति,
1: सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाए, घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया, और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया, कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडिओ पुणे आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा।
1: नमस्कार, मी मोनाली सावगत, तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ पुणे आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशिया बाटो।
2: रेडिओ पुणे आवाज, खुश रहो, खुशिया बाटो। नमस्कार रेडियो श्रोतागण, आपके पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो पुनेरी आवाज पर प्रस्तुत है ज्ञान चिंतन, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको ज्ञान और सोच के नए आयामों से रूबरू कराएगा। ज्ञान चिंतन।
3: नमस्कार साथियों, मेरा नाम है बीके लीना और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आजकल थोड़ा पीछे छूट गया है, वो है सादगी। जी हाँ, सादगी यानी सिंपलिसिटी। भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भागते रहते हैं, महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ियां, आलीशान घर, लेकिन क्या असली खुशी इन चीजों में है? कभी सोचा है एक कप चाय की चुस्की लेते हुए अपनों के साथ कुछ पल बिताने में कितनी शांति मिलती है, या फिर सुबह सुबह उगते सूरज को देखना और प्रकृति की सुंदरता को महसूस करना? ये छोटी छोटी चीजें, ये सादगी हमारे जीवन को कितना खूबसूरत बना सकती हैं। सादगी का मतलब ये नहीं कि आपके पास कुछ ना हो, इसका मतलब है जो भी आपके पास है उसमें संतुष्ट रहना, दिखावे से दूर अपने दिल की सुनना। तो आज से कोशिश कीजिए अपनी जिंदगी में थोड़ी सादगी लाने की। अपनों के साथ वक्त बिताइए, प्रकृति को महसूस कीजिए और छोटी छोटी खुशियों का आनंद लीजिए। याद रखिए, असली खुशी सादगी में ही छिपी है।
2: आशा करते हैं कि आज की ज्ञान चिंतन ने आपके मन में नई सोच और नए विचारों को जगा दिया होगा। अगले ज्ञान चिंतन में हम आपसे फिर जुड़ेंगे, तब तक बने रहें रेडियो पुनेरी आवाज पर। खुश रहो, खुशियां बांटो।
4: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
5: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके, 10,000 crore सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 crore सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितने आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते वैसे करना।
4: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, मैं हूं पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आपण ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM. मी स्मिता जयकर, आनंदी रहा, आनंदवान.
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज. सिस्टर शिवानी, वेलकम टू बीइंग डिवाइन.
2: ओम शांति. थैंक यू.
1: आप कुछ कह रही थी उस दिन अबाउट थॉट्स से लेकर डेस्टिनेट तक. मुझे एक डाउट आ रहा था कि भाई थॉट्स जो हैं, थॉट्स हमारी तो जो छोटा बच्चा पैदा होता है वो थॉट्स लेके तो पैदा नहीं होता है, वो संस्कार लेके पैदा होता है पिछले जन्म के. तो थॉट्स फिर मैं क्रिएट करता हूँ कैसे हुआ?
2: सारा दिन सिर्फ चेक करना है कि हर थॉट जो आ रही है, आपको भूख लगी, आपने डिसाइड किया आपको ये खाना है, फिर आपने डिसाइड किया आपको इतने बजे उठना है, इससे बात करनी है, ये बात करनी है, ये काम करना है, दिस एवरीथिंग इज अ थॉट ना. फिर किसी ने कुछ कहा, आपको वो सुन के अच्छा लगा या आपको वो सुन के अच्छा नहीं लगा, इट्स अ थॉट ना. फिर हमने उसकी बात सुनने के बाद ये सोचा इसने ऐसा क्यों कहा, दिस इज अ थॉट ना. तो ये सब कौन क्रिएट करता है?
1: क्या ये पॉसिबल है इस चीज को हम एकदम कंट्रोल में ला सकते? कोई बोला बोला हट के निकल पड़े आगे और वहां उसको, मतलब जैसे छोटे बच्चे के हाथ से खिलौना एक छीन के दूसरा हाथ में देते, तो
2: दिस इज द लाइन, एक छीन के दूसरा हाथ में देना होगा.
1: हाँ.
2: अगर सिर्फ एक छीनने की कोशिश की तो इट विल नॉट हैपन. एंड जो आपने इसलिए कहा कि इज इट पॉसिबल कि ये थॉट आए और हम कहीं कट और हम आगे चले,
1: हाँ.
2: तो नॉट पॉसिबल. लेकिन उस थॉट की जगह हमें एक और थॉट देनी पड़ेगी. खिलौने की जगह एक और खिलौना देना पड़ेगा.
1: खिलौने की जरूरत है.
2: माइंड कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग. तो अगर आपको वो पर्टिकुलर थॉट लग रही है कि प्लेजेंट नहीं है, अनकंफर्टेबल है, राइट नहीं है, मेरे लिए सही नहीं है, दूसरे के लिए सही नहीं है, ये सही नहीं है, तो हमें मन को समझाकर फिर उस थॉट को चेंज करना पड़ेगा. मन को दबा नहीं सकते कि नहीं ये नहीं सोचो. इट्स लाइक अ चाइल्ड जो आपसे कुछ कहता है. सपोज आपका ग्रैंड चाइल्ड है, वो कहे दादा उसने ऐसा क्यों कहा, तो आप उसको बोलो चुप कर जा, क्यों पूछा?
1: तब इमीडिएटली मैं चेंज कर देता.
2: आप अगर चेंज भी करेंगे ना, वो थोड़ी देर के बाद फिर से पूछेगा.
1: अच्छा.
2: जब तक आप उसको उसकी बात का
1: आंसर
2: नहीं देंगे, द माइंड नीड्स एन आंसर. उसने ऐसा क्यों कहा, गिव इट एन आंसर. लेकिन फिर भी ऐसा गिव इट एन आंसर. इसीलिए तो ज्ञान इतना इम्पोर्टेंट है. जब ज्ञान हमें नहीं था कि ये अलग अलग संस्कार है, अलग अलग नजरिया है, अलग अलग एटीट्यूड है, जब ये ज्ञान नहीं था तो हम बैठे रहते थे लंबा ये सोचकर, लेकिन ऐसा क्यों कहा, लेकिन ऐसा क्यों कहा, लेकिन ऐसा क्यों किया. अभी प्रोसेस पता है ना, दैट्स वाई नोइंग दैट इनर प्लांट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस्टरडे वी सॉ थॉट्स, फीलिंग्स, एटीट्यूड, एक्शन, हैबिट, पर्सनैलिटी, डेस्टिनी, इनर प्रोसेस. क्या ये किसी भी दो लोगों का सेम हो सकता है? अब थॉट्स का भी इनपुट क्या था, इन्फॉर्मेशन, पास्ट एक्सपीरियंस, बिलीफ सिस्टम. तो किसी भी दो लोगों का ये तीन फैक्टर सेम नहीं होता है.
1: लेकिन बिलीफ सिस्टम तो मेरे हिसाब से चॉइस है.
2: बिलीफ सिस्टम मीन्स व्हाट इज माय बिलीफ अबाउट सर्टेन थिंग्स इन लाइफ. दिस इज माय बिलीफ. अब आपका बिलीफ और मेरा बिलीफ डिफरेंट होगा.
1: एक आदमी बोलता है गुस्से से काम होता है.
2: हाँ?
1: एक आदमी बोलता है प्यार से होता है.
2: एक कहता है कि गुस्से से होता है, एक कहता है कि प्यार से हो सकता है. दोनों का रॉ मटेरियल, दैट इज बिलीफ सिस्टम, दोनों का डिफरेंट.
1: टोटली ऑपोजिट है.
2: टोटली ऑपोजिट. ठीक है. अब जब दोनों का रॉ मटेरियल ऑपोजिट है तो दोनों की फैक्ट्री में से बनने वाला प्रोडक्ट सेम कैसे होगा? अब हमें दोनों का बिलीफ सिस्टम तो पता नहीं है. आपको मेरा नहीं पता होगा, मुझे आपका नहीं पता होगा, लेकिन हमें दिखेगा क्या, एक दूसरे का प्रोडक्ट दिखेगा कि आप क्या बोलते हैं मुझसे, कैसा व्यवहार करते हैं. सो वी सी द अदर पर्सन आफ्टर द प्रोडक्ट कम्स आउट.
1: रॉ मटेरियल से मेरा बिहेवियर पता चलता है, यू मीन टू से?
2: बिलीफ सिस्टम, थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड, परसेप्शन, एक्शन, हैबिट, पर्सनैलिटी.
1: अच्छा तो जैसे मैं बात करता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, करता हूँ, दैट उसकी उसका उसका सीड
2: उसका उधर से है ना, रॉ मटेरियल से स्टार्ट हो रहा है,
1: बिलीफ सिस्टम से।
2: तो जब आपका और मेरा बिलीफ सिस्टम डिफरेंट, तो आपकी मेरी थॉट्स डिफरेंट, एटीट्यूड्स डिफरेंट, पर्सपेक्टिव्स डिफरेंट, कर्म एक्शन डिफरेंट, हैबिट्स डिफरेंट, पर्सनालिटी डिफरेंट। अब इस तरह से हर एक डिफरेंट। अब जब हर एक डिफरेंट, तो जब हमने दूसरे को देखा, हमने कहा ऐसा क्यों करते हैं। सो वी कुड गो ऑन एंड ऑन फॉर डेज, फॉर इयर्स, ऐसा क्यों करते, ऐसा क्यों करते, ऐसा क्यों करते।
1: उसने मुझे आज से 25 साल पहले ऐसा क्यों बोला।
2: नाउ अब इसको भी लेते हैं। हमने देखा थॉट्स के तीन फैक्टर्स है, इन्फॉर्मेशन, पास्ट एक्सपीरियंस, बिलीफ सिस्टम।
1: अब इन्फॉर्मेशन, पास्ट एक्सपीरियंस,
2: बिलीफ सिस्टम, राइट। तो अब आपने, उसने मुझे 25 साल पहले ऐसा क्यों बोला, क्योंकि 25 साल पहले उसको आंसर नहीं किया था माइंड को, तो वो पास्ट एक्सपीरियंस में स्टोर हो गया। तो तीन रॉ मटेरियल जा रहे हैं ना थॉट्स क्रिएट करने के लिए, तो वो पास्ट एक्सपीरियंस में स्टोर हो गया, क्योंकि उसको आंसर नहीं किया था, डिलीट नहीं किया था। अब ये 25 साल में कई बार ये थॉट आ जाएंगे कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा। 25 साल में जब भी वो वाला व्यक्ति फिर मिलेगा या कहीं भी उसको कोई रेफरेंस कोई उससे करेगा, कोई उसके बारे में बात करेगा, कहीं आप उसके बारे में पढ़ लेंगे, वो पास्ट एक्सपीरियंस में से थॉट जरूर क्रिएट होगी फिर से। पास्ट एक्सपीरियंस, थॉट, एटीट्यूड, एक्शन, कर्म, डेस्टिनी, कितना इम्पोर्टेंट है। इट्स नॉट जस्ट स्टेइंग एट पास्ट एक्सपीरियंस, इट इज कमिंग आउट एट डेस्टिनी। बिकॉज वो पास्ट एक्सपीरियंस रिजोल्व नहीं किया, जब भी याद आई एक पेन यहां क्रिएट हुआ। मतलब चोट पे चोट पे चोट, हम कमजोर होते गए, डेस्टिनी अफेक्ट हो गई।
1: तो इसको कैसे हटाएं ये 25 साल वाली बात।
2: आज ही आंसर दे देते हैं ना, उस व्यक्ति का इन्फॉर्मेशन सिस्टम अलग,
1: बिलीफ सिस्टम अलग,
2: उसके अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस अलग, उसका रॉ मटेरियल बिल्कुल अलग, उसका फाइनल प्रोडक्ट मेरा फाइनल प्रोडक्ट सेम नहीं हो सकता। हमें लगता है लोग हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, लोग हमारे से ऐसे बात कर रहे हैं, लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। लोग एक्चुअली हमारे साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, लोग अपना फाइनल प्रोडक्ट बाहर फेंक रहे हैं सारा दिन।
1: Whether you speak or not,
2: through my vibration, through my words, through my behavior, it's coming out. Whatever is getting manufactured here is coming out. अब मेरे सामने आप आ जाओ या कोई भी और आ जाए, my product that is coming out is not changing according to the person, it is changing according to what I am manufacturing here. तो हम जो रेडिएट कर रहे हैं, हम जो बिहेव कर रहे हैं, वो दूसरे के अनुसार या दूसरे के हिसाब से नहीं, वो अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से रेडिएट कर रहे हैं। इसलिए जब हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज होता है, लोग नहीं बदलते, हम बदल जाते हैं। दुनिया नहीं बदलती, लेकिन हम बदल गए होते हैं। बाकी सब लोग तो सेम है, देन वाई हैव वी चेंज्ड, बिकॉज वी चेंज समथिंग हियर। अब अगर आपने कहा कि कोई नायलॉन बना रहा है, कोई कॉटन बना रहा है, कोई वुल बना रहा है, अब सपोज चार लोग हैं, अलग अलग अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है। हमें लगता है मुझे देखकर मेरे सामने इसने नायलॉन क्यों बनाया, मेरे को देखकर नहीं बनाया, वो उसकी फैक्ट्री का वो ही प्रोडक्ट है और वो बहुत सालों से या शायद बहुत जन्मों से वो ही प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब हमें पसंद आए या ना पसंद आए, हमें अच्छा लगे या नहीं लगे, आपका प्रोडक्ट वही है। विच मीन्स अगर आपका बिलीफ सिस्टम है कि गुस्से से काम होता है, तो आपके फाइनल प्रोडक्ट में दिन में कई बार गुस्सा आने ही वाला है। इट डजेंट मैटर कि सिचुएशन क्या है, लोग क्या कर रहे हैं। अब जिस दिन आपने अपना रॉ मटेरियल बदल दिया, ठीक है, उस दिन लोग जो आसपास हैं वो तो सेम ही रहेंगे, उनकी गलतियां भी सेम ही रहेंगी, दुनिया में जो हो रहा है वो भी सेम ही रहेगा, लेकिन आपका प्रोडक्ट चेंज हो गया। सो योर प्रोडक्ट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द पीपल, योर प्रोडक्ट इज डिपेंडेंट ऑन योर बिलीफ सिस्टम। And that's why we cannot afford to have a belief system, विच इज नॉट हेल्दी फॉर अस।
1: तो ये लोगों को मालूम कैसे पड़े कि मेरा ये बिलीफ सिस्टम हेल्दी है नहीं है? सबको लगता था आई दिस माई बिलीफ।
2: एनीथिंग विच इज नॉट मेकिंग मी फील नाइस एंड मेकिंग अदर्स फील नाइस नीड्स टू बी चेंज्ड, क्योंकि वो अच्छा नहीं है, सही नहीं, उसका रिजल्ट सही नहीं आ रहा। अब आपने कहा कैसे पता चले कि ये फैक्ट्री का प्रोडक्ट ठीक है या नहीं ठीक है? अगर वो फैक्ट्री का प्रोडक्ट लोगों को कंफर्ट और हेल्थ दे रहा है तो वो प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन अगर वो फैक्ट्री का प्रोडक्ट लोगों की सेहत को खराब कर रहा है तो फिर तो मालिक को सोचना चाहिए ना कि इज इट राइट कि मैं ये बिजनेस करता हूँ।
1: कई लोगों को मैं बोलते सुनता हूँ कि अच्छाई का जमाना नहीं है, मैं अच्छा रहता हूँ, मेरा बिलीफ सिस्टम है अच्छा रहने के लिए, और उसका हमेशा नतीजा ही रॉन्ग निकलता है।
2: तो फिर वो अपने अच्छे बिलीफ सिस्टम को भी कई बार क्या कर देते हैं, चेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आसपास की फैक्ट्रीज में सेम प्रोडक्ट निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा।
1: तो इसका मतलब ये है कि आप अपने बिलीफ सिस्टम में टेके रहिए, दूसरे के उसमें नहीं जा सकते।
2: सपोज आप दवा बना रहे हैं आपकी फैक्ट्री में जो सबको सेहत देती है, आप टॉनिक बना रहे हैं जो सबको सेहत देती है, मैं सपोज सिगरेट अल्कोहल बना रही हूँ जो सबकी सेहत खराब करती है, वो मेरी फैक्ट्री का प्रोडक्ट है। तो अब आप अपने को मेरी फैक्ट्री का प्रोडक्ट देख के अपने प्रोडक्ट को चेंज कर लेंगे।
1: ब्यूटीफुल, वेरी नाइस।
2: नहीं, आई एम मेकिंग थिंग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ, यू कंटिन्यू मेकिंग थिंग्स विच आर गुड फॉर हेल्थ ना। नाउ यू माइट
1: ने ऐसा क्यों किया,
2: बिकॉज उनकी फैक्ट्री में वो ही बनता है ना। हर एक सिर्फ अपनी फैक्ट्री का ही ध्यान रख सकता है ना। अब अगर आपके आसपास सिर्फ मैं नहीं लेकिन सारे आपके आसपास गलत चीज बना रहे हैं, तो भी तो हमें अपनी अच्छी वाली चीज को पकड़ के रखना चाहिए। आज क्यों समाज ऐसे होता गया, हर एक ने दूसरे का प्रोडक्ट देखा और कहा इनका ये, इनका ये, इनका ये, फिर मैं क्यों ये बनाऊं, मैं भी यही बनाना शुरू कर देता हूं। एंड दैट्स व्हाई वी अडॉप्टेड ईच अदर्स बिलीफ सिस्टम्स विच वर नॉट हेल्दी फॉर अस। फिर हमारे बिलीफ सिस्टम हमारे आगे फैमिली को गए, बच्चों को गए। जिनके घर में पेरेंट्स सपोज बहुत गुस्सा करते हैं तो उनके बच्चे भी वही सीखेंगे। वो बच्चा अगर सॉफ्ट भी होगा, पीसफुल भी होगा, तो पेरेंट को ही अच्छा नहीं लगेगा। वो उसको सिखाएगा ऐसे नहीं होता, दिस इज नॉट द वे द वर्ल्ड वर्क्स, दिस इज नाउ नॉट हाउ यू कैन बी। तो एक का बिलीफ सिस्टम कितनों तक पहुंचेगा?
1: इसीलिए कहते हैं ना कि आपकी परंपरा से, पेरेंट से, ग्रैंडफादर से एक चीज जो चलते आ रही, कि कब आप उसको कट करो।
2: चेक एंड कैंसिल एनीथिंग विच इज नॉट हेल्दी फॉर अस। हेल्दी फॉर अस मीन्स द वे वी फील, द वे द बॉडी फील्स, द वे आर रिलेशनशिप्स फील। फीलिंग है हर चीज के अंदर। अगर वहां अच्छा नहीं फील हो रहा, यहाँ अच्छा नहीं फील हो रहा, यहाँ अच्छा नहीं फील हो रहा, और रिश्तों में अच्छा नहीं फील हो रहा, सम बिलीफ सिस्टम नीड्स टू बी चेंज। जैसे आपने उस दिन कहा लाइफ इज अ कॉम्पिटिशन, इट्स अ बिलीफ सिस्टम। अब ये एक बिलीफ सिस्टम ने आज हम में से मेजोरिटी की डेस्टिनी बदल दिया है, क्योंकि हमारा जीवन जीने का तरीका बदल गया एक लाइन से, लाइफ इज अ कॉम्पिटिशन। फिर हम आगे अपने बच्चों को भी सिखाते हैं लाइफ इज अ कॉम्पिटिशन, तुम्हें फर्स्ट ही आना है, तुम फर्स्ट आए तभी तुम सक्सेसफुल हो, तुम फर्स्ट आए तभी तुम अच्छे हो, तुम फर्स्ट आए, लाइफ इज अ कॉम्पिटिशन।
1: आई मेट अ मैन, उसका बिलीफ सिस्टम था कि दुनिया झूठ बोलती है। तो वो मैं कुछ भी बात करूं तो वो 10% राइट लेता था 90। आई वॉज फीलिंग सो अनकम्फर्टेबल, आई सेड एम आई हियर टू प्रूव हिम समथिंग? नहीं नहीं, ऐसे कैसे, नहीं, आई वाज सो टायर्ड ऑफ इट।
2: तो क्योंकि ये उनका बिलीफ सिस्टम है, किस आधार से बना, कुड बी सम पास्ट एक्सपीरियंस,
1: बड़ों ने बोला होगा देखो भाई 10% मानो।
2: पास्ट एक्सपीरियंस भी होता है, कई बार पास्ट एक्सपीरियंस भी होता है। अब वो बिलीफ सिस्टम उस व्यक्ति की डेस्टिनी पे आज असर डाल रहा है। क्यों? एक, वो व्यक्ति सारा दिन डाउट में जिएगा, कोई भी उससे बात करेगा, कुछ भी कहेगा, उसको डाउट ही रहेगा हमेशा, ये सच बोल रहा है, ये बात पूरी राइट है, इसने मुझे पूरा बताया। ये एक एक थॉट यहां भी दर्द क्रिएट करेगी क्योंकि डाउट है, वो एक एक डाउट की थॉट शरीर पे भी असर देगी। अब जैसे आपने कहा मुझे उससे बात करके कंफर्टेबल नहीं लगा,
1: अनकंफर्टेबल
2: लगा, तो उसका ये बिलीफ सिस्टम उसके रिश्तों पर भी असर डालने वाला है। आप तो फिर भी पहचान के थे वाइफ के साथ क्या होता होगा, बच्चों के साथ क्या होता होगा, तो रिश्तों पे असर डालेगा। तो एक बिलीफ सिस्टम, दैट्स व्हाई एवरी बिलीफ सिस्टम नीड्स टू बी चेक्ड। एवरी बिलीफ सिस्टम इज अफेक्टिंग आवर डेस्टिनी।
1: अजीब अजीब बिलीफ सिस्टम्स है, आपसे बात करते करते याद आ रहा है, किसी का बिलीफ सिस्टम है कि लेट आने से रिस्पेक्ट होता है।
2: सी,
1: आप पार्टी में जल्दी क्यों पहुंच रहे हो, यू शुड बी लिटिल लेट, सबसे पहले पहुंच जाओगे। आई मीन एनी वेयर, इवन इन शूटिंग, इन हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कई लोगों का बिलीफ सिस्टम था, आई एम अ स्टार, आई शुड बी लेट।
2: एक एक बिलीफ सिस्टम
1: नेवर एंडिंग है।
2: Yeah, but that's the journey of life.
1: Yeah, but that makes life so complicated to have so many belief systems. Why can't we live simple?
2: That is why we find our life complicated today.
1: तो उसको ठीक कैसे करें?
2: Most important, जो सबसे important belief system है, जिसके आधार से बहुत सारे belief system create होते हैं।
1: Who am I?
2: Yes. क्योंकि वो मेन है ना, उसके आधार के हिसाब से बहुत सारे और बिलीफ सिस्टम क्रिएट होंगे। जैसे आपने उस दिन शेयर किया, आई एम एन एक्टर, ठीक है, मींस आई एम अ फिल्म स्टार। तो अब वो एक बिलीफ सिस्टम और कितने सारे, उसी से ये बिलीफ सिस्टम भी क्रिएट होगा कि कहीं भी पहुंचना है, अगर हम स्टार हैं तो थोड़ा लेट पहुंचना चाहिए। अगर हमें कोई इन्वाइट कर रहा है, हम एकदम से कह देंगे हाँ हम फ्री हैं, हम आ जाते हैं, तो वैल्यू नहीं है।
1: डायरी देख के बोलता हूँ,
2: डायरी देख के बोलता
1: हूँ, पूछ के बताता हूँ।
2: ये एक एक बिलीफ सिस्टम, उस एक बिलीफ सिस्टम से आया।
1: मुझे ये सिखाया जाता था कि फोन आप क्यों उठाते हो, लोग क्या समझेंगे, कार फोन उठा दे, आप एक्टर हो। मैंने बोला कमाल है यार।
2: सो द बिलीफ सिस्टम अबाउट हु एम आई, वो हमारे भाग्य तक असर डालेगी, और अगर उसमें हमने राइट आंसर डाल दिया तो बहुत सारे ये जो कॉम्प्लिकेशंस आप कह रहे हैं, ये पूरा जो प्रोसेस प्लांट है हमारा, वो बहुत सिंपल, स्ट्रीमलाइंड, इजी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हैप्पी एंड हेल्दी बन जाएगा। इस जीवन की यात्रा में इतना कुछ हमने अक्वायर किया है, एंड आप देखें ज्यादातर हम आज देखते हैं कि जितना हम अक्वायर करते जाते हैं, उसके साथ हम कहते हैं इनकी अहंकार बहुत बढ़ता जा रहा है।
1: अक्वायर व्हाट?
2: See what all you have acquired in your life? क्या acquire किया है इस जीवन के अंदर?
1: मैंने तो innocence खो दिया।
2: See now this line, मैंने innocence खो दिया। तो खो क्यों दिया? उसकी जगह क्या replace किया? क्या acquire किया जिसकी वजह से innocence खो दिया?
1: नाम किया, पैसा किया, relationships किए और बस
2: पोजिशन अक्वायर किया, प्रॉपर्टी अक्वायर किया। हम बहुत कुछ अक्वायर करते हैं इस जीवन की यात्रा में, लंबी लिस्ट,
1: ढंग किया, मैनिपुलेशन अक्वायर किया।
2: अब ये सारा कुछ जब हमने अक्वायर किया, ये हम यहाँ हैं, एक बच्चे को देखते हैं, छोटा बच्चा पैदा हुआ आपके घर में, एक दो महीने का है, उसने अभी कुछ बहुत ज्यादा अक्वायर नहीं किया है, वो तो अभी अपनी फैमिली को भी बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता है। ही हैज टू येट स्टार्ट डेवलपिंग दैट कनेक्शन, दैट बॉन्डिंग। तो अभी उसने कुछ बहुत ज्यादा अक्वायर नहीं किया है। उस बच्चे ने क्या अक्वायर किया इस जीवन की यात्रा में? अब धीरे धीरे पेरेंट्स, धीरे धीरे एक्सटेंडेड फैमिली, फिर वो स्कूल जाएगा, फ्रेंड्स, फिर वो धीरे धीरे पढ़ता जाएगा, टीचर्स, सोशल सर्कल, फिर डिग्री अक्वायर की। जैसे हमें डिग्री मिलती है, हमारा परिचय बदल जाता है, हु एम आई आंसर बदल जाएगा। उससे पहले हु वाज आई, आई वाज समबडीज चाइल्ड। उसके बाद हु एम आई, आई बिकम अ डिग्री। उसके बाद हमें एक डेजिग्नेशन मिलता है, तो अब उसके बाद कोई पूछे परिचय, तो हु एम आई, वो मेरी डेजिग्नेशन, मेरा परिचय बन जाती है। अब वो डेजिग्नेशन भी हर एक दो साल, तीन साल के बाद चेंज होती रहती है, हमारा परिचय चेंज होता रहता है। उस प्रोसेस में हमें और लोग मिलते जाते हैं, रिश्ते मिलते हैं। नाउ आई एम समवंस हस्बैंड, समवंस वाइफ, देन आई एम समवंस फादर, समवंस मदर, देन आई एम समवंस ग्रैंडफादर। ये बढ़ता जाता है, लंबी लिस्ट है, वी कीप अक्वायरिंग। लेकिन सब कुछ जो अक्वायर किया, इट वॉज ब्यूटिफुल, लेकिन जो जो अक्वायर किया उसको अपनी आइडेंटिटी बना लिया।
1: कई लोगों को कहते हुए ये सुना, एयरपोर्ट्स पे, ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में, कई जगह, आप जानते हो मैं कौन हूँ?
2: तो जैसे ही उन्होंने कहा आप जानते हो मैं कौन हूँ, विच मीन्स योर बिहेवियर शुड बी अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट आई हैव अक्वायर्ड। मैं कौन हूँ, मैं इस पोजीशन पे हूँ, तो ये सारी चीजें जो हमने अक्वायर की, हमने इन चीजों को अपनी आइडेंटिटी बना लिया है। जैसे आपने पिछली बार कहा हू एम आई, अ फिल्म स्टार, तो फिल्म स्टार तो मेरा प्रोफेशन है, लेकिन हमने अपने प्रोफेशन को क्या बना लिया, आई एम सो एंड सो।
1: दुनिया भी तो यही कहती है, एक्टर जा रहा है।
2: हाँ, दुनिया भी तो यही कहती है, यस।
1: हाँ,
2: तो दुनिया भी तो अक्वायर्ड लेबल्स को ही तो अपनी आइडेंटिटी बना के चल रही है ना।
1: हाँ, तो ये नेचुरल नॉर्मल हो गया है ना।
2: नेचुरल नॉर्मल तो बहुत कुछ हो गया है जो सच्चे नहीं है, वो नेचुरल नॉर्मल हो गया, तभी तो डेस्टिनी कॉम्प्लिकेटेड है। ये सारी चीजें फिर हम कहते ईगो। ईगो की एक बहुत सिंपल डेफिनेशन है, अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ।
1: ब्यूटीफुल।
2: आई कौन, वो मुझे याद नहीं, कोई और इमेज जो मेरी अपने बारे में बनी, उसके साथ मैं अटैच हो गई और उसको ही मैं समझ लिया, वो ईगो है। क्योंकि जब भी उस इमेज को फिर कोई टच करेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई उस पर कोई अपना ओपिनियन देगा जो मुझे पसंद नहीं आता, वी विल से उनकी ईगो हर्ट हो गई। क्योंकि वो इमेज जिससे हम अटैच हो गए थे, किसी ने आकर उसको प्रिक किया।
1: इमेज को,
2: इमेज को, मुझे नहीं, इमेज को। आज इस डेफिनेशन को लेते हैं और पूरा दिन इस डेफिनेशन के साथ वर्क करते हैं, अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ। कितनी इमेजेस हमने अपने बारे में बनाई हुई हैं। मैं कौन, आई एम समबडीज हस्बैंड, सो वाइफ कैसी होनी चाहिए। आई एम समवन्स फादर, तो बच्चे कैसे होने चाहिए। सामने वाला कौन, ये बेटा, तो बेटा कैसा होना चाहिए। अगर बेटा वैसा नहीं है, मैं फादर हूं, मेरे से ऐसे बात की, बिकॉज आई एम अटैच टू एन इमेज ऑफ बींग अ फादर। देर इज सो मच डिफरेंस, वी आर नॉट कनेक्टिंग पर्सन टू पर्सन, वी आर कनेक्टिंग इमेज टू इमेज। जब हम बात करते हैं, हम किससे बात कर रहे हैं, हम इमेज दूसरी इमेज से बात कर रहे हैं, सो वी वॉन्ट दैट इमेज टू बी अकॉर्डिंग टू माई इमेज। और जैसे ही वो ऐसा नहीं करेंगे, हम कहेंगे इतना भी नहीं पता कि फादर से कैसे बात करनी चाहिए।
1: बट ये तो नेचुरल है, अगर यहाँ का प्राइम मिनिस्टर जाके दूसरे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर से मिलेगा, तो वो वैसे ही मिलेगा जैसे एक प्राइम मिनिस्टर टू अनदर प्राइम मिनिस्टर, नॉट टू हिज प्यून।
2: रिगार्ड, रिगार्ड एंड प्रोटोकॉल फॉर द रोल। ठीक है, चलो सपोज आप प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस जाते हैं आज। आप जाते हैं, ठीक है, सो यू हैव एन अपॉइंटमेंट, आज 10 बजे आपको उनसे मिलना है, राइट? आप अपने घर से निकलते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं, द फर्स्ट पर्सन दैट यू मीट इज योर ड्राइवर। ठीक है, आप उससे कैसे बात करते हैं, चेक करना, जस्ट एक सीन क्रिएट करते हैं, विजुअलाइज करते जाइए। ठीक है, फिर वो रास्ते में गाड़ी चला रहा है, कहीं उससे कुछ गलती भी हो गई, आप उससे कैसे बात कर रहे हैं। आधे घंटे की ड्राइव के बाद आप प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में पहुंचते हैं। ठीक है, जैसे ही आप उस बिल्डिंग में एंटर कर रहे हैं, उस बिल्डिंग पर एक सिक्योरिटी गार्ड एंट्रेंस पर गेट पे खड़ा है, वॉचमैन है। वो बहुत प्यार से देखकर स्माइल करके आपको सैल्यूट भी करता है, आप उससे कैसे बात करते हैं। फिर हम आगे जाते हैं, कोई एक रिसेप्शन है या कोई एक ऑफिसर है जो मिलेगा एंट्रेंस पे, हम उससे कैसे बात करते हैं। फिर हम प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी से बाहर बात करते हैं, और फिर हम फाइनली द प्राइम मिनिस्टर से बात करते हैं। ये सारा कुछ आधे घंटे में हो जाता है, ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, मैनेजर लेवल, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी एंड द प्राइम मिनिस्टर। इन हाफ एन आवर वी मेट 5 पीपल।
1: जी,
2: क्या हमारा बात करने का तरीका, हमारी रिस्पेक्ट, हमारा व्यवहार 5 लोगों से सेम होगा?
1: नहीं,
2: नहीं होगा सेम। क्या होगा हमारे व्यवहार में परिवर्तन?
1: डिफरेंस रहेगा।
2: व्हाट इज द डिफरेंस? सपोज जस्ट लुक एट द टू एंड्स, ड्राइवर से स्टार्टिंग में एंड प्राइम मिनिस्टर इन द एंड।
1: ड्राइवर से तो आप कमांडिंग पोजीशन में बात करेंगे, मुझे यहाँ ले चलो, गलती करेगा तो थोड़ा ठीक भी करेंगे उसको, क्यों भाई क्या हो गया, ठीक से चलाओ, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में जाना, लेट नहीं जाना। फिर उसके सिक्योरिटी गार्ड में तो डिपेंड्स इन व्हाट मूड यू आर, पता नहीं क्यों इतने

0: मालिक, ठीक है। तो मालिक ड्राइवर से बात कर रहा था, जब सिक्योरिटी गार्ड मिला तब भी ऑलमोस्ट सेम बात ही हो गई कि वो बहुत जूनियर रोल है, मेरा रोल थोड़ा सीनियर है। लेकिन जब तक हम प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में पहुंचे तब हम एक जूनियर रोल एक सीनियर रोल से बात कर रहे थे। पांचों से मिलने के समय रोल रोल से बात कर रहा था,
1: सही बात,
0: इमेज इमेज से बात कर रही थी। तो कहीं हम ऐसे थे, कहीं हम ऐसे थे। स्पिरिचुअलिटी क्या सिखाती है कि रोल रोल से नहीं, इंसान इंसान से बात करे, व्यक्ति व्यक्ति से बात करे। अगर व्यक्ति व्यक्ति से बात करे, अब सिर्फ चेक करें कि उस आधे घंटे में हम पांच लोगों से कैसे बात करेंगे। चेक करना है, विल देयर बी एनी डिफरेंस एट ऑल, कि रोल रोल से बात कर रहा था तो व्यवहार कैसा था, एंड जस्ट द ह्यूमन बीइंग टॉकिंग टू अनदर ह्यूमन बीइंग, विल देयर बी इन एनी डिफरेंस इन द वे वी टॉक एंड बिहेव। वी नीड टू चेक दैट टुडे।
1: लेट मी ट्राई।
0: श्योर।
1: ओम शांति।
0: थैंक यू। ओम शांति।
1: थैंक यू। ओम शांति।
2: When the mind is hurt and is questioning others' behaviors, we cannot forcefully suppress the thoughts or silence the mind. The mind needs answers. Give the mind the answer that it is the other person's sanskar and our past karmic account. The mind will slowly accept and become silent. Belief system, information, and past experience are the raw materials which create our thoughts, and the final product is our personality. Since two people have different raw material, their sanskars or personality will be different. This understanding helps us to accept people. We feel people are behaving with us in a particular way. We feel it is something about us which make them behave that way. People are only radiating their final product to us. When we change our belief systems, our behavior changes, even though others remain the same. We acquire position, relations, property and skills in this lifetime, and we sometimes make them our identity and get attached to the identity we create. Ego is attachment to a wrong image of myself.
0: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099-99-559-660.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरस्व, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: लेके अंगड़ाई सरे बजन बहुत पछताई, मुफ्त में हो गई बदनाम बढ़ी रुसवाई, आया गुस्सा कभी अपने पे कभी शर्म आई, उठी घबरा के मगर ऐसी कमर बल खाई।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माय कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

भारत एक ऐसा देश है जहां अनेकता में एकता का नारा सदा गूंजता रहा है। इतने राज्य, भाषाएं, बोलियां, संस्कृतियां मिलकर भारत को अतुल्य भारत बनाती है। तो आइए इस अतुल्य भारत के एक ऐसे प्रदेश में आपको ले चलते हैं जो आपको अपने एक अलग अनोखे रंग में रंगा नजर आएगा। चलिए चलते हैं बिहार।

बिहार भारत के प्रमुख राज्यों में से एक है। इसके उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण में झारखंड राज्य है। यहाँ अनेक नदियां बहती हैं, जिनमें गंगा प्रमुख है। अन्य नदियां हैं सोन, पुपुन, फागु, दुर्गावती, कोसी, गंडक आदि आदि। बिहार गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के मैदान में बसा है। झारखंड राज्य बिहार से अलग होकर बना है, जिसके बाद बिहार की भूमि मुख्यतः नदियों के मैदान और समतल भूभाग है। बिहार गंगा के पूर्वी मैदान में है और गंगा नदी इसी प्रदेश के लगभग बीचों बीच से होकर बहती है। उत्तरी बिहार बागमती, कोसी, गंडक, सोन और उनकी सहायक नदियों का समतल मैदान है। बिहार के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी है और दक्षिण में छोटा नागपुर पठार है, जिसका हिस्सा अब झारखंड है। उत्तर से कई नदियां बिहार से होकर बहती हैं और गंगा में मिल जाती हैं।

अब कुछ ऐसे निशानों को खोजते हैं जो किताबों में कहीं दबे रह जाते हैं। तो आइए आपको सुनाते हैं बिहार का इतिहास। बिहार का उल्लेख वेदों, पुराणों और प्राचीन महाकाव्यों में मिलता है। यह राज्य महात्मा बुद्ध और कई जैन तीर्थंकरों की कर्मभूमि रहा है। ईसा पूर्व काल में इस क्षेत्र पर बिंबिसार पाटलिपुत्र की स्थापना करने वाले उदयन चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक सहित मौर्य, शुंग तथा कण्व राजवंश के नरेशों ने राज किया। इसके बाद कुषाण शासकों का समय आया और बाद में गुप्त वंश के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बिहार पर राज्य किया। मध्य काल में मुस्लिम शासकों का इस क्षेत्र पर अधिकार रहा। बिहार पर सबसे पहले विजय पाने वाला मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था और खिलजी वंश के बाद यहाँ तुगलक वंश तथा मुगल वंश का अधिपत्य रहा। बिहार ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी एक अहम भूमिका निभाई। मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह बिहार के ही चंपारण क्षेत्र से किया था, जो कि यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ था। इसके अतिरिक्त राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आजादी के बाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने, उनका जन्म भी इसी धरनी के सारण जिले में हुआ था।

भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद सन 1950 में बिहार को एक राज्य घोषित कर दिया। इसके बाद जब 1956 में सभी प्रदेशों का निर्माण भाषा के आधार से हुआ, तब बिहार के कुछ क्षेत्र वेस्ट बंगाल में शामिल हो गए। सन 2000 में बिहार को विभाजित कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। अब बढ़ते हैं बिहार के भूगोल की तरफ। प्राकृतिक रूप से यह राज्य गंगा नदी द्वारा दो भागों में विभाजित है, उत्तर बिहार मैदान और दक्षिण बिहार मैदान। सुदूर पश्चिम उत्तर में हिमालय की तराई को छोड़कर गंगा का उत्तरी मैदान समुद्र तल से 75 मीटर से भी कम की ऊंचाई पर जालोड़ समतली क्षेत्र का निर्माण करता है और यहाँ बाढ़ आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा और अन्य नदियाँ नेपाल में हिमालय से नीचे उतरती हैं और अलग अलग जलमार्गों से होती हुई गंगा में मिलती है। दक्षिण पश्चिम में सोन घाटी के पार स्थित कैमूर पठार में क्षितिज बालूकाश्म की परत चूना पत्थर की परतों से ढकी है। उत्तर के मुकाबले दक्षिण गंगे मैदान ज्यादा विविध है और अनेक पहाड़ियों का उत्थान कच्छारी सतह से होता है। यहाँ सोन नदी को छोड़कर सभी नदियाँ छोटी हैं। अब जानते हैं कुछ कृषि के बारे में, क्योंकि बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। राज्य में लगभग 80% लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। बिहार की प्रमुख खाद्य फसलें धान, गेहूं, मक्का और दालें हैं। वह मुख्य नकदी फसलें गन्ना, आलू, तंबाकू, तिलहन, प्याज, मिर्च, पटसन आदि हैं। बिहार में भी भारत के अन्य प्रदेशों की कृषि की भूमिका एक नींव के रूप में है। अब बात करते हैं उस विशेष हिस्से की जो किसी भी प्रदेश के भविष्य का आधार है, यानी कि शिक्षा जगत। बिहार में कई उच्च शिक्षण संस्थान हैं, उनमें से मुख्य है पटना स्थित प्राचीन व महत्वपूर्ण पटना विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर में BRA बिहार विश्वविद्यालय और भागलपुर स्थित तिलका मांझी भालपुर विश्वविद्यालय। यहाँ द पटना स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है, जहाँ विशिष्ट विषयों की शिक्षा दी जाती है। प्राचीन काल में बिहार शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वर्जासन विश्वविद्यालय एवं औदन्तपुरी विश्वविद्यालय यहाँ है। बिहार में आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा हुआ। शिक्षा का माध्यम संस्कृत फारसी के साथ अंग्रेजी था, लेकिन उस समय अंग्रेजी भाषा की प्रमुखता ज्यादा थी। अगर नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना गुप्तकालीन सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने 415 से 454 ईसा पूर्व में की थी। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए जावा, चीन, तिब्बत, श्रीलंका व कोरिया आदि के छात्र आते थे। जब ह्वेनसांग भारत आया था, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में 8500 छात्र एवं 1510 अध्यापक थे। इसके प्रख्यात अध्यापकों में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमति, ज्ञानचंद्र, नागार्जुन, वसुबंधु, असंग, धर्मकीर्ति आदि थे। इस विश्वविद्यालय में पाली भाषा में शिक्षण कार्य होता था। 12वीं शती में बख्तियार खिलजी के आक्रमण से यह विश्वविद्यालय नष्ट हो गया था। बिहार का एक और प्राचीन विश्वविद्यालय था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसे पालव वंशीय शासक ने 770 से 810 ईस्वी में बनवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की वज्रायन शाखा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ न्याय, तत्व ज्ञान एवं व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ के विद्वानों में रक्षित, विरोचन, ज्ञानभद्र, बुद्ध, जैत्रित, रत्नाकर, शांति ज्ञान, श्रीमित्र, अभ्यंकर थे। बिहार का प्राचीन काल शिक्षा के लिए विख्यात है। ये तो हुई शिक्षा की बात, अब आइए बिहार की संस्कृति से करते हैं कुछ जान पहचान। बिहार का सांस्कृतिक क्षेत्र भाषाई क्षेत्र के साथ करीबी संबंध दर्शाता है। यह मैथिली भाषा है, प्राचीन मिथिला की, जिसमें ब्राह्मणवादी जीवन व्यवस्था की प्रधानता है। मैथिली बिहार की एकमात्र बोली है, जिसकी अपनी लिपि यानी तिरहुत है और समृद्ध साहित्य इतिहास है। मैथिली के प्राचीनतम और सर्वाधिक प्रसिद्ध रचनाकारों में विद्यापति अपने श्रृंगारिक व भक्ति गीतों के लिए विख्यात है। यहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है, परंतु इस बोली में शायद ही कोई लिखित साहित्य है, लेकिन इसका मौखिक लोक साहित्य प्रचुर है। आधुनिक हिंदी
व उर्दू साहित्य में बिहार के मैदानी क्षेत्रों के रचनाकारों का भी उल्लेखनीय योगदान है। बिहार की आदिवासी संस्कृति भी अति रोचक है। अधिकतर आदिवासी गांवों में इष्ट देव की पूजा के लिए एक पवित्र उपवन शयनागार होता है। आदिवासी त्योहारों में सरहुल, वसंतोत्सव और शीतोत्सव उमंग व उल्लास के पर्व होते हैं। यहाँ ही पावापुरी है, जहाँ जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर को महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बिहार स्थित गया एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है और इसके निकट बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल बोध गया भी है, जहाँ बुद्ध को बोधि तत्व की प्राप्ति हुई थी। पटना के उत्तर में सोनपुर के समीप हरिहर क्षेत्र में प्रत्येक नवंबर में भारत के प्राचीनतम व विशाल पशु मेलों में से एक का आयोजन होता है। अब बिहार के अनेक हिंदू त्योहारों में होली और छठ है, जिनमें मुख्यतः स्त्रियों द्वारा सूर्य की आराधना की जाती है। ये यहाँ का अत्यधिक महत्वपूर्ण पर्व है।

पर्यटन की बात की जाए तो किसी भी प्रदेश का परिचय अधूरा है, तो आइए घूमते हैं बिहार, जो कि पर्यटन स्थलों, ऐतिहासिक धरोहरों, धर्म, आध्यात्म और संस्कृति का केंद्र रहा है। यहाँ की परंपराएं, संस्कृति, रीति रिवाज और जीवन पद्धति, मेले, पर्व, त्योहार हमेशा से पर्यटकों को आकर्षित करते रहे हैं। राज्य के प्रमुख पर्यटन केंद्र हैं राजगीर, नालंदा, वैशाली, पावापुरी, जहाँ भगवान महावीर ने अंतिम सांस ली और निर्वाण को प्राप्त हुए। और भी कई स्थल यहाँ देखने योग्य हैं, जैसे कि बोधगया, विक्रमशिला, उच्च शिक्षा के बौद्ध विश्वविद्यालय के अवशेष, पटना, पाटलिपुत्र का प्राचीन नगर, सासाराम, शेर शाह सूरी का मकबरा और मधुबनी। यहाँ के और भी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं मुंडेश्वरी मंदिर, कैमूर, रोहता, सगड़ किला, रोहतास जैन तीर्थ स्थल, कुंडलपुर, नालंदा, बिहार योग केंद्र, मुंगेर, मनेर शरीफ, पटना आदि, जहाँ आप जा सकते हैं और खूब आनंद के साथ अपना समय व्यतीत कर सकते हैं तथा इतिहास को और करीब से जान सकते हैं।

आशा करते हैं कि ये विशेष कड़ी आपको भारत के इस विशेष राज्य के समीप ले गई होगी। इस सफर को अब हमें यहीं खत्म करना होगा। आगे जानिए और बहुत कुछ 29 राज्य एक राष्ट्र एक कहानी में। जय।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी हैं और स्टेबल भी हैं, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब। यू नो, तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जो पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड हैं कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अहो ऐकलत का, हो आमचा रेडिओ पुणेरी, हो आमचा रेडिओ पुणेरी।
1: इतिहास से, भूगोल से,
2: समाज से, संस्कार से,
1: आधुनिकता से और विचार से,
2: खूबियों से भरा अनोखा है मेरा भारत।
1: एक महान राष्ट्र है मेरा भारत,
3: अतुल्य भारत।
2: चलिए आपको बताते हैं
1: भारत की 69 ऐसी विशेषताओं के बारे में
2: जो बनाती हैं भारत को पूरी दुनिया से अलग
1: और प्रदान करती हैं हमें एक गर्वित भारतीय नागरिक होने का हक।
4: क्या आपको पता है कि भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, यमुना, सतलुज, महानदी, रेवा, कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती जैसी अनेक महान नदियां हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो गंगा नदी सबसे पावन और पूजनीय मानी जाती है। लोगों की आस्था है कि गंगा स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए हजारों श्रद्धालु गंगा में स्नान करने भिन्न भिन्न अवसर पर यहाँ आते रहते हैं। गंगा की ये भी विशेषता है कि इसका रखा हुआ पानी भी खराब नहीं होता है। कई लोग गंगा जल अपने घरों में सालों तक रखते हैं।
1: भारत की विशेषताओं को करते रहिए सलाम।
2: पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो। जय हिंद,
1: जय भारत।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफस्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माय लाइफस्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना एमपी छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्न भी होंगे। तो आज का हमारा विषय है मांसाहार रोगों और पापों को निमंत्रण देता है। मांसाहार आहार होना लोग सोचते हैं बहुत अच्छा है। आज के युग में लोगों के खान पान की जो महत्ता है या जो उनकी चाव है वो ज्यादा मांसाहार की ओर अग्रसर हो रही है, तो इसे हमें ध्यान में रखते हुए ये देखना है कि हमारे शरीर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमात्मा पिता कर्मों की कोई गति बताते हुए कहते हैं कि हमारा जो आत्मा के साथ जो संबंध है, आत्मा प्रकृति के बने शरीर के संबंध में आने से जो अच्छे बुरे कर्म करती है उसका फल आत्मा को क्रमशः सौभाग्य या दुर्भाग्य के रूप में प्राप्त होता ही है। आत्मा करती है तो भुगतती भी आत्मा ही है, फिर चाहे इस जन्म के शरीर में या अगले जन्म के शरीर में, क्योंकि आत्मा अपने साथ अपने कर्मों का हिसाब किताब लेकर ही जाती है। सूक्ष्माति सूक्ष्म होने के कारण आत्मा नजर नहीं आती, देह नजर आती है, तो हमें यह भ्रम हो जाता है कि देह कर रही है। देह त्याग कर दिया तो अच्छे बुरे कर्मों का फल भी यहाँ का यहाँ ही रह गया और आत्मा क्लीन स्लेट हो गई, परंतु नहीं, आत्मा निर्लिप नहीं है। इसे हमें यहाँ पर देखना है। वास्तविकता यह है कि आत्मा जब पहली बार इस धरा पर माता के गर्भ से जन्म लेती है तब वो क्लीन स्लेट आती है। जन्म मरण के चक्र में आते हाँ कर्म करते आत्मा पर हिसाब किताब बहुत ज्यादा हाँ हिसाब किताब का लेप जो है लेप छेप लगता जाता है, फिर आत्मा निर्लेप नहीं रह पाती। आत्मा अपने सत्य स्वरूप अपने आदि अनादि स्वरूप को भी भूल जाती है। इस अज्ञान अंधकार में गोते खाते खुद को तो यथार्थ रूप में आत्मा समझती नहीं, अपितु पेड़ पौधों में चैतन्य आत्मा है यह कहकर भ्रमित होती रहती है। मांसाहार को पाप न मानने के और प्रकृति प्रदत्त पदार्थों के सेवन को पाप मानने के तर्क वितर्क में उलझी रहती है। पेड़ पौधे प्रकृति के अंश है हमारे लिए, प्रकृति द्वारा प्रेम से बनाया हुआ भोजन आत्मा अर्थात पुरुष और प्रकृति का यह खेल बना हुआ है। प्रकृति के देश में आत्मा अपना निज धाम परम धाम छोड़कर मेहमान बनकर आती है। मेहमान नवाजी में प्रकृति ने मनुष्य की आत्मा के लिए विशिष्ट प्रकार के वस्त्र यानी कि देह और उस वस्त्र के लिए लाभदायक भोजन प्रदान किया है, शाकाहारी भोजन। ऐसे ही प्रकृति ने अन्य प्राणियों को भी उनके अनुरूप विशिष्ट वस्त्र पशु पक्षी आदि को भी और भोजन शाकाहार व मांसाहार प्रदान किया है। अगर हम देखें तो मनुष्य शरीर शाकाहार के लिए बना है। कहा जाता है जहां जाए वहां के जो नीति नियमों के अनुरूप चलेंगे तो लोग खुश रहेंगे, नहीं तो परिस्थिति से ग्रस्त रहेंगे। लोग का खुश रहना नहीं, हमें खुद को देखना है कि जहाँ के रीति रिवाज के अनुसार अगर हम चलते हैं तो हम खुद में भी खुश रहेंगे। तो हमें देखना है कि आज परिस्थिति से हम ग्रस्त रहेंगे। जैसे भारत का कोई व्यक्ति जर्मनी चला जाए तो वहां सड़क पर राइट की जगह लेफ्ट साइड कार चलाए तो नियम तोड़ने की सजा भुगतनी पड़ेगी। ऐसे ही जब मनुष्य आत्मा प्रकृति के देश अर्थात इस धरती पर आते हैं तो उसे यहाँ के नियमों का पालन करना ही होगा। शाकाहारी मनुष्य शरीरों के लिए प्रकृति ने फल सब्जियां अनाज आदि प्रदान किए हैं, वे ही कृतज्ञ भाव से स्वीकार करने चाहिए, न कि प्रकृति में मौजूद अन्य पशु पक्षियों को मारकर खाकर पाप का भागी बनना चाहिए। पशु प्राणियों थलचर दल और जलचर नवचर सब में चैतन्य आत्मा है, उनके शरीर को आहत करना पाप का भागी बनना है, जिस वजह से प्रकृति और पशु दोनों सजाए देते हैं। प्रकृति देह की बीमारी और प्राकृतिक आपदाओं के रूप में और पशु आक्रमण के रूप में। पेड़ पौधे भी बीज से निकलते हैं, बढ़ते हैं, फलते हैं, फूलते हैं, परंतु वे जड़ हैं। जिन्हों को प्रकृति ने मनुष्यों के भोजन हेतु औषधोपचार हेतु स्वास्थ्य लाभ हेतु बनाया है, फल सब्जियां तोड़ना काटना खाना कोई पाप नहीं है, क्योंकि इसमें हम किसी चैतन्य आत्मा को देह से अलग नहीं कर रहे हैं, जैसे पशु हत्या में किया जाता है, और न ही यह प्रकृति के विरुद्ध कर्म है, क्योंकि प्रकृति में जो है, हाँ, प्रकृति ने मनुष्य शरीर शाकाहार के लिए ही बनाया है, इस बात को विज्ञान सिद्ध कर चुका है। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।
1: प्रेम की गंगा करुणा की देवी, वात्सल्य की प्रतिमा वो परम सेवी। प्रेम की गंगा करुणा की देवी, वात्सल्य की प्रतिमा वो परम सेवी। शक्ति की दानी सच्चाई का दर्पण, शुभ भावना की धारा संपूर्ण शिव समर्पण, संपूर्ण शिव समर्पण। खिले हुए फूलों की जो महकती कयारी है, खिले हुए फूलों की जो महकती कयारी है, शिव सी जो सुंदर है, ऐसी दादी हमारी है, ऐसी दादी हमारी है।

नमस्कार दोस्तों, तो मैं ज्योत्सना फिर से आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। आज का हमारा विषय है मांसाहार रोगों और पापों को निमंत्रण देता है। जैसा कि हम सभी देखते हैं, जैसी प्राकृतिक आपदाओं द्वारा मनुष्यों को तकलीफ होने पर प्रकृति पर कोई पाप नहीं चढ़ता, क्योंकि प्रकृति जो है वो जड़ है, उसमें आत्मा नहीं है। ऐसे ही प्रकृति द्वारा मिले फल सब्जी आदि खाने से मनुष्य आत्मा पर पाप नहीं चढ़ता, परंतु पशु की देह में विराजमान चैतन्य आत्मा को इसकी देह से यदि हम अपनी कामना पूर्ति के लिए अलग कर देते हैं तो पाप के भागी अवश्य बनते हैं। जैसे पहाड़ से यदि कोई व्यक्ति टकराकर गिर जाए तो पहाड़ पर पाप नहीं चढ़ता, हाँ, क्योंकि पहाड़ जड़ है, परंतु यदि किसी मनुष्य के धकेलने से वह व्यक्ति पहाड़ से गिरा हो तो धकेलने के कारण, हाँ, धकेलने वाले पर पाप लगता है, क्योंकि धकेलने वाला चैतन्य है और उसने एक चैतन्य आत्मा की देह को क्षति पहुंचाई है। किसी की देह छीन लेना, भले ही वो पशु पक्षी हो, महापाप है। फिर भी कुछ लोग यह तर्क देकर मांस खाते हैं कि फल फूल पेड़ पौधे साग सब्जी भाजी आदि में भी चैतन्यता है, लेकिन वास्तव में यह भ्रम है, अज्ञान है। फल फूल में पेड़ पौधे साग सब्जी भाजी आदि में चैतन्य आत्मा नहीं होती, पशु पक्षी मनुष्य इत्यादि का हड्डी मांस जो है रक्त मज्जा से बना शरीर होता है, इसमें चैतन्य आत्मा होती है, जिस वजह से उनके सुख दुख के प्रकंपन प्रकृति में फैलते रहते हैं। यदि किसी प्राणी के शरीर की हत्या करते हैं तो उसे दुख पहुंचता है, हाँ, किसी को कष्ट देना पाप है, किसी की देह ही उस आत्मा से छीन लेना, भले ही वो पशु पक्षी ही क्यों ना हो, यह तो महापाप है। इस दुष्कर्म का दुखदायी फल मनुष्य आत्मा को भुगतना ही पड़ता है। मनुष्यों के लिए जड़ प्रकृति अर्थात शाकाहार ही बनाया गया है, जिसे खाने से किसी जीव अर्थात आत्मा के शरीर की हत्या नहीं होती, इसलिए मनुष्य आत्मा पर पाप का लेप छेप भी नहीं चढ़ता। यहाँ पर हम देखते हैं बढ़ते दुखों का एक कारण है जीव हत्या। मांस खाने के लिए पशु पक्षी के शरीर की हत्या करने से वे आत्माएं दुख क्रोध शोक भय आदि नकारात्मक भावनाओं के प्रकंपन वायुमंडल में फैलाती है, जिससे हिंसा और अशांति बढ़ती है। यह भी आज की दुनिया के बढ़ते दुखों का एक कारण है। फल फूल पेड़ पौधे साग सब्जी भाजी खाने से दुख का वायुमंडल नहीं बनता, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं होती जो दुख दर्द की लहर फैलाए। इसलिए मांसाहार छोड़कर शाकाहार अपनाना चाहिए, जिससे दुख अशांति और हिंसा का वायुमंडल बनाने में हमें सहयोगी न हम बने, हाँ, ताकि हमारे ही खाते में दुख हिंसा और अशांति न लिखी जाए। पति तपावन परमात्मा ने भी हमें शुद्ध सात्विक आहार लेने की श्रेष्ठ मत दी है। शाकाहार ही मनुष्य आत्मा की शारीरिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनिवार्य है। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे अगर मिलती हूँ
और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो मैं ज्योत्सना फिर से आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। आज का हमारा विषय है सहनशीलता ही सफलता का आधार है। एक तरफ हम देखते हैं कि सहनशीलता में ये भी हमें देखना हिसाब किताब का चुप्तू होना। कोई भी व्यक्ति हमें कटु वचन बोलता है, अपमानित करता है, तो समझना चाहिए कि पीछे का कोई हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। यदि हम सहन नहीं करते बल्कि क्रोध में आकर के उल्टा बोल देते हैं तो हिसाब किताब बढ़ जाएगा। इसलिए निंदा आदि को समझना चाहिए कि हम पर फूल बरस रहे हैं, और यह भी समझना चाहिए कि वह माया की जो है माया के वशीभूत है। क्रोध अहंकार आदि के प्रभाव में आकर यदि हम उसकी आलोचना करते तो हमने माया से हार खा ली। हाँ, यहाँ पर हमें देखना है हमारा कर्तव्य तो उस व्यक्ति तथा अपने को माया से मुक्त करना है। याद रहे कि लड़ाई तो माया से है ना, हाँ, ना कि किसी व्यक्ति से। इस प्रकार हम माया पर जीत पाते जाए तो सहनशीलता का गुण अपने आप ही आएगा। शिव बाबा कहते हैं कि मरजीवा अर्थात पुरानी देह व दुनिया से जैसे मर चुके हैं, मरा हुआ कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। मरजीवा बनना मरना नहीं बल्कि माननीय बनना है। एक तरफ हमें ये भी देखना है कि कब तक हम सहन करें। कुछ लोग बार बार तंग करते व सताते रहते हैं। प्रश्न आता है कि कब तक सहन करें। यदि अपने आपने अगर उसे 9 बार सहन किया परंतु 10वीं बार सहन नहीं किया तो बाप दादा कहते हैं कि आपको सहनशीलता का खिताब मिल नहीं सकता। बाबा हमें क्या कहते हैं कि आपको सहनशीलता का खिताब मिल नहीं सकता। अतः हमें क्या करना चाहिए, जब तक हम संगम योग पर सहन करना ही हमारा क्या है कि हम समझे कि हम महान कार्य हमारा संपन्न हो रहा है, सहन करना पड़ता है। यह न समझकर हमें समझना है कि मैं बाप दादा यानी कि हम बाबा की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, बाबा ने मुझे सहन करने में आज्ञाकारी रहने का हमें स्वमान दिया हुआ है, मैं उस स्वमान रूपी तिलक को धारण कर रही हूँ। हाँ, समस्याओं को ड्रामा का नजारा समझ उड़कर पार करना होता है, यह झुकना नहीं उड़ना है। एक तरफ हमें ये भी देखना है पूर्वज आत्मा जो होते हैं वो मानव सृष्टि चक्र के आदि अर्थात सतयुग के शुरू में ही हम आत्माएं धरा पर देवी देवता के रूप में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं कि इस कारण तुम अन्य सभी मनुष्य आत्माओं के पूर्वज हो। लौकिक में जब बच्चे बड़े बूढ़ों के साथ शरारत करते हैं तो वे नाराज नहीं होते तथा कोई बात नहीं बोलकर सहन करते रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम सदा स्वमान में रहो, मैं पूर्वज आत्मा हूं, इससे आप ही सबका सब में अपने आप सहन होता रहेगा। सबकी बातें आप सहन करते रहोगे और सहनशीलता आपकी बढ़ती जाएगी। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरस्व, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुंडेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे ऐसे ही, थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड, उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए, हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होके बात कर ही लेनी है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो,

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके 10,000 crore सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 more सेल्स इन द बॉडी, 10,000 crore सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: ख्वाबों का सफर आरजे सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ख्वाबों के सफर में, और मैं हूँ आपका हम सफर सनी। जी हाँ, आइए आज के इस सफर को यादगार बनाते हैं और बहुत ही अच्छी बातें होगी। और आज के इस सफर के हमारे हम सफर हैं विभा जी, जो बहुत ही अच्छे कलेक्शन लेकर हमारे साथ जुड़ गई है ख्वाबों के सफर में। तो आप सभी की तरफ से विभा जी का बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू सनी, आपको और हमारे ख्वाबों का सफर सुनने वाली सभी श्रोताओं को मेरा प्यार से प्यार भरा नमस्कार।
1: जी विभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कहते हैं जिंदगी हर हाल में एक मुकाम मांगती है, किसी का नाम तो किसी से ईमान मांगती है, बड़ी हिफाजत से रखना पड़ता है दोस्ती से, रूठ जाए तो मौत का सामना मांगती है। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर। तो आइए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत में कौन सा एक गीत जो आप हमारे श्रोताओं को शुरुआत में सुनाने वाले हैं?
2: पहला गाना मैं लेके आई हूँ अक्षर पी के साथ, जैसा कि पिछली बार पी से एक ही गाना सुना पाए थे हम। और पी अक्षर से गाना है, जैसे कि आप सब जानते हैं ये प्यार मोहब्बत के गाने पी से ज्यादा चलते हैं। फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो, हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो। इसको विश्वजीत बड़े प्यार के साथ शर्मिला टैगोर से वादा लेने की बात कर रहे हैं, और शर्मिला टैगोर अपनी अदाएं दिखाते हुए उनको सुन रही हैं और वो कह रहे हैं, दिल की हर बात अधूरी है, अभी एक और मुलाकात जरूरी है, अभी चंद लम्हों के लिए साथ का वादा कर लो।
1: जी विभा जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और पहला गाना जो है आपने, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद किया है, ये रात फिर ना आएगी 1966 के इस एल्बम से है। और ये गाना जो है SH बिहारी साहब ने लिखा था, आशा भोसले और रफी साहब ने इसे गाया है। ओपी नैयर का खूबसूरत संगीत से सजा ये गीत है, और हमारे सभी श्रोताओं को कार्यक्रम की शुरुआत में ये खूबसूरत संगीत अभी आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना, ये रात फिर ना आएगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगला गाने की तरफ। और उसके बीच में मैं कहना चाहूंगा कि जब भी हम लोग गाने सुनते हैं तो कहीं ना कहीं एक मैसेज होता है, और उस मैसेज को जब हम लोग कोट करते हैं या याद करते हैं तो हमें और भी खुशी मिलती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए कहते हैं, दुनिया में सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं पर काम के लोग चंद मिलते हैं। जब मुसीबत का वक्त आता है सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। विभा जी कैसे हैं आप?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल रियलिटी वाला शेर आपने सुनाया, बहुत ही खूबसूरत। अब
0: जी
1: मैं एक प्यार भरा दूसरा गाना आपके लिए लेके आई हूँ। फिर ना कीजिए मेरे गुस्ताख निगाहों का किला, देखिए आप प्यार से देखा मुझको। बहुत ही सादगी के साथ गाया गया, राज कपूर और माला सिन्हा का गाना है, और इसमें धीरे धीरे प्यार का इजहार किया जा रहा है। हर नजर आपकी जज्बात को उकसाती है, मैं अगर हाथ पकड़ लूं तो खफा मत होना।
0: जी, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने फिर सुबह होगी इस एल्बम का याद किया है, जो 1968 में रिलीज हुई थी। और ये फिल्म जो है रमेश सहगल साहब ने डायरेक्ट किया था, उन्होंने इसको प्रोड्यूस किया था और इसमें संगीत दिया था मोहम्मद खयाम साहब ने। और फिल्म के कलाकार थे राज कपूर, माला सिन्हा, कमल कपूर और रहमान ने इसमें काम किया था। तो आइए, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने याद कराया है, तो इस गाने का आनंद उठाते हैं। साहिल लुधियानवी साहब ने लिखा है, आशा मुकेश जी ने गाया है, खयाम साहब का बहुत ही खूबसूरत संगीत है, फिर सुबह होगी। तो चलिए इस गीत का सीधा आनंद लेते हैं। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना, फिर सुबह होगी। ये नाम अपने आप में एक पॉजिटिव मैसेज देता है। जब भी हम लोग मुश्किल में होते हैं या अंधेरी रात गहरी होती हुई हमें नजर आती है, तो हमें थोड़ा सा फियर यानी डर लगने लगता है। तो ऐसे में हमें अगर ये शब्द याद आ जाए कि हर काली अंधेरी रात के बाद फिर सुबह होगी, तो अपने आप में एक जो डर है, एक जो मायूसी है, वो खुशी में बदलती जाएगी। तो चलिए, अगला गाना कौन सा है विभा जी आपके पास?
1: अगला गाना मैं लेके आई हूँ, ये थोड़ा उदासी भरा गाना है। यहाँ प्यार होता है, वहां मिलना बिछड़ना उदासी, ये चीजें चलती ही हैं। ये भी एक भाव है। फिर तेरी कहानी याद आई, फिर तेरा फसाना याद आया, फिर आज हमारी आंखों को एक ख्वाब पुराना याद आया। उदासी भरा गाना है। रीता रहमान अपने प्यार को याद करती है, उन दिनों को याद करती है जो उसने अपने प्रेमी के संग बिताए थे, और बीते दिनों को, जो स्पेशली अच्छे दिन बीते हों, तो उसको हर कोई फिर से जीना चाहता है। शायद कभी मिलना हो जाए, बैठे हैं इसी अरमान में हम, तूने तो किनारा पा ही लिया, उलझे हैं मगर तूफान में हम, क्या जाने वफा फिर आज हमें पिछला वो जमाना याद आया।
0: चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। ये एक दर्द भरा गाना है, और जैसे कि आपने कहा कि प्यार में ये सारी चीजें होती हैं, और ये फिल्म जो है एक जमींदार की कहानी इसमें बताई गई, जिसको कोई बेटा नहीं है, तो वो एक बेटे को गोद लेता है, और इस तरह से आगे कहानी बढ़ती है। दिलीप कुमार, वहीदा रहमान, प्राण और जॉनी वॉकर पर पिक्चराइज किया गया ये खूबसूरत फिल्म है, जिसका नाम है दिल दिया दर्द लिया। जी हाँ, 1966 का ये खूबसूरत गाना है। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं सीधे इस गाने की तरफ ले चलता हूँ आप सभी को। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और बहुत ही अच्छा सूदिंग गाना था, दिल दिया दर्द लिया, आपने सुना। और जैसे कि मैंने कहा कि फिल्म में जो एक जमींदार की कहानी बताई गई थी, थोड़ा सा ट्रेजेडी वाला और बाद में सिचुएशन बनता है जिसमें ये गाना जो है वहाँ पर पिक्चराइज किया गया था। तो आइए आगे बढ़ते हुए कहना चाहूँगा, जीत भी मेरी और हार भी मेरी, तलवार भी मेरी और धार भी मेरी, जिंदगी ये मेरी कुछ यूं सवार है मुझ पर, डूबी भी मेरी और पार भी मेरी। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज। विभा जी कैसे हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ, गाने सुन रही हूँ और आपके शेर का भी एंजॉय कर रही हूँ। बहुत अच्छे अच्छे शेर आप कहते हैं, तो उनमें भी गहराई होती है जो गानों के साथ लिंक हो रही है, तो इसका वो कहते हैं कि और भी ज्यादा रस आ रहा है इसमें।
1: जी जी जी। अच्छा, अगला गाना कौन सा है आपके पे?
2: अगला गाना भी उदासी भरा ही है, ये शिकायत और ठेस लगने की बात है इसमें। फिर ठेस लगी दिल को, फिर याद ने तड़पाया, फिर बहने लगे आंसू, दिल दर्द से भर आया। जैसे कि गाने के बोल हैं वैसे उदासी है इसमें, और दिल के दुख जाने की बात है और शिकायत भी है। एक वो है खुदा रखे जो भूल गए हमको, एक हम है कि होठों पे शिकवा ना कभी आया।
1: जी, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया। कश्मीर की कली इस एल्बम से है जो 1964 में रिलीज हुई थी, और इसमें कलाकार थे शर्मिला टैगोर, शमी कपूर, प्राण और अनुपम कुमार इस फिल्म के बहुत ही अच्छे कलाकार रहे। इस फिल्म को शक्ति सामंत जी ने डायरेक्ट किया था और उन्होंने ही प्रोड्यूस किया था इस फिल्म को, और ओपी नैयर साहब ने इसमें बहुत ही खूबसूरत संगीत दिया था। और इसके सारे गाने बहुत ही अच्छे रहे, और इसमें से एक जो दर्द वाला गाना है जो आपने अभी याद कराया है, फिर ठेस लगी दिल को फिर याद ने तड़पाया है, तो HS बिहारी साहब ने इसे लिखा है, आशा भोसले ने गाया है। ओपी नैयर का संगीत से सजा ये गाना अभी हमारे श्रोताओं के लिए। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे कश्मीर की कली इस एल्बम से। कश्मीर की कली ये फिल्म आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, तो थोड़ी सी कहानी मैं इसमें बताना चाहूंगा। एक हीरो है जिसे शादी के लिए मजबूर किया जाता है घर वाले, और वो शादी नहीं करना चाहता, इसीलिए वो कश्मीर चला जाता है। और कश्मीर में जाने के बाद वहां किसी लड़के के प्यार में पड़ जाता है। तो इस तरह का ये क्लाइमेक्स इसमें बताया गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। विभा जी, अगला गाना कौन सा है आपके पास?
1: अब सनी मैं लेके आई हूँ एक कवाली।
0: हाँ, क्या बात
1: तो
0: है,
1: थोड़ा उत्साह भरी कवाली है, पर इसमें भी याद है। फिर तुम्हारी याद आई है सनी, हम ना भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम। और आपको अगर याद होगा तो प्रेमनाथ जब हीरो हुआ करते थे उस टाइम की कवाली है ये, और बहुत ही खूबसूरत इसके अल्फाज है। हुस्न की नजाकत और मासूमियत की तारीफ है, बेहद सादगी के साथ हुस्न की तारीफ की जा रही है।
0: जी, जी, जी।
1: क्या लुत्फ आ रहा था दिलबर के दिल लगी से, नजरें भी थी मुझे पर पर्दा भी था मुझे से, क्या हसी तस्वीर थी अल्लाह कसम एहसन।
0: जी, ये रुस्तम सोरा इस एल्बम से गाना आपने चुना है। पृथ्वीराज कपूर, सुरैया, प्रेमनाथ, मुमताज पर पिक्चराइज किया गया था। और जैसे कि कहा आपने, प्रेमनाथ जी हमेशा विलेन के रूप में हमने देखा था, लेकिन इस फिल्म में शायद वो हीरो है। कुछ फिल्में उन्होंने हीरो के रोल में भी किया था बहुत 50s और 60s में। तो उसमें का एक जो गाना है वो आपने चुना है, बहुत ही खूबसूरत कवाली है। तो चलिए इस कवाली का भी लुत्फ तो उठाते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत ही खूबसूरत कवाली आपने सुना। आशा करता हूँ कहीं ना कहीं एक जो है नया परिवर्तन आपने फील किया होगा। म्यूजिक में जैसे गीत सुनते हैं तो उसकी जो रस है उसका अलग होता है, और कवाली जब सुनते हैं तो एक अलग मूड बन जाता है। तो हो सकता है कि आप सभी खुशी के मूड में आ गए होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, एक और गीत की तरफ हम लोग चलते हैं। विभा जी, अगला गाना कौन सा है आपके पास?
1: अगला गाना भी मैं फिर याद पे ही लेके आई हूँ कि जब प्यार में प्रीतम दूर होता है तो उसकी याद में ही रहने को अच्छा लगता है, तो उसी याद को फिर याद करते हुए इस गाने को गाया जा रहा है। फिर वो भूली सी याद आई है, उदासी भरा गाना है लेकिन बड़ा सूदिंग गाना है। आंख में बूंद भर जो पानी है, प्यार की यही निशानी है, रोते बीती है जो बिताई है।
0: बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है। ये एक फिल्म आई थी 1963 में जिसका नाम था बेगाना। बेगाना से ये जो मतलब है कि हमें कुछ रहस्य नहीं पता है, यानी किसी से हम बातें करते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी नहीं होना, इसी का मतलब है बेगाना। तो यहाँ पर भी एक ऐसा ही हीरो जो होता है, जिस हीरोइन से वो प्यार करने लगता है, उनके पिछले जीवन कहानी ही उनके बारे में कुछ उन्हें पता नहीं होता, और जब पता चल जाता है तो फिर रहस्य बन जाता है, सारा क्लाइमैक्स बढ़ जाता है। तो इस तरह का ये स्टोरी बताया गया है। इसमें सदाशिव जी ने इस फिल्म का निर्देशन किया है, और धर्मेंद्र, सुप्रिया देवी, तरुण बोस इस फिल्म के कलाकार हैं। आइए इस खूबसूरत गीत को हम लोग सुनेंगे। अभी आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: तेरे

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: फिर वो भूली सी याद आई है, क्या बात है। शैलेंद्र साहब का लिखा, मोहम्मद रफी का गाया, सपन जगमोहन का संगीत से सजा बेगाना इस एल्बम का ये गाना आपने अभी सुना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत गाने पी अक्षर वाले आप सुन रहे हैं 50s एंड 60s के। कदम कदम पे नया इम्तिहान रखती है, कदम कदम पे नया इम्तिहान रखती है जिंदगी, तू भी मेरा कितना ध्यान रखती है। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। विभा जी, अगला गाना कौन सा है आपके पास?
2: अगला गाना है मेरे पास, फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। ये सनी, ये यादें है ना, ये तंग भी बहुत करती हैं और ये सुकून भी बहुत देती है। और मुझे लगता है कि जो भी पल हो उसको अच्छी तरह से जी लेना चाहिए, ताकि हम जितना हो सके अच्छी यादों को कलेक्ट करें, फिर जब हम बैठे उसको याद करें तो दिल की गहराइयों से जो अंदर से जो अरमान निकलते हैं उसको हम इंजॉय ज्यादा कर सकते हैं अच्छी यादों को लेके। लेकिन यहाँ भारत भूषण अपनी प्रेमिका को याद करते हुए कह रहे हैं, जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो ना हो, जो अधूरी रही वो बात हो ना हो, मेरी मंजिल तेरी मंजिल से बिछड़ाई है।
1: ये गाना जहाँ आरा जो 1964 में फिल्म बनी थी उस फिल्म का ये गाना है, और इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे भरत भूषण, माला सिन्हा, शशि कला, पृथ्वीराज कपूर, ओम प्रकाश, ऐसे बहुत सारे कलाकार थे इस फिल्म में। और इस फिल्म का जो ये गाना आपने याद कराया है, इसे राजेंद्र कृष्ण साहब ने लिखा है, तलत महमूद साहब ने गाया है और मदन मोहन साहब का संगीत से सजा ये गीत है। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज। बहुत ही खूबसूरत गाने आप सुन रहे हैं। कहते हैं, समझ जाता हूँ मीठे लफ्जों में छिपे फरेब को, जिंदगी तुझे समझने लगा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। आइए आगे बढ़ते हैं। और विभा जी, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ। माहौल थोड़ा टाइट हो गया था उदासी वाले गाने सुनते सुनते, इसलिए मैं आपके लिए एक शौकी वाला गाना ले आई।
0: अच्छा,
1: गेंदवा न मारो लगत है करे जुबां में चोट। कॉमेडी कॉमेडी वाला गीत है।
0: अच्छा,
1: इसमें शौकी है, चुलबुलापन है।
0: हाँ,
1: और गाना खुले आसमान के नीचे गाया गया है।
0: हाँ,
1: और इसको सुन के मन खुश होता है, इसको एंजॉय करें।
0: क्या बात है। तो चलिए, ये गीत आपने जो याद कराया है 1964 का है, दूज का चांद। नितिन बोस के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी और इसके कलाकार जो है राजकुमार, सरोजा देवी, चंद्रशेखर, उल्लास और रतन और आगा ने काम किया था इस फिल्म में। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हुए इस फिल्म का ये गीत जो अभी विभा जी ने याद कराया है, जो पी अक्षर वाला है, जिसे साहिल धनवी साहब ने लिखा है, बन्ना डे ने गाया है, रोशन जी का खूबसूरत संगीत से सजा दूज का चांद इस एल्बम का ये गीत अभी आपके लिए। खुश रहो, खुशियां बांटो।

वो गेंदवा कहलाए हैं, तन पर जहां गिरे तो भी वही दाग पड़ जाए हैं। अंग अंग मेरा पीर करे और करके कहे, तुम गेंद वान मारो न मारो

0: हमारो लगत कर जब हम तो कर जब हम तो कर जब हम तो तुझे।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: चलिए विभा जी, कैसे हैं आप?
3: जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और माहौल को थोड़ा चेंज हो गया है तो कॉमेडी वाला गाना सुनते सुनते मैंने बहुत एंजॉय किया। आई होप आपने भी इसको एंजॉय किया होगा।
2: जी जी जी
3: जी जी। और अगला गाना है ये हमारे पास, इस एपिसोड का लास्ट गाना है, इसलिए मैं गजल्स लेके आई हूँ।
2: अच्छा, अच्छा, अच्छा।
3: गुलाम अली की गाई हुई ये गजल, इसका एक एक लफ्ज अगर आप आराम से सुनेंगे तो आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। बहुत ही प्यारी और मेरे दिल को छूने वाली ये गजल है। फिर सावन रुत की पवन चली तुम याद आए, फिर पत्तों की बाजे बजे तुम याद आए। और इसमें गुलाम अली ने अपने प्रीतम को याद दिलाने वाली ये गजल को, एक एक बोल को प्रकृति के साथ, आसपास की चीजों के साथ कंपेयर करते हुए गाया है। जब दीवार पे धूप ढले तुम्हें याद आए, ब्यूटीफुल गजल।
2: जी जी जी, बहुत ही खूबसूरत गजल आपने याद किया है। और ये गजल जो है आशा भोसले और गुलाम अली साहब की आवाज में है। नाजीर काजमी इस गजल को लिखा है और गुलाम अली का संगीत से सजा, और मिराज ये गज़ल इस एल्बम से है। बहुत ही खूबसूरत गज़ल है, आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी पसंद आएगा। और कहना चाहूँगा अब एपिसोड के हम लोग आखिरी मोड़ पे हैं, तो हमारे सभी श्रोताओं के लिए कहना चाहूँगा कि आपको जो हमारे इस प्रोग्राम में जो भी गाने, जो भी बातें अच्छी लगती हों, तो ज़रूर 7219190055 पे मैसेज करके आप बता सकते हैं, और आपके मैसेजेस आते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। तो विभा जी, जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे?
3: बस मैं ये कहूंगी कि आप खुशी से, प्यार से इसे सुने और खुश रहें, खुशियां बांटें।
2: क्या बात है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई, और आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को आज का ये एपिसोड मैसेज तो जरूर इसमें था, जो मैसेज उन्होंने कोट किया होगा, और मैं चाहूंगा कि वो मैसेज जरूर याद करें। और जैसे कि आपने कहा कि ये सारे गाने आज जो है याद वाले थे, तो जाते जाते चार लाइनें आपके लिए। मैं जहां हूं अभी तेरी याद में हूं, जो गुजर रही मेरे बिन उन रातों में हूं, इधर उधर मुड़ के ना देखो हमें, नशा बन के अभी तेरी आंखों में हूं। आप सुना है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। चलिए साथियों, आज के इस ख्वाबों के सफर में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात, तब तक आप बने रहिए रेडियो पुनीरी आवाज के साथ। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पुनेरी आवाज 107.8 FM, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा।
1: 0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
2: स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेक।

पिछले कार्यक्रम में नटखट विवेकानंद के बाल्यावस्था की बातें जानकर आपको भी हंसी आ गई होगी। बचपन से ही वे किसी बात को बिना सही तरह से समझे नहीं मानते थे। प्रश्न पे प्रश्न कर वे अगर जवाब से संतुष्ट होते तो ही बात को मानते थे। छुआछूत जातिगत भेदभाव से वे घृणा करते थे। शरारती तो वे थे, पर मनपसंद की बातें हो तो घंटों ध्यान लगाकर सुनते या करते थे। आइए उनके बचपन की कुछ और बातें जानें।

0: एक पेशावरी मुस्लिम नरेंद्र नाथ के पिता विश्वनाथ बाबू के मुवक्किल थे। वे नरेंद्र के प्रति विशेष स्नेह रखते थे। उनके आने का समाचार पाते ही नरेंद्र उनके पास आ जाता और उनकी गोदी में बैठकर पंजाब और अफगानिस्तान के घोड़े और ऊंट की सवारी की भ्रमण कहानियां एकाग्र चित्त से सुनता।
1: चाचा जी, वहाँ लोग ऊंट की सवारी क्यों करते हैं? वहाँ बग्गियाँ नहीं चलती क्या?
2: ओए नहीं मेरा बेटा, मेरा बच्चा, ओए वहाँ तो रेगिस्तान है, रेगिस्तान। ओए सड़के ज्यादा है नहीं, सो लोग ऊंट पर ही एक जगह से दूसरी जगह को जाती है।
1: हाँ, पर ऊंट तो बहुत धीरे धीरे चलते हैं ना।
2: ओ इसीलिए तो मेरा बच्चा, वो वहाँ पहुँचने में बहुत महीना लग जाते।
1: फिर वो खाते पीते क्या है? लंबे सफर से थक जाते होंगे।
2: ओए होए, ओए वहाँ बीच बीच में सराय बना होती, वही पर हम रुकते आराम करता है, ओए फिर चलना शुरू करते और सफर भी रात को ठंडा ठंडा में करते। दिन में बहुत तेज गर्मी होते और तेज धूप होते।
1: पर बड़ा मजा आता होगा ना चाचा जी, आप मुझे वहाँ ले चलेंगे ना? मैं भी ऊंट की सवारी करूँगा।
2: ओए हमारा बच्चा, ओए तुम अभी बहुत छोटा है, बस दो उंगल बड़ा होने को मांगते है, फिर हम तुमको जरूर ले जाएगी।
0: आग्रह की अधिकता से वो कभी कभी दूर से ही बोलता।
1: चाचा जी देखिए, मैं रात भर में दो उंगल बढ़ गया हूँ, अब आप मुझे ले चलिए।
2: ओए देखो तो, हो, ओए हमारा बच्चा वाकई में बहुत बड़ा हो गई, अरे तुम तो दो उंगल ऊंची हो गई। ओए अब तो ले जाना ही पड़ेगी, ले जाना ही पड़ेगी। ओए हमारा बच्चा मिठाई खाएगा, ओए तब तक ये मिठाई खा लो बच्चा, ओए तुम्हारे ही वास्ते लाए है, तुमको पसंद है ना?
1: लाइए लाइए, कहाँ है, मैं दोनों ही खाऊंगा।
0: नरेन बड़े चाव से चाचा की गोद में बैठकर मिठाई खाते और वहाँ बैठे दूसरे लोग इस अनाचार को देखते और सिहर जाते। परिवार में भी इस बात को लेकर बवंडर मचता, पर विश्वनाथ बाबू कट्टरपंथी ना थे, वे इस बात को हंसकर टाल देते।
3: विश्वनाथ बाबू के दफ्तर में भिन्न भिन्न समाज के मुवक्किल आते थे, उनके लिए अलग अलग हुक्के की व्यवस्था थी। एक दिन कमरा खाली देखकर नरेंद्र वहां आया और हुक्के की नली में मुंह लगाकर कश खींचने लगा। विश्वनाथ ने मुवक्किलों के साथ कमरे में दाखिल होकर नरेंद्र को हुक्का पीते देख लिया।
2: बिले, ये क्या हो रहा है?
1: बाबा, सब कहते हैं दूसरी जाति के लिए रखा हुआ हुक्का नहीं पीना चाहिए। मैं तो देख रहा था ऐसा करने पर क्या होता है, मैं तो वैसा ही हूँ। ये छत टूट तो नहीं पड़ी, मैं तो परीक्षा कर रहा था कि अगर मैं जाति भेद ना मानूं तो क्या होगा।
4: नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते, पाप लगता है।
1: क्यों, क्या होगा, क्या वह मर जाएगा? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के हाथ का क्यों नहीं खाता? बाबा कहिए ना, क्या होता है?
0: विश्वनाथ बाबू ने हंसते हुए उसे प्यार से कहा।
2: बिले, तू बड़ा दुष्ट हो गया है रे।
3: नरेंद्र ने सीताराम की मूर्ति को तोड़कर दूसरे ही दिन उसके स्थान पर एक शिव मूर्ति की स्थापना कर दी। माता का अनुकरण कर वे प्रतिदिन शिव पूजा करते थे। कभी पद्मासन में बैठकर ध्यान लगाते तो कभी अपने साथियों को बुलाकर सब मिलकर शिव मूर्ति को घेरकर ध्यानस्थ होकर बैठे रहते। यह खेल नरेंद्र को बहुत भाता था। उस समय उनके मन में क्या चलता था वही जाने। एक दिन ध्यान से उठकर उदास होकर माँ के पास गया और कहा,
1: माँ मुझे शिवजी के दर्शन क्यों नहीं होते? सचमुच क्या मैं दुष्ट हूँ? इसीलिए शिवजी ने मुझे अपने पास से हटा दिया है।
5: ऐसा किसने कह दिया रे तुझे?
1: मैं अगर साधु हो जाऊं तो क्या शिवजी मुझे अपने पास लौट आने देंगे?
5: हाँ हाँ क्यों नहीं।
3: यह बात परिवार की महिलाएं सुन रही थीं, वे अवाक रह गईं।
6: बहू ये तुमने क्या कह दिया है बेटे से? एक ही तो बेटा है तुम्हारा, उसे भी संन्यास लेने को कह रही हो? कैसी माँ हो तुम?
3: यह बात अनजाने में कह जाने के बाद माँ का हृदय किसी अनजान डर से कांप उठा। उसी पर किसी के टोकने पर वह और विचलित हो उठी। अपने दादा की तरह अगर नरेन भी संसार छोड़कर चला गया तो? पर मन ही मन शिव का ध्यान लगाकर उन्होंने इस डर को मन से हटा दिया और कहा,
5: देखो भाई भगवान की जो इच्छा होगी वही तो होगा ना, मैं उसमें बाधा देने वाली कौन हूँ?
1: तब तो मैं सन्यासी ही बनूंगा।
0: बचपन से ही लगातार रामायण और महाभारत सुनते सुनते उन ग्रंथों का बहुत सा भाग उन्हें याद हो गया था। वे कभी कभी सुमधुर स्वर में उन्हें सुनाकर श्रोताओं को मुग्ध कर देते थे। कभी कभी भिक्षु गायकों से सीखे हुए राधा कृष्ण या सीताराम के गीतों को गाकर घर वालों और अपने पिता के मित्रों को आनंद प्रदान करते। लाड़ प्यार से पले नरेंद्र स्वतंत्रता प्रिय होने पर भी उनके बाल चरित्र में अपने माता पिता के नाना प्रकार के सद्गुणों का समावेश हो गया था। घर में नीति शास्त्र एवं लोकाचार का कठिन नियम ना होने पर उनका चरित्र अपनी स्वाभाविक मधुरता के साथ स्वतः ही विकसित हो रहा था।
3: श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हनुमान के अलौकिक कार्यों की कथाएं सुनना नरेंद्र को बहुत अच्छा लगता था। माता से उन्होंने सुना कि हनुमान जी अमर हैं, वे अभी भी जीवित हैं। तब से उन्हें देखने के लिए नरेंद्र के प्राण छटपटाने लगे। एक दिन वे माता के साथ कथा सुनने गए। कथाकार पंडित जी नाना प्रकार से हास्य रस मिलाकर हनुमान जी के चरित्र का वर्णन कर रहे थे। कथा खत्म होने पर नरेंद्र धीरे धीरे उनके पास गया और उनसे पूछा,
1: पंडित जी आपने कहा हनुमान जी केला खाना पसंद करते हैं और केले के बगीचे में ही रहते हैं, तो क्या मैं वहां जाकर उनके दर्शन पा सकूंगा?
7: हाँ बेटा, केले के बगीचे में ढूंढने पर तुम उन्हें पा सकते हो।
3: फिर क्या था, दूसरे ही दिन घर के पास वाले केले के बगीचे में केले के पेड़ के नीचे बैठ गए और हनुमान जी की प्रतीक्षा करने लगे। काफी समय बीत गया पर हनुमान जी नहीं आए। अंत में लाचार होकर शाम ढलते घर वापस आए। माँ को सारी घटना सुनाकर इसका कारण पूछा। बालक के विश्वास पर चोट न करना ही माता ने उचित समझा और बेटे को प्यार से चूम कर कहा,
5: ओले बेटा बेटा तुम दुखी मत हो, शायद देखो शायद आज हनुमान जी वो राम जी के किसी काम से कहीं दूसरी जगह पर चले गए होंगे, हाँ इसीलिए वो तुम्हें नहीं मिले, किसी और दिन मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, ओ बेटा मेरा।
0: बालक शांत हुआ। उसने फिर कभी हनुमान जी से मिलने की कोशिश की या नहीं ये तो ज्ञात नहीं, पर हनुमान जी के प्रति गंभीर श्रद्धा भाव उनके मन से कभी लुप्त नहीं हुआ। ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करने के इच्छुक प्रत्येक युवक को विवेकानंद कहा करते थे,

0: महावीर के चरित्र को आदर्श बनाओ। हर घर में महावीर हनुमान जी की पूजा होनी चाहिए। इस दुर्बल जाति के सम्मुख उन्हीं का आदर्श रखना चाहिए। शरीर में शक्ति नहीं, हृदय में साहस नहीं, क्या होगा मांस के लोदों से। मैं चाहता हूं हर युवा महावीर जैसा ताकतवर हो।
1: बोध या विचार शक्ति के कुछ और बढ़ने के बाद उनमें साधु या भिखारियों के प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण दिखाई पड़ा। उनके आने पर वे उनके निकट दौड़ जाते, उन्हें कोई रोक नहीं पाता और जो भी मिलता उन लोगों को दे देते थे। एक दिन नई धोती पहनकर साथियों के साथ खेल रहे थे, तभी दरवाजे पर आवाज हुई।
2: नारायण हरि, नारायण हरि, अरे कोई है?
3: आओ बाबा, अंदर आओ।
2: बेटा, कुछ पहनने ओढ़ने का मिल जाए तो।
3: हाँ हाँ, लो ना, मेरी यह धोती बिल्कुल नई है, आज ही तो पहना है, ये ले लो।
2: तुम्हारी ये छोटी सी धोती मैं कैसे पहनूंगा बेटा? पर तुम्हारा दिया दान मेरे सर आंखों पर, लाओ मैं से अपने माथे पर लपेट लूं। जीते रहो बेटा, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो।
0: साधुओं के आने पर नरेन को किसी कमरे में बंद कर दिया जाता था, पर खिड़की से वे उन्हें बुलाकर जो कुछ मिलता दे देते थे और घर के लोगों को हरा दिया समझकर खुश हो जाते।
1: दोनों बड़ी बहनों हरमोहिनी और स्वर्णमयी को वे हमेशा छेड़ा करते। दोनों हैरान परेशान होकर नरेन को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ती, पर पकड़ न पाती। उन्हें और भी तंग करने के लिए नरेन किसी गंदे नाले में उतर जाता या किसी कूड़े के ढेर पर चढ़ जाता। बहनें उनका पीछा करती।
4: रुक जा बिले, इधर आ, आज तुझे अच्छा मजा चखाऊंगी। मेरे कपड़े में अपना गंदा हाथ क्यों पोछा, बोल।
5: ओह, मेरी किताब तूने ही छुपाई है, निकाल निकाल दे जल्दी, नहीं तो मैं माँ को कह दूंगी।
4: एक बार पकड़ लूं तो तेरी खैर नहीं बिले। स्वर्ण, तू उधर से जा, उधर जाकर पकड़, मैं इधर से इसका रास्ता रोकती हूँ।
3: आओ आओ ना, आओ पकड़ो मुझे, इस गंदी नाली में उतरो, तब तो पकड़ पाओगी मुझे। अच्छा चलो, मैं ही निकल आता हूँ, पर मेरे कपड़े और पैर गंदे हो गए हैं, मुझे छुओगी क्या?
5: हाँ हाँ पकड़ूंगी, रुक, बिल्कुल पकड़ूंगी।
3: पकड़ोगी तो ये लो, मैं कूड़े के ढेर पे चढ़ गया, अब आओ यहाँ, पकड़ो पकड़ो पकड़ो।
6: माँ देखो ना, परेशान कर रहे हैं, माँ देखो ना।
1: दोनों बहनें हार कर रोते रोते अंदर चली जाती हैं।
0: दत्त भवन में अनेक पालतू जानवर थे। नरेन को उनके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। विलायती सफेद चूहा, बंदर, बकरा, कबूतर, काकातुआ और अनेक तरह तरह की चिड़िया थीं। घर की गाय के साथ नरेन की पक्की दोस्ती थी। उसके गले में माला पहनाकर, माथे में सिंदूर लगाकर, शरीर पर हाथ फेरकर वे उसके साथ कितनी मीठी मीठी बातें किया करते थे, और वो गाय भी उनके शरीर पर मुंह रगड़कर प्यार जताती थी।
1: सन्यासी होने की इच्छा उन्हें बचपन से ही थी। एक दिन एक गेरुआ वस्त्र को कॉपीन की भांति लपेटकर वे घूम रहे थे। उसे देखकर माँ ने पूछा,
4: क्यों रे बिले, है
7: ये क्या कर रहा है?
3: माँ, मैं शिव हो गया हूँ। अब मैं ध्यान करने जा रहा हूँ।
7: अरे क्यों भला?
3: मैंने सुना है कि ध्यान में बैठे ऋषि मुनियों के बालों की जटा बढ़कर धरती को छूने लगती है और धीरे धीरे बरगद के पेड़ की जटा की तरह धरती में घुस जाती है। पर मैं तो कल भी ध्यान करने बैठा था, मेरे बाल तो बड़े ही नहीं, ना ही जमीन में घुसे। क्यों माँ?
7: बेटा, एक आध घंटा या एक दो दिन में जटाएं नहीं बढ़ती, कई साल लग जाते हैं।

0: नरेंद्रनाथ के पास खेलों की कमी ना थी। उनका एक प्रिय खेल था राजा बनने का खेल। अपने संगी साथियों के साथ पूजा घर जाने वाली ऊंची सीढ़ी पर ये खेल चलता था।
1: मैं राजा हूँ, इसीलिए मैं सबसे ऊंची सीढ़ी पर बैठूंगा। तू मंत्री है, इस पर बैठ। तू तो कोतवाल है, वहाँ बैठ। सेनापति, तुम इधर आकर बैठो। और तुम सब सभासद हो, नीचे बैठो। अब दरबार शुरू होगा, सब लोग मुझे प्रणाम करो।
2: प्रणाम महाराज।
1: मंत्री, राज्य का क्या समाचार है?
3: प्रजागण परम सुखी है महाराज।
1: सेनापति, कहो क्या कहना है?
4: महाराज, एक डाकू बड़ा उत्पात करता है, आए दिन हमला करके प्रजा को लूट लेता है।
1: उस दुष्ट आत्मा का सर काट दो।
0: तुरंत कुछ बच्चे डाकू को पकड़ने दौड़ते और वो सदर दरवाजे से भागकर जान बचाता। राजा सिंहासन पर बैठे बैठे मुस्कुराते रहते।
3: वो रहा, पकड़ो उसे, पकड़ो।
5: वो रहा, वही,
3: हाँ वही, नीचे,
5: पकड़ो, पकड़ो, जल्दी, जल्दी भागो, पकड़ लो उसे,
3: पकड़,
5: पकड़ो,
3: पकड़
5: लिया,
3: आ गया, पकड़
5: आ गया,
3: चल राजा के पास, चल अपने
5: चलो, इसे सबक सिखाएंगे, ले चलो,
3: मृत्यु दंड देंगे,
5: बस चल राजा के पास,
3: चलो, चलो, ले चलो इसे।
6: इसी तरह खेलते खिलाते नरेंद्र बड़ा हो रहा था। साथियों ने सर्वसम्मति से उसे नेता मान लिया था। जहाँ भी जाते, जो भी करते, सब बच्चे नरेंद्र का ही कहा मानते। उम्र में बड़े बच्चे भी उसी को नेता मानते थे।
0: नरेंद्र बचपन से ही निर्भीक और साहसी थे। उसके एक सहपाठी पड़ोसी के घर चंपा का एक पेड़ था। अक्सर नरेंद्र उस पेड़ पर चढ़कर डाली में पांव फंसाकर और सिर नीचे लटकाकर झूलता था। एक दिन उस घर के मालिक दादाजी राम रतन बसु ने उसे ऐसा करते देख लिया। उन्हें लगा चंपा की नरम डाली टूट जाने पर नरेंद्र को चोट लग जाएगी। वो बाहर आकर नरेंद्र को समझाते हुए कहते हैं,
7: बेटा नरेंद्र, इस तरह चंपा की डाली पर नहीं झूलते, नीचे आ जाओ, मत चढ़ो पेड़ पर।
1: क्यों, क्यों इस पेड़ पर चढ़ने से क्या होता है?
7: नीचे तो उतरो, बतलाता हूँ।
1: ये लीजिए, आ गया, अब बताइए।
7: उस पेड़ पर एक ब्रह्म राक्षस रहता है, भयानक गुस्सेल है, पेड़ पर चढ़ने वाले की गर्दन मरोड़ देता है।
1: अच्छा दादाजी।
0: दादाजी के अंदर जाते ही नरेंद्र फिर से पेड़ पर चढ़ने लगा।
8: नरेंद्र सुना नहीं दादाजी ने क्या कहा? ब्रह्म राक्षस गर्दन मरोड़ देगा।
1: अरे आने दे ब्रह्म राक्षस को, मैं उसके शरीर पर थूक कर उसे वशीभूत कर दूंगा।
8: नहीं बाबा, मुझे तो डर लगता है, मैं तो चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ।
1: तू भी जैसे गधा है। कोई आकर एक बात कहके डरा गया और तू उसी पर विश्वास करने लगा।
8: तो तू नहीं मानता ब्रह्म राक्षस को?
1: तेरे दादाजी की बात अगर सही होती तो वो बहुत दिनों पहले ही मेरी गर्दन मरोड़ देता। मैं तो अक्सर झूलता हूँ, मुझे तो कभी नहीं दिखा वो। जा जा जा, डरपोक कहेगा।
0: बच्चे की बुद्धि का विकास माता पिता की गोद में बैठकर ही होता है। विशेषकर नरेंद्र के माता पिता का था अपूर्व उदार हृदय और ज्ञान समृद्ध प्रगतिशील मन, अतः उनका मानसिक विकास और भी तेजी से और समृद्ध हुआ था। रामायण और महाभारत की कहानी, देवी देवताओं की कथा एवं भारत की सांस्कृतिक परंपरा के स्वरूप को उन्होंने इसी बचपन में लाड़ प्यार के माध्यम से ही ग्रहण करना शुरू किया। उनकी सुकुमार मन में इन सब की गंभीर रेखा चित्र खिंच गई थी, इसलिए परवर्ती काल में अपने व्याख्यान के प्रसंग में इन सब बातों का उल्लेख कर एवं सुंदर भाषा में उनकी व्याख्या कर श्रोताओं को मुग्ध कर देते थे।
6: रामायण पर उनका इतना अधिकार हो गया था कि एक बार घर के पास रामायण गायकों के एक दल द्वारा एक पद विशेष को गाते समय कई पंक्तियां भूल जाने से अशुद्ध रूप से गाने पर नरेंद्र ने पदों को शुद्ध रूप से गाकर सभी लोगों से प्रशंसा पाई थी। गायकों ने भी अपनी भूल मानकर श्रोताओं से माफी मांगी थी और नरेंद्र को मिली थी ढेर सारी मिठाइयां।
0: उनके महाभारत पाठ के संबंध में भी एक मर्मस्पर्शी घटना जानी जा सकती है। सन 1869 में दत्तग्रह के तत्कालीन मुखिया नरेंद्रनाथ के छोटे दादाजी काली प्रसाद दत्त मृत्युशैया पर पड़े थे। आखिरी समय में उनमें एक अंतिम इच्छा जगी कि मृत्यु पूर्व परिवार के बच्चों में से किसी के मुख से महाभारत का पाठ सुनेंगे। लज्जावश कोई भी बालक या बालिका पाठ करने के लिए राजी नहीं हुआ। सबने सबसे छोटे नरेंद्र से पाठ करने के लिए कहा। वे तुरंत अपने छोटे छोटे हाथों में विशालकाय महाभारत को समाहित किए हुए दादाजी के कमरे में आए और अपनी मधुर वाणी में महाभारत के कई पन्ने पढ़कर सुना दिए।
6: केवल अंतिम घड़ी में ही नहीं, उसके पहले भी दादाजी ने नरेंद्र के मुख से कई दिनों तक संपूर्ण रामायण का पाठ सुना था। पाठ के समय माँ भुवनेश्वरी देवी भी उपस्थित रहा करती थी।
0: परलोक की ओर आंखें पसारे हुए वृद्ध ने अपने इस कुल तिलक के महाभारत पाठ से उल्लासित होकर आशीर्वाद दिया।
9: बेटा, समय आने पर तुम निश्चय ही बड़े आदमी बनोगे। हाँ
10: मेरे बेटे को यही आशीर्वाद दें कि वो हमेशा सच के पथ पर चले और मानवता की सेवा करे।
9: तुम्हारी जैसी माँ पाई है इस बालक ने, इसे कौन रोक सकेगा। अवश्य ही ये हमारे परिवार का नाम रोशन करेगा।
10: बिले बेटा, दादाजी तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, उन्हें प्रणाम नहीं करोगे।
1: हाँ माँ, दादाजी प्रणाम।
9: जीते रहो बेटा, जीते रहो, खुश रहो, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में।
1: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी। लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू, आप सच बोलेंगे। देयर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूं विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो ऐसे गुस्सा करना ही है, कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो।

0: मनन से मनोबल तक, आस्था से अस्तित्व तक। मेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियां बांटो।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
2: रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दोस्तों, सुन कर के हम मुस्कुरा कैसे सकते हैं जब तक हमने किसी बात का अनुभव नहीं किया। लेकिन जब हम वो कहानियाँ सुनते हैं, वो किस्से सुनते हैं जो किसी अनुभवी के जीवन की कहानियाँ होती हैं, तो सुनते हुए न चाहते हुए भी कहीं ना कहीं हमारे होठों पे मुस्कान आ ही जाती है। यशस्वी भारत कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का मैं स्वागत करता हूँ। और मुझे ये कहते हुए आज नाज हो रहा है कि मेरे सामने एक आज ऐसी हस्ती बैठी हुई है जिन्होंने देश के मानचित्र पे एक सुंदर कलाकृति इतने बेहतरीन और इतने लाजवाब रूप से इतने लंबे समय से आकृत की है कि आज देश उन्हें पद्मश्री श्री राम किशोर की आज उन्हें देश पद्मश्री श्री राम किशोर छिपा डेरावाल जी के नाम से जानता है। राम किशोर जी, आपका रेडियो मधुबन के स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत।
3: नमस्ते।
2: तो आप बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन इस व्यस्तता में आप माउंट आबू आए, हमारे रेडियो मधुबन के स्टूडियो में आए, इसके लिए तो पहले पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है यहाँ आकर के?
3: यहाँ पे मैं तो बगरू से आया हूँ, जो जयपुर के पास में है बगरू, और मेरा काम वहाँ पे है ब्लॉक पेंटिंग का काम है। और वहाँ पे हम लोग जो काम करते हैं वो सिर्फ नेचुरल डाइस के ऊपर काम करते हैं, उसको भी हम पर्यावरण को बचा करके पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हम लोग। कई लोग हैं जो नेचुरल डाइस के लिए कई प्रदेशों के अंदर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ राजस्थान में नहीं है ऐसा। राजस्थान में वही होगा कि जो पर्यावरण के जो वेस्ट सामान है, जैसे फ्लोर है किसी की, जैसे आप हमारे राजस्थान में एक बम्बूल होता है, बम्बूल का जो छिलका होता है उसका रंग निकालते हैं, ऐसा कोई भी हम नुकसान नहीं पहुंचाते जिसको पेड़ को हानि हो,
2: प्रकृति को
3: नुकसान नहीं पहुंचाते हम लोग। और उस बिजनेस को ये हमारे पुरखों से चलता आ रहा है।
2: तो आपके पहले कितने लोगों ने आपके परिवार में ये किया है?
3: जब से मेरे सूरज समाली था, हमारे पिताजी करते थे, उनके पिताजी करते हैं। आज भी हमारे पास जो ब्लॉक है वो करीब मेरा ख्याल है 400 साल पुराने ब्लॉक है हमारे पास।
2: तो ये जो 400 साल पुराने जो ब्लॉक है, जो ठप्पे हैं, ये ना केवल डिजाइन है या कला है, लेकिन साथ में कहानी भी है इसमें।
3: सबसे बड़ी बात आपको मैं ये बताऊं कि हम हिंदू छिपा हैं, और हमारे परिवार में जो छिपा समाज जो है वो नामदेव जी को मानता है
2: जी,
3: भगवान नाम, संत नामदेव।
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: उसको मानते हुए हम लोगों की एक प्रथा चल रही है पहले से ही, हमारे बुजुर्गों से ही चल रही है, कि जो भी हम काम करते हैं जिस भी ब्लॉक से, उस ब्लॉक को हम बेचते नहीं है कभी जिंदगी में।
2: क्या बात है, इसके पीछे का भाव क्या है?
3: हम लोगों का कहना यह है हमारे बुजुर्गों का कि हम जिससे कमा के खाते हैं हम उसको कैसे सेल करें, कैसे बेचें इसको,
2: क्योंकि वो हम
3: जिससे हमारा जीवन दिया है इन्होंने,
2: अन्नदाता है
3: उसको हम नहीं बेच सकते। आज भी हमारे पास हमारे बुजुर्गों के करीब 400 साल पुराने ठप्पे आज भी स्टोर में है, और हम लोग जो काम कर रहे हैं हम भी आज तक उनको सबको स्टोर ही कर रहे हैं। जब भी आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए प्रेरणा रहेगी कि तो, वो चीज देख करके।
2: तो जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे किसान के लिए उसकी भूमि उसके सभी आर्थिक नियोजन का साधन है एकमात्र, ऐसे ही जो हमारे ठप्पा के कलाकार होते हैं, जो है ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं, उनके लिए उनका ब्लॉक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट
3: है जी। और एक ही बात कहते हैं वो तो, कि जिसने हमें अन्न दिया है, अन्नदाता है हमारा, हम उसको नहीं भूलते, ना बेच सकते हैं।
2: क्या बात।
3: इसके अलावा एक काम और करते हैं हम लोग कि साल में दो दिन आते हैं हमारे, एक तो एकादशी आती है जो भी कार्तिक में आएगी, और एक आती है बसंत पंचमी
2: जी।
3: ये हमारे नामदेव जी का एक तो जन्मदिन है और एक
2: पर्यायन दिन
3: वो है। दोनों दिन हम लोग जितने भी हमारे जो ब्लॉक्स हैं उनको पूछते हैं, पूजा करते हैं उनकी, पुरानों की नयों की सबकी, साल में दो बार होता है ये हमारा।
2: तो राम जी, मुझे ये जानने का मन कर रहा है कि जरूरी नहीं होता है कि जो पिता का व्यवसाय हो या जो काम हो वो बच्चे को भी अडॉप्ट करना है। कई बार इंस्पायर भी होते हैं बच्चे, लेकिन जरूरी नहीं कि वो उसी लाइन को फॉलो करे। तो आपको इस छिपा उद्योग में जाने में आपके घर से कोई प्रेशर था या आपके दिल में आया कि नहीं मुझे भी यही करना, क्या कहानी क्या थी आपकी?
3: नहीं, प्रेशर कोई नहीं था परिवार का, और हम मैंने खुद चुन करके मैंने काम किया। और अभी जो मेरा बेटा है वो भी इसी काम में लगा हुआ है
2: जी।
3: अभी पोते हैं दो, दोनों इसी काम में है।
2: क्या बात, बहुत बढ़िया।
3: जो पोता अभी पढ़ के गया है दिल्ली से, इकोनॉमिक ऑनर्स क्या बोलते हैं उसको, तो वो पढ़ के गया है। उसने यही तय किया कि बाबूजी मैं यही काम करूंगा ताकि ये आगे तक बढ़े। ये जरूर है कि हर समय चेंजिंग आती रहती है, मार्केट की, ग्राहक की, ये ब्लॉक चेंज होते रहते हैं। तो ये सब चीजें चेंज हो करके हमारी थीम वही है, उसी थीम के ऊपर हम नए ब्लॉक्स, नए डिजाइन। पहले हमारा जो मार्केट था वो देहात में था
2: जी।
3: आज हमारा मार्केट है इंटरनेशनल मार्केट है
2: जी।
3: तो हमें जो तैयार करना पड़ेगा वो सब इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। बाकी थीम हमारी वही है जो पहले थी।
2: तो जैसे आपने अपने पूर्वजों को करते हुए देखा और आप भी करना शुरू किए ब्लॉक प्रिंटिंग का व्यवसाय, लेकिन शुरुआत में ये व्यवसाय नहीं रहा होगा आपके लिए। शुरुआत में ये केवल एक खेल या एंजॉयमेंट या इसमें से सुख लेने का, जैसे एक छोटे बच्चे को होता है, ऐसा रहा होगा?
3: नहीं, ऐसा नहीं था। हमारे तो मेन रोजी रोटी ही यही थी
2: शुरू से ही यही थी। अच्छा,
3: किसी भी और काम के ऊपर, किसी नौकरी के ऊपर या किसी और बिजनेस के ऊपर हमारे बुजुर्ग ना तो कभी गए और ना कभी उन्होंने किया इस काम के अलावा। उन्हीं से हमने सीख करके इसको चालू रखा है पूरा।
2: ये बहुत गर्व की बात है कि जब कोई संस्कृति इस प्रकार से आसपास में अपने लोगों को संजो लेती है, जो संस्कृति को धरोहर की तरह संभाल के रखते हैं, तो वो संस्कृति सेफ रहती है और आगे भी बढ़ती है। लेकिन अक्सर हमने देखा है कई कारीगर, वो हमेशा हमें ये हम सुनते हैं उनसे कि उनके परिवार में उनके बच्चे चाहते नहीं कि वो कारीगरी करे, चाहे काथा स्टिचिंग हो या समझिए जरदोजी का काम है जिसमें काफी मेहनत है। तो उनके बच्चे सोचते हैं कि भाई ये हमारे पूर्वजों ने किया, अब हम ये नहीं करेंगे, हमें कोई दूसरे प्रकार का जॉब करना है, या इसमें हमें वो रोजी रोटी नहीं दिखती या वो इसमें संपन्नता नहीं दिखती जिसकी वजह से हम इसमें टिके, और वो धीरे धीरे उस कला को, उस प्रथा को छोड़ के आगे निकल जाते हैं या कहीं दूसरे रास्ते चले जाते हैं। ऐसे में वो कला अकेली हो जाती है या
3: लुप्त हो जाती है।
2: लेकिन ब्लॉक प्रिंटिंग की ये जो प्रथा आपने संभाली हुई है, आपके पूर्वज और आपके आने, आपकी सारी पीढ़ियां, आपके बेटे आपने जैसे बताया और आपके पोते, ये सभी इस चीज को कर रहे हैं। तो आपको ऐसा क्या लगता है, ये कौन सी बात है जो हर एक को जोड़ के रखी हुई है? क्या वो आपका प्यार है या इस कला के प्रति उनका प्यार?
3: कला के प्रति है सारा
2: जी।
3: उन्होंने ये कह दिया कि हम नौकरी नहीं करेंगे, हम यही काम करेंगे और इसी को संभालेंगे आगे। आपको एक मिसाल बताऊं, जब आपने बताया ना कि बच्चे आके दूसरे लाइन में चले जाते हैं, मैं आपको छोटी सी एक जयपुर की मिसाल बता रहा हूं। हमारे जयपुर के अंदर ब्लॉक में कर रहे थे, एक उनका एरिया था जयपुर में पुरानी बस्ती के नाम से, गोविंद राजू का रास्ता।
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: उसके अंदर वो सारी फैमिलियां काम करती थी। आज ये स्थिति हो गई कि एक भी फैमिली वहां पे नहीं है और एक भी फैमिली वो काम नहीं कर रही है। जो अभी आपने बताया कि बच्चे सोचते हैं कि इसमें कुछ नहीं है तो दूसरी लाइन में निकल गए सारे। आज हमारे जयपुर में जयपुर के जो ब्लॉक मेकर थे वो तो ये काम कर नहीं रहे, और जितने भी जो बाहर से जो लोग आए हैं, फरुखाबाद से, यूपी से, जितने भी जो लोग इसके कारीगर थे वो सब आकर के जयपुर, संगानेर, बगरू, सब जगह ब्लॉक का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये मुझे इसलिए याद आ गई कि जब आपने कहा कि ये रोजगार के लिए आने वाली जो बच्चे हैं वो उनको अडॉप्ट नहीं किया।
2: तो इसका मतलब कोई निष्ठा से अगर पथ पे चलता रहे तो रोशनी उसके सामने आई जाएगी।
3: बिल्कुल आएगी। आदमी अगर एक लाइन से और ईमानदारी से अगर चलता है तो उसको दुनिया कोई रोक ही नहीं सकती,
2: जैसे आपको नहीं रोक पाई, क्योंकि आज भारत देश ने आपको पद्मश्री से नवाजा है। इसका मतलब न केवल आपकी कला को लेकिन आपकी मेहनत और आपकी निष्ठा को भी नवाजा,
3: निष्ठा और ईमानदारी
2: को जी।
3: सबसे पहले ये देखना पड़ेगा मेरे हिसाब से
2: जी,
3: कि जब भी हम किसी ग्राहक को हम सामान देते हैं या उससे उसको देते कसजत बना के देते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें बेईमानी नहीं होनी चाहिए। अगर हम ग्राहक से हम बेईमानी करेंगे तो आप सोच, हम ये सोचते हैं कि हम भगवान से हम धोखा कर रहे हैं। ग्राहक तो भगवान है हमारा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो।
2: और बेईमानी करना मतलब खुद से भी तो धोखा करना है,
3: भगवान हमारे भगवान से धोखा कर रहे हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो ये काम मैंने तो जिंदगी में सीखा नहीं और ना मैंने किया, ना मैं जीवित हूँ तब तक करूंगा।
2: तो ये जो स्ट्रेंथ है, जो शक्ति है अंदर में सत्य पथ पे चलने की, ईमानदारी से कार्य को करते रहने की, ये आपका जीवन काल आपने बहुत लंबे समय से देखा है, बहुत आप अनुभवी भी हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि भाई ईमानदारी से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा इधर उधर कर लेते हैं, ऐसा लोगों के मन में आ ही जाता है। और लोग कहते हैं ईमानदारी से नहीं होता है, ऐसे भी डायलॉग सुनने को मिलता है।
3: करते हैं।
2: तो ऐसे में आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहें, क्योंकि आपने एक अनुभवी जीवन आपका है, आपने उस अनुभव के दौरान ईमानदारी के दम पे आज देश में आपने अपने कला का नाम रोशन किया है, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे?
3: मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो भी आदमी जिस क्षेत्र में है, चाहे वो आर्ट क्षेत्र में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे आईटी क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, अगर ईमानदारी से काम करेगा तो वो सफल रहेगा, दुनिया में कोई उसको रोक नहीं सकता। और जहाँ भी उसने ये सोच लिया मन के अंदर कि मैं इसमें कुछ गड़बड़ करके फिर मैं पैसा कमाऊंगा, उसको भगवान भी साथ नहीं देता उस आदमी की। कुछ समय मान लो आप, लंबे समय तक नहीं चल सकता वो आदमी, कोई भी किसी भी क्षेत्र का
2: जी। तो रामकृष्ण जी, आपको कितना समय हो गया हप्पा छिपा इस ब्लॉक प्रिंटिंग के सेवा में? मैं तो सेवा कहूंगा क्योंकि आप देश की सेवा कर रहे हैं इसके द्वारा।
3: सबसे पहली बात ये बताऊं कि हमें तो सबसे सीखने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता है ही नहीं। जब भी हम हमारी जो फैमिली में जो बच्चे पैदा होते हैं उनके खिलौने हमारे ब्लॉक है।
2: अच्छा, वो तो बचपन से फिर
3: बचपन से ही ब्लॉक से खेलते हैं वो
2: जी,
3: और उन्हीं से जैसे हम छपाई करते हैं वैसे वो सीखते हैं, मिट्टी में लगा लगा के सीखते हैं।
2: अच्छा,
3: तो ट्रेनिंग की तो हमें जरूरत पड़ती ही नहीं है। अगर कोई नया काम करेगा तो उसको ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ेगी, उसको अनुभव की भी जरूरत पड़ेगी। तो हमें तो जब पैदा हुए थे तब से ट्रेनिंग चालू हो जाती है हमारी, हमारी फैमिली में, तो ताकि हम कहीं उसमें खा ही नहीं सकते धोखा कहीं, और ना हमें धोखा दे सकता
2: जी।
3: आते हैं लोग देने के लिए, कई धोखा भी देने के लिए आते हैं, लेकिन हम समझ जाते हैं सारी चीजें।
2: तो जैसे बचपन से लेकर के जब कोई इस रास्ते पे चलता है तो पक्का ही हो जाता है, एकदम मंज जाता है।
3: बिल्कुल मंज।
2: लेकिन अगर कोई नया व्यक्ति समझो इंटरेस्ट से आता है आपके पास कि भाई मुझे ब्लॉक प्रिंटिंग में या ठप्पा छपाई में कुछ करना है, तो आप उसको क्या राय देते, कहाँ से शुरुआत करें?
3: नहीं, उसको क्या करना है, एक तो खरीद के बेचता है, एक तो एक बंदे तो वो आते हैं जो हमारे ग्राहक बन के आते हैं। सीखने के लिए कोई नहीं आता, सीखने के लिए जैसे निफ्ट है बच्चों को सिखाने के लिए
2: जी,
3: लेडी यूनिंग कॉलेज है दिल्ली, और भी कई युद्धा कॉलेज है, ये सब जो बच्चे आते हैं वो देखते हैं सीखते हैं
2: जी।
3: सीखने से एक ही लाभ है हम लोगों को जो हाथ से काम करने वाले हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग का काम करने वाले हैं, कि आगे चल करके जो बच्चे आज उस चीज को देख रहे हैं वो हमारे ग्राहक हो जाते हैं
2: जी। ये तो बहुत अच्छा हो गया,
3: वो हमारे ग्राहक होंगे पक्का। अगर 100 बच्चे देखते हैं तो 10 तो 100% हमारे ग्राहक होंगे, वो भले मेरे से नहीं खरीदे, आपसे खरीदे या और किसी से खरीदे,
2: लेकिन
3: उस कला के कला वो प्रेमी
2: हो जाते हैं। बिल्कुल, उस कला के वो प्रेमी
3: हो जाएंगे। तो इससे रोजगार बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, और यही काम हो रहा है अभी
2: जी।
3: आज भी जो हमारे पास जो निफ्ट से बच्चे आते हैं, कई ने अपनी दुकानें खोल ली है, कई ब्यूटी खोल रखी है, वो सब आती है, मैं हम आपके आके गए थे और हम देख के गए थे, आज मैंने ये शॉप खोल ली, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, सब चीजें चाहिए
2: जी।
3: और वो भी आप ही की चाहिए मुझे।
2: तो इसका मतलब कोई भी कहीं से भी शुरुआत कर सकता है, चाहे वो सीख करके शुरू करे, चाहे वो इसके मार्केटिंग चेन में कहीं पर अपना रोल देखे, लेकिन कहीं ना कहीं ब्लॉक प्रिंटिंग, जो हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग है, जिसमें हाथों के द्वारा जो भाई बहने हैं वो हाथों के द्वारा किसी ठप्पे के डिजाइन को छापते हैं कपड़े पे
3: जी
2: जी, और इसके द्वारा फिर उस कपड़े को, चाहे वो बेडशीट हो या साड़ी हो या कुर्ता हो या जिस भी तरीके के,
3: एक्सपोर्ट भी करते हैं,
2: ये बनाते हैं। बाकी इसमें जनरली जो मोटिव्स आप यूज करते हैं, जो डिजाइन यूज करते हैं, वो कौन कौन सी चीजें होती हैं?
3: डिजाइन कुछ तो हमारे ट्रेडिशनल है,
2: जैसे कि
3: जिनके नाम भी आज भी परमानेंट ही है, जैसे हमारी 9-10 बूटियां हैं जो पहले देहात में चलती थी, वो सारा घाघरा पहनती थी औरतें, शायद आप देखा
2: जी, देखा जी,
3: मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो घाघरा पहनती थी पहले। हमारा मार्केट सिर्फ देहात के लिए था, तो उसमें जो बूटियां वो लिमिटेड होती थी, वो भी कास्ट वाइज,
2: मतलब वो बूटे और उस कपड़े पे छपे बूटों को देख के,
3: कलर और बूटी दोनों कास्ट वाइज छपाई करते थे हम लोग। तो आज भारत सरकार ने जो बना रखा है, ये SC है, ये OBC है, ये ST है, ये जनरल है, उसी हिसाब से पहले हम लोग, हमारे चार रंग थे पहले,
2: कौन कौन से?
3: एक तो हरा धनिया
2: जी,
3: एक तो आसमानी जो ब्लू रंग जिसको बोलते हैं इंडिगो,
2: तो नील से निकालते थे,
3: नील से,
2: और हरा धनिया हरे धनिया से ही निकालते थे,
3: इंडिगो और हल्दी से,
2: अच्छा
3: हरा हो जाता
2: था। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल,
3: दोनों को मिक्स करते हरा हो जाता
2: है,
3: तो उसको बोलते थे हमारी भाषा में हरा धनिया।
2: हरा धनिया जी।
3: एक होती थी जमर्दी,
2: जमर्दी मतलब जामुनी,
3: जामुनी
2: हाँ जी।
3: तो मतलब एक होती पीलीमेंट,
2: हाँ पीलीमेंट किससे?
3: पीलीमेंट होती थी वो अनार के छिलके से बनती थी।
2: ओके।
3: अनार के छिलका, हल्दी, उसमें ऑयल डालते थे, उसके बाद फिर हाथ से उसको पुताई करके फिर करते, चार ही रंग होते थे, चारों रंग कास्ट वाइज थे सारे, उसमें ब्लॉक भी अलग था। ये ऐसा नहीं है कि उसमें कि जैसे ब्लू में ब्लॉक हमने लगा दिया तो हम ग्रीन में लगा दी ब्लॉक, ऐसा नहीं था उसमें, सब चीज कास्ट वाइज, ब्लॉक, कलर दोनों।
2: तो आज भी वैसा करते हैं या कुछ अलग हो गया है अभी?
3: आज वो ग्राहक भी नहीं है हमारे पास, और बनाते तो है लेकिन उसके अब यूज दूसरा हो गया
2: जी,
3: कुर्तियां बनाने लग गए, पैंट बनाने लग गए लोग।
2: तो जैसे आपने बताया कि 9-10 फुटिया, ये एक पुराना कास्ट है आपका, मोटिफ है, ऐसे और कुछ कुछ नाम बता सकते हैं?
3: हाँ, बूटे को नाम मैं बता दूंगा सारा। देखो, एक तो केड़, एक पतासी, एक बेवड़ा।
2: अच्छा, बेवड़ा क्या है?
3: एक बुधोली।
2: बुधोली क्या है? तो ये सारे नाम ही इतने इंटरेस्टिंग है, मैं समझता हूँ हमारे श्रोता जो है वो जरूर ब्लॉक प्रिंटिंग के कपड़े पहनते भी होंगे या फर्निशिंग, होम फर्निशिंग में यूज भी करते होंगे, लेकिन हो सकता है उनको इनका नाम ही नहीं पता।
3: बूटियों का नाम पता नहीं होगा, क्योंकि जो भी हमारे जो ग्राहक भी आते हैं, वो जो होलसेलर भी जो आते हैं, वो कभी बूटियों का नाम नहीं पूछते, वो सिर्फ डिजाइन नंबर लिखते हैं अपने और उसी हिसाब से माल खरीदते।
2: तो कोई ऐसा किस्सा आपके जहन में है जहाँ पर किसी व्यक्ति को आपके डिजाइन से प्यार हो गया और डिजाइन को वो उस नाम से जानता हो या याद करता हो, आपके जहन में ऐसा कोई व्यक्ति है?
3: पहले थे,
2: अच्छा
3: अभी नहीं है। पहले हम जो देहात में बेचने जाते थे तो हमारे वो कपड़े के दलाल रहते थे बेचने वाले, वो ग्राहक उनके पास आते थे, वो हमसे हाथ के हाथ खरीद के उनको देते थे
2: जी।
3: तो वो सब जानते थे ये बुदोली की चाहिए या जमर्दी में चाहिए या बेवड़े में चाहिए या केड़ की चाहिए या पतासी चाहिए, एक पत्ती की और आती है, पत्ती की आती है, एक गोभी की आती है, एक आकड़ा आता है, ऐसे 9-10 बूटियां हैं, वो लोग सब जानते थे, खरीदने वाले भी जानते थे और हमारे जो बीच के दलाल थे वो भी जानते थे। आज ऐसा कुछ नहीं है, आज पूरा ही पैटर्न बदल गया।
2: लेकिन फिर भी आप जब कह रहे हैं तो इतना इंटरेस्टिंग लगता है ये सुनने में, मुझे ऐसा लगता है कि या तो आपको मास्टर क्लास लेना चाहिए या कुछ करना चाहिए जिससे ये प्रथा भी रहे, ताकि हमको हमारा धरोहर थोड़ा याद रहे। इसमें इतना इंटरेस्ट है, इतनी अनोखी अनोखी बातें हैं कि ये सुनते रहो तो ऐसा लगता है समय कहाँ चला जाए, पता ही नहीं चलता। लेकिन ये चीजें
3: नहीं, इसको संस्थाएं जो बड़ी बड़ी है जो काम कर रही है उनको एक सब्जेक्ट इसका भी रखना चाहिए
2: जी, बिल्कुल,
3: जिससे दो काम होगा। एक तो देखो रोजगार मिलेगा लोगों, सबसे पहले बात जो हमारे देश में सबसे बड़ी एक समस्या जो बनी हुई है
2: जी,
3: उसमें हम लोग हेल्प कर सकते हैं सरकार की। दूसरी बात मार्केटिंग की, मार्केटिंग होगी उनको रोजगार मिलेगा।
2: ये कितनी जबरदस्त बात है कि आप कहने को आपका लाइफ सेटल है लेकिन फिर भी आप इतने अच्छे अच्छे रोजगार के अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, समझा रहे हैं जिससे दूसरों को का लाइफ सेटल हो सके, ये आपके उदार दिल का प्रतीक है।
3: जी, रोजगार तो भारत को चाहिए, भारत में आज कितनी बेरोजगारी फैली हुई है, लोग कह रहे हैं, देख भी रहे हैं हम लोग, लेकिन इससे जितनी भी बड़ी जो संस्थाएं हैं, चाहे सरकार के संबंधी हो, चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी हो, उनको एक सब्जेक्ट इसका रखना चाहिए। चाहे 2 दिन का रखे या 4 दिन का रखे, या तो सेमिनार रखे या उसको बाई डेमो के हिसाब से रखे और लोगों को देखे।
2: जी, और मैं तो समझता हूँ कि मार्केटिंग में भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोग जिस चीज को खरीद रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा जाने।
3: बिल्कुल,
2: किसने बनाया, ये क्या चीज है, ये मैं क्या ले रहा हूँ, व्हाट आई एम इन्वेस्टिंग इन, ये उनको पता होना चाहिए।
3: ये सारी संस्थाएं कर सकती है।
2: जी,
3: हम लोग कारीगर हैं, कारीगर हम लोग इतना
2: आपके पास समय भी नहीं होता होगा, ये
3: पैसा भी नहीं लगा सकते। देखो, मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसा भी नहीं लगा सकते, सरकार मदद भी करती है, लेकिन सरकार एक अपने उसमें दायरे में
2: जी,
3: दायरे से ऊपर जा नहीं सकती सरकार। प्राइवेट जितने भी जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, भारत में बहुत ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वो अगर सही ढंग से तरीके से इसको करना चाहे तो मैं कह रहा हूँ कि खेती के बाद में, एग्रीकल्चर के बाद में दूसरा नंबर हमारा ब्लॉक प्रिंटिंग का, टेक्सटाइल का आएगा।
2: भाई साहब, मुझे यहाँ पर एक चीज जानना था कि जैसे चमक दमक की दुनिया है, ठीक है, लोग डिजिटल प्रिंटिंग, केमिकल प्रिंटिंग, उसके कलर्स, उसके चकाचौंध, उसकी ब्राइटनेस, इन चीज़ों की वजह से लोग बहुत जल्दी उसको ले लेते हैं, प्लस वो सस्ते भी पड़ते हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग चाहते तो हैं कि भाई वो ब्लॉक प्रिंटिंग के प्राकृतिक रंग से निकले हुए चीज़ों को खरीदें, लेकिन दाम और ये कलर्स का जो ब्राइटनेस है, ये सब में कहीं ना कहीं वो कन्फ्यूज हो जाता है कि करे तो करे, क्या करें।
3: पिछले 20 साल से
2: जी
3: लोगों का मेंटेलिटी ये बन गई है, यूज एंड थ्रू,
2: बस इस्तेमाल करो और फेंक दो,
3: इस्तेमाल करो और फेंक दो। तो इसके लिए ब्लॉक प्रिंटिंग नहीं जा सकती उसमें।
2: जी जी,
3: जैसे डिजिटल प्रिंटिंग है, स्क्रीन प्रिंटिंग है, वो बहुत सस्ती पड़ती है और हमारे भारत में महंगा खरीदने वाले बहुत कम है।
2: इस मानसिकता को कैसे बदला जाए कि यूज करके फेंकना नहीं है, इस्तेमाल करके फेंकना नहीं है, क्योंकि ये मानसिकता जो है भाई साहब, मैंने देखा है कि सबने देखा होगा, हमारे रिश्तों में भी आ गया है कि हम रिश्तों में भी किसी से कुछ लेते हैं और फिर उसको किनारे कर देते हैं, और ये चीज़ हम हमारे जीवन में, लाइफस्टाइल में, खरीदारी में भी कर रहे हैं, हम वो चीज़ खरीदते हैं, यूज करते, फेंक देते हैं। इस मानसिकता को कैसे बदला जाए?
3: नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि लोगों की मेंटेलिटी ऐसी बन गई यूज एंड थ्रू। जैसे आज किसी ने ब्लॉक प्रिंटिंग के अंदर 100 रुपये खर्च कर दिए
2: जी,
3: तो वो 100 रुपये में 4 लेगा अभी और हर वक्त वो नया पहनेगा, उसको उससे कोई मतलब नहीं है कि ये डिजिटल है, कलर कौन सा है, मेरा शरीर को हानि पहुंचाएगा, लाभ पहुंचाएगा, ये उसको पता नहीं है। वो तो एक बार पहनना है और उसको फेंकना है, ये मेंटेलिटी। और हमारे विदेशों से काफी मेंटेलिटी आ गई लोगों में अभी, अगर हमारी ये मेंटेलिटी नहीं हो, मेरा ख्याल है काफी इसमें रोजगार की व्यवस्था हो सकती है।
2: तो
3: दूसरी बात एक और बताऊं आपको कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर सारे तो पैसे वाले नहीं है,
2: हर प्रकार के लोग हैं। जी,
3: अब मैं 500 रुपये रोजगार कमाता हूँ तो मैं 5,000 की बेडशीट नहीं खरीद सकता, मैं 100-150 रुपये वाली बेडशीट ही खरीदूंगा, क्योंकि उसको बेडशीट चाहिए काम को बिछाने के लिए। 5,000 का वही खरीदेगा जिसके 1,00,000 रुपये रोज की कमाई है, वो 5,000 की बेडशीट खरीद लेगा। तो हमारे भारत के अंदर सब तरह के लोग हैं और सब तरह की प्रिंटिंग होती है। जो इसको जानने वाले हैं वो तो इसी को खरीदते हैं, कई की मजबूरी है, पैसे नहीं है, ये भी सब बड़ी समस्या आती है ये भी। तो डिजिटल आजकल चल रहा है तो उनके पीछे चल रहा है डिजिटल आज, जिनको जेब अलाउ नहीं करती। अब मैं रोज ही 500 रुपये कमाता हूँ, मुझे बेडशीट तो शाम को सोने के लिए चाहिए ना।
2: हाँ जी, बिल्कुल,
3: कहाँ से आएगी।
2: तो कई बार ऐसा होता है कि चाहना है कि इस चीज को आगे बढ़ाए, लेकिन मजबूरी की वजह से।
3: जी, मेरी जेब में पैसा नहीं है तो मैं कहाँ से कर दूंगा 1,000 रुपये की बेडशीट। 500 रुपये तो रोज कमाता हूँ, उसमें मेरे 2 बच्चे हैं, 1 बीवी है, उनको सबको रोटी चाहिए
2: जी,
3: दोनों टाइम चाहिए रोटी, कहाँ से लाएगा वो।
2: और जो डिजिटल या जो फैक्ट्री से जो डिजाइन निकलते हैं वो इतने फास्ट निकल जाते हैं, जो कि एक टाइम सप्लाई चेन का होता है, उसमें उनको जल्दी मिल रहा तो वो ले लेते हैं,
3: जल्दी मिल जाता है, उसके बाद में बहुत सस्ता मिल जाता है। तो अभी जो शहरों में ये कि रिवाज नया आ गया यूज एंड थ्रू वाला, जैसे अमेरिका में पहले किसी जमाने में था एक बार भी यूज करो और फेंक दो, अब हिंदुस्तान में भी आ गया है, एक बार यूज करो उसके बाद फेंक दो।
2: लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति में ये कभी नहीं था,
3: भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं था कभी ना, हमने किताबों में पढ़ा है
4: ना हमारे
3: सुना है ना हमारे बुजुर्गों ने कहा है।
4: जी जी, तो ये आने का कारण क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है आपके मायने में?
3: मेरे मायने में तो एक ही लगता है कि हम लोग आबादी हमारी जो है इस पे कंट्रोल होना चाहिए।
4: बिल्कुल, ये बहुत जबरदस्त बात कही आपने कि आबादी जहाँ ज्यादा होगी वहाँ पर संसाधन कम होंगे,
3: संसाधन कम होंगे
4: के पीछे फिर आइडियाज लोगों के जाने लगेंगे, फिर ये यूज एंड थ्रो वाली जो
3: ये समस्या खत्म हो जाएगी
4: वो हमने ले ली।
3: तो इस पे अगर कंट्रोल आप और हम तो कर नहीं सकते, सरकार को ही करना पड़ेगा इस चीज के लिए कि जब तक आबादी कंट्रोल नहीं होगी, क्योंकि अभी दो खुद हैं उसके चार बच्चे हो गए ये मान के चलिए आप, चारों को पढ़ाई के लिए जगह चाहिए, काम करने के लिए जगह चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, खाने के लिए रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, कमाने वाला एक है, कैसे चलेगा? तो इस पे अगर कंट्रोल हो जाए बेरोजगारी पे कंट्रोल हो जाएगा, ये मेरा मानना है।
4: मुझे इसमें एक चीज आपको पूछना था, जैसे आपने अभी ये चीज बात कही कि ये जो कुछ कुछ अभी हम देख रहे हैं हमारे आज के भारतीय समाज में जो बदलाव आया है वो कभी था नहीं यहाँ पर, कहीं और से आया है, और आपका काम आपकी कला आपको केवल भारत में ही नहीं भारत के बाहर भी आपको लेके जाती है। तो जब आप भारत में भी घूमते हैं और जब बाहर भी आप जाते हैं, दोनों जगह में जब आप लोगों से मिलते हैं, दोनों अलग अलग संस्कृति सभ्यताओं से आप रूबरू होते हैं, तो ऐसी कौन सी बात है आपको लगता है जो भारत को भारत बनाती है?
3: भारत का कल्चर जो है दुनिया में कहीं नहीं है, वो पूरा वर्ल्ड के अंदर भारत का जो कल्चर है सबसे बढ़िया लगा मुझे।
4: किस कारण से कुछ बता सकते हैं?
3: सभी चीजों में, रहना में, खाने में, मतलब व्यवहार में, हर चीज के अंदर हमारे हर चीज की एक सभ्यता की बात है। हम भगवान को मानते हैं, वो भगवान को भी नहीं मानते। हम ईश्वर को जाते हैं, सुबह मंदिर जाते हैं, मंदिर दोग दिखाते हैं, उनके यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है।
4: इसका मतलब कहीं ना कहीं जो सभ्यता है वो थोड़ा वो आध्यात्म और सभ्यता की वजह से संस्कृति जो है भारत की वो थोड़ी अलग है।
3: अलग है
4: जी,
3: वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मैं भारत सरकार ने मुझे भेजा है इसके डेमो के लिए, उसमें मैं गया था, क्या नाम अपने जो है एक्सपोर्ट, क्या नाम होते हैं एक्सपोर्ट यूनिवर्सिटी है ना वो?
4: हाँ जी हाँ जी।
3: मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ आदमी
4: लेकिन आप ज्ञानी हैं, ज्ञानी का पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होता।
3: पढ़ा नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी, चार क्लास पढ़ी है मेरे पिताजी ने, इससे अलावा मुझे फिर मैंने ही छोड़ दिया।
4: जी, अनुभवी और ज्ञानी को पढ़ाई के दायरे में बांधा नहीं जा सकता। आप
3: वहाँ भी जब यूनिवर्सिटी वगैरह में लेक्चर वगैरह जो रखते थे तो मैं तो हिंदी में ही बात करता था, क्यों मुझे इंग्लिश आती नहीं है, मारवाड़ी आती है खाली।
4: तो उन लोगों को जब आप भारत की ये सभ्यता और ये कला सिखाते हैं,
3: तालियां बजा के रह जाते हैं।
4: अच्छा,
3: वो इसके अलावा कुछ नहीं करते वो अपनाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है उनको,
4: मेहनत है इसमें बहुत।
3: हाँ, वो तालियां बजा के खूब शाबाशी देके चले जाते हैं, ताकि वो उसकी गहराई में तक जाते कि नहीं जाते वो जाने।
4: तो ये जब भारत की सभ्यता कला को आपके द्वारा वो जो प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप उस समय आईना है भारत की कला का, और जब वो उस चीज को सुनने देखने के बाद तालियां बजाते हैं, तो आपको कैसा फील होता है?
3: फील तो होता है कि अच्छा है हमारा काम, लेकिन वो उसको यूज करे तब ना। किसी की शक्ल देख के मैंने तालियां बजा दी, ठीक है, लेकिन उससे हमारा वो रोजगार तो नहीं बढ़ा ना।
4: जी,
3: रोजगार तो तब बढ़ेगा अगर जब वो हमारा सामान खरीदे ताली बजा के, तब उसको रोजगार मिलेगा पीछे।
4: जी,
3: तालियां बज जाती है, तालियां बज के वो हलो सलो हो जाती है, जैसी आराम और क्या।
4: ये बहुत अच्छा बताया आपने। मुझे एक और सवाल इसमें पूछना था कि आपने बताया पहले चार रंग यूज होते थे, अभी भी आप प्राकृतिक कलर ही यूज करते हैं?
3: प्राकृतिक कलर भी यूज कर रहे हैं, पूरे हमारी थीम वही है काम करने की।
4: जी,
3: लेकिन अब नए रंग और आ गए,
4: तो वो नए रंग भी आप प्रकृति से
3: एजो फ्री है, एजो फ्री वाले रंग है जो हमारे प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाए।
4: अच्छा जी,
3: वो दो तीन रंग यूज करते हैं हम, बाकी हमारा 80% नेचुरल ही है, हमारी शुरुआत ही नेचुरल से होती है।
4: जी,
3: जब हम ब्लॉक पेंटिंग शुरू करेंगे तो उससे सबसे पहले उसमें हर्डे लगती है, हर्डे नाम सुना होगा?
4: हाँ जी, हर्डे
3: हर्डे की डाई होती है, उस पे ही हमारा काम चालू होगा, नहीं चालू होता ही नहीं।
4: अच्छा, इसमें एक और चीज जानना है, मैं बड़ा उत्सुक हूँ और मैं समझता हूँ बाकी श्रोता साथियों को भी सुनने का मन करता होगा कि कई जैसे भारत के राज्यों में भी अलग अलग प्रकार का ब्लॉक प्रिंटिंग होता है, जैसे दक्षिण भारत में अलग प्रकार का ब्लॉक प्रिंटिंग होता है, बंगाल साइड में अलग प्रकार का ब्लॉक प्रिंटिंग होता है, फिर भारत के ही कनेक्शन में जैसे इंडोनेशिया आदि है वहाँ पर अलग प्रकार का ब्लॉक प्रिंटिंग होता है। तो जो ब्लॉक प्रिंटिंग आप मतलब आपका जो छिपा समाज है वो कर रहा है, वो उसमें क्या खासियत है, कौन सी अलग बात है जो बाकी छिपा से वो उसको अलग बनाती है?
3: देखिए जो ब्लॉक प्रिंटिंग का जो काम है पूरे भारत में जहाँ भी हो रहा है, वो सबसे पहले तो इसको पानी चाहिए। आप कभी भी आप सर्वे कर लेना कि जो छपाई का काम करने वाले, चाहे वो हिंदू छिपा हो चाहे मुसलमान छिपा हो, वो सब नदी के किनारे बसे हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी जाकर देख लो, मछलीपट्टनम में होता है, नदी के किनारे है, बाग है मध्य प्रदेश में, वहाँ छपाई होती है, वो नदी के किनारे है, हम लोग नदी के किनारे है, जयपुर जो छपाई होती थी वो नदी के किनारे होती थी, जहाँ भी छोटे गाँव में भी अगर छपाई होती थी वो सब नदी के किनारे होती थी। अब नदियां नहीं रही, नदियां सब सूख गई, पानी नहीं है, राजस्थान में पानी की बहुत बड़ी कमी है
4: जी।
3: तो इसलिए हमारा जो छपाई का जो उद्योग है ये भी काफी चपेट आया हुआ है इस समय पानी की वजह से।
4: तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि एक तो पानी की कमी भी है, दूसरा छपाई करने के बाद कपड़ों को धोने से जो वो कलर्स निकलते हैं वो कहीं ना कहीं नुकसान भी करते हैं उस वाटर बॉडी को।
3: नहीं, ऐसा नहीं है, हम जो हमारे जो कलर धुलाई का जो निकलता है उसमें, उससे खेती होती है।
4: अच्छा,
3: एग्रीकल्चर होती है, उसको खाद देने की जरूरत नहीं पड़ती उसको।
4: तो ये बहुत बड़ी बात आपने बताई कि जो कलर्स आप यूज कर रहे हैं, जो प्राकृतिक रंग आप यूज कर रहे हैं, उससे जमीन को बल मिल रहा है, खेती करने में मदद होता है। तो ये तो मैं समझता हूँ कई छपाई के उद्योग अगर सुन रहे हैं इसको और समझ रहे हैं तो उनको भी ये चीज को समझना चाहिए कि भाई हम कलर्स में वैरायटी लाएं, चेंज करें।
3: और नेचुरल से आती है सारी चीजें
4: जी,
3: सब चीज भगवान की दी हुई है। सोच आपका बदलना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए।
4: ये जबरदस्त बात कही आपने कि हर चीज हमारे सामने है, बस सोच होनी चाहिए
3: कि मुझे क्या चाहिए
4: जी।
3: सब सजा हुआ है बाजार, अब ये आपको सोचना है या मुझे सोचना है कि मुझे चाहिए क्या।
4: बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही रामकिशोर जी की, सोच से ही दुनिया बनती है,
3: बदलती है, बदल जाती है।
4: बिल्कुल बिल्कुल, बनती भी और बदलती भी
3: जाती है।
4: बहुत अच्छा। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हमारे जो भी श्रोता साथी सुन रहे हैं उनको आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे?
3: उनको तो मैं एक ही मैसेज दूंगा कि वो हमारे जो ब्लॉक प्रिंटिंग का है वो कपड़ा खरीदे ताकि लोगों को रोजगार मिले। और सभी से हाथ जोड़ के मेरी विनती है ये, इस रोजगार को आगे बढ़ाए हमारे धंधे को, और इससे कई लोगों को रोजगार मिलेगा। बगरू में इस रोजगार में करीब 40,000 लोग लगे हुए हैं।
4: बहुत बड़ी संख्या है तो।
3: प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों में
4: जी।
3: तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जहाँ भी आप ब्लॉक प्रिंटिंग का नाम लेते हो, चाहे बाग का हो, चाहे मछलीपट्टनम का हो, चाहे गुजरात का हो, कहीं का भी हो, लेकिन खरीदे ठप्पा छपाई वाला ही। डिजिटल तो बहुत हो गया, डिजिटल तो ठीक नहीं है।
4: तो साथियों, आपने सुना रामकिशोर जी की आप सबसे ये आग्रह था और सबके प्रति ये मैसेज भी था कि जीवन में कम से कम एक ऐसा कपड़ा, एक वस्त्र या एक छोटा सा कपड़ा भी आप ब्लॉक प्रिंटिंग का जरूर खरीदें, क्योंकि इससे ना केवल आप अपने आसपास के लोगों में उस कला के प्रति जागृति ला रहे हैं, लेकिन आप अपने इस छोटे से इन्वेस्टमेंट से किसी की लाइफ को बहुत बड़ी शक्ति दे रहे हैं और साथ ही साथ देश की धरोहर को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ ये समय है सोचने का कि आपका नेक्स्ट कपड़ा जो आप खरीदने वाले हैं क्या वो ब्लॉक प्रिंटिंग का है, और जरा ध्यान से इस पे विचार कीजिएगा, थोड़ा स्टडी कीजिएगा। आज गूगल है आपके पास, और नहीं तो रेडियो मधुबन के थ्रू हम आपको कुछ ना कुछ ऐसी जानकारियाँ देते ही रहते हैं, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस चीज़ में मैं अपना पैसा, अपना इंटरेस्ट लगाता हूँ, अगर वो किसी के लाइफ को अच्छा बना सकती है तो वो बहुत श्रेष्ठ इन्वेस्टमेंट है। तो इसी नोट पे रामकिशोर जी, मैं आपसे एक रैपिड फायर राउंड खेलना चाहूंगा जिसमें मैं आपको सवाल पूछूंगा और उसको आपको एक शब्द में या एक लाइन में जवाब देना है। ठीक है, आप शुरू करें। शांति क्या है आपके लिए?
3: शांति परमात्मा से शांति मिलती है मुझे तो।
4: बहुत सुंदर। सेवा क्या है?
3: सेवा जो मैं कर रहा हूँ, देश की सेवा और मेरे परिवार की सेवा जो मैं कर रहा हूँ, वो मैं उसको सेवा ही मानता हूँ।
4: मतलब जो कर्म है वही सेवा है। बहुत बढ़िया। मतलब हर कोई जो कर्म कर रहा है अगर निष्ठा से कर तो सेवा ही
3: कर रहा है।
4: बहुत बढ़िया। देश क्या है आपके लिए?
3: देश,
4: हाँ जी,
3: देश तो जहाँ पैदा हुए वो हमारा देश है, इस देश में हम पैदा हुए हैं वो हमारा है,
4: अपनापन, देश मतलब अपनापन।
3: हम जब भी बाहर जाते हैं तो सब हमें ये लगता है कि हम हिंदुस्तान के अंदर कब जाएंगे वापस।
4: हाँ, खींचता है देश।
3: जिस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं उसी से अगर हम नहीं जा सकते कहीं और,
4: बहुत सुंदर,
3: उसी मिट्टी में हमें रहना है।
4: ये तो देश का आपने बहुत सुंदर जवाब दिया कि देश मतलब जहाँ बार बार वापस आना हाँ। ही है। भारत क्या है आपके लिए?
3: भारत एक बहुत अच्छी कंट्री है हमारी, जिसके अंदर कई विविधताएं हैं, वहाँ पे कई व्यापार है, कई हर क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं, और हमारी जो संस्कृति है वो सबसे बड़ी एक मजबूती का है हमारा भारत।
4: और ठप्पा छिपाई क्या है?
3: ठप्पा छिपाई तो एक रोजगार है जो एक कमेटी के करती है, पूरा उससे उनका घर का पालन पोषण होता है।
4: ठप्पा छिपाई मतलब एक अन्नदाता है,
3: अन्नदाता है हमारा, जैसे काश्तकार के लिए अन्न है वैसे हमारे लिए ये अन्न
4: जी। आपका ठप्पा छिपाई में जितने भी ठप्पे आप यूज करते हैं डिजाइन्स के, आपका फेवरेट मोटिव कौन सा है?
3: हमारा फेवरेट मोटिव तो जो हमारी जो बूटियां हैं पुरानी वही है ज्यादातर।
4: इसमें भी फिर भी कोई एक ऐसी होगी जो आपके दिल के सबसे नजदीक है?
3: पताशी।
4: पताशी, बहुत बढ़िया।
3: और पताशी की मैंने भी मेरे उसमें वेबसाइट पे डाल रखी है मैंने
4: जी। आपका वेबसाइट बता सकते हैं?
3: दे दूंगा मैं आपको
4: जी। कार्ड जी, तो आपके वेबसाइट पे जाकर के हम पताशी जरूर देखना चाहेंगे। और आखिरी सवाल, राम किशोर छिपा डेरावाल कौन है?
3: ये

0: तो इस देश को अपनी कला से पूरे विश्व पटल पे आपने जो छापा है, इसके लिए पूरा देश आपका आभारी है। रेडियो मधुबन आपका आभारी है, ब्रह्मा कुमारी का परिवार आपका आभारी है, और हम ये सदा याद रखेंगे कि आप देश को अपने हाथों से विश्व के वस्त्र पे छाप रहे हैं।
1: कोशिश पूरी मैं यही कर रहा हूँ
0: जी,
1: कोशिश मेरी पूरी यही है, लेकिन होना क्या है आगे वो तो ईश्वर ही जाने।
0: आपका जो मेहनत है और हम सबकी दुआएं आपके साथ है, ये हमेशा आपके साथ ही रहेंगी और आप आगे से आगे बढ़ते
1: अभी तक
0: रहेंगे।
1: तो जितना भी हमने जो सोचा है उतना कोशिश करके पूरा किया है
0: जी,
1: लेकिन अब आगे क्या होगा वो तो ईश्वर ही जानता है कि क्या करना है उसको
0: जी,
1: हमारे साथ
0: जी,
1: हमें उसके साथ क्या करना है
0: जी,
1: जैसे वो चलाएगा वैसे चलना पड़ेगा।
0: बहुत बढ़िया। तो श्रोता साथियों, आपने सुना कि हमारे श्री राम किशोर छिपा जी, जो कि पेशे से एक ब्लॉक प्रिंटर हैं, लेकिन केवल अपने ब्लॉक प्रिंटिंग की इस विधा को उन्होंने इतने दिल से, इतने शिद्दत से निभाया कि भारत देश ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा। और उनकी ये कला न केवल देश में नौजवानों को अलग अलग कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में प्रेरणा देती है, लेकिन विदेशों में भी जा करके भारत का नाम वो रोशन करते हैं। वहाँ वो लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं और जिसको सुनने के बाद विदेश में लोगों को समझ में आता है कि भारत की संस्कृति गाँव में बसती है और गाँव के लोग भारत को यशस्वी बनाने में एक कदम भी पीछे नहीं। ऐसे हमारे यशस्वी राम किशोर छिपा डेरावाल जी को आज हमने हमारे स्टूडियो में सुना। ऐसे ही एक नए हस्ती के साथ हम दोबारा आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए 90.4 FM रेडियो मधुबन। यशस्वी भारत के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके नए नए लोगों से मिलना और उनसे प्रेरणा लेकर के भारत को यशस्वी बनाने में अपना योगदान जरूर निभाना, ये हमारी आप सबसे विनती रहेगी। फिर मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।

नमस्कार श्रोताओं, जय श्री कृष्णा। आप सुन रहे हो रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका हम सफर आरजे संजय। स्वागत है आपका हमारी श्रृंखला श्री कृष्ण की 16 कलाएं के 7वें अध्याय में। आज हम जानेंगे वह अद्भुत कला जिसे कहते हैं वाद्य माधुरी। यह वह माधुरी है जिसमें श्री कृष्ण के वाद्य यंत्र की ध्वनि प्रेम भक्ति आनंद का अद्भुत संगम बन जाता है। जब काना बांसुरी बजाते हैं तो केवल स्वर ही नहीं बल्कि हृदय की गहराई को तक प्रेम की धारा बहने लगती है। मृदंग की लय वीणा की मधुरता और अन्य वाद्यों का संगम सब मिलकर भक्ति का ऐसा वातावरण रचते जिसमें संपूर्ण वृंदावन डूब जाता है। यही है वाद्य माधुरी, जहाँ वाद्य यंत्र केवल ध्वनि नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का साधन बन जाता है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं एक सुंदर और प्यारा श्री कृष्ण का गीत।

श्रोताओ जय श्री कृष्णा। श्रोताओ श्री कृष्ण की सातवीं कला वाद्य माधुरी का परिचय होना अपनी जीवन सफर में बहुत ही जरूरी है। कृष्ण की बांसुरी केवल एक वाद्य नहीं था, वह उनके हृदय की आवाज थी। जब ये बांसुरी बजाते तो वृंदावन का हर जीव, गोपी, ग्वाल, पशु पक्षी उस स्वर में खो जाता। उनकी बांसुरी की तान आत्मा को ईश्वर को जोड़ने का माध्यम बन जाती। यही है वाद्य माधुरी का साथ, जहाँ स्वर केवल संगीत नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का दिव्य संदेश बनकर संपूर्ण सृष्टि को आलोकित करता है। तो श्रोताओ सुनते हैं एक मधुर भक्ति गीत।

जय श्री कृष्ण श्रोताओं, भागवत पुराण में वर्णन आता है कि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो गोपियां अपने घर आंगन का काम छोड़कर उनकी ओर दौड़ पड़ती, गाय चरना छोड़कर उनकी ध्वनि की ओर खींच जाती। यह वाद्य माधुरी हमें बताती है कि ईश्वर की ध्वनि हर जीव को अपनी ओर आकर्षित करती है। राधा के लिए तो कृष्ण की बांसुरी आत्मा की पुकार थी, प्रेम का वह स्वर जो सीधे हृदय को छू लेता है। यही है वाद्य माधुरी का सार, जहाँ संगीत केवल ध्वनि नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का दिव्य सेतु बन जाता है। तो दोस्तों, सुनते हैं और एक प्यारा सा सुंदर गीत।

जय श्री कृष्ण श्रोताओ, वाद्य माधुरी हमें ये सिखाती है कि जीवन भी एक वाद्य है। जब हम अपने मन को शुद्ध करते हैं तो ईश्वर की ध्वनि उसमें गुंजने लगती है। कृष्ण की बांसुरी हमें ये संदेश देती है कि सच्चा संगीत वही है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे। यह केवल मनोरंजन नहीं बल्कि साधना है, जहाँ हर स्वर भक्ति का दीप बनकर आत्मा को आलोकित करता है। वाद्य माधुरी का दर्शन हमें ये प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन को ईश्वर की ध्वनि के साथ एकाकर करें, तभी हमारा अस्तित्व प्रेम भक्ति और आनंद का मधुर संगम बन जाता है। तो दोस्तों, सुनते हैं हम एक प्यारा और सुंदर गीत।

हे श्री कृष्ण श्रोताओं, श्रीमद् भागवत में कहा गया है, वेणु कन्वयंतो गोविंद। इसका भावार्थ है कि जब गोविंद बांसुरी बजाते हैं तो संसार की सारी ध्वनियां मौन हो जाती है। यह श्लोक हमें बताता है कि कृष्ण का वाद्य केवल संगीत नहीं बल्कि ईश्वर की पुकार है। उनकी बांसुरी का स्वर आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला सेतु है, जो हर जीव की प्रेम और भक्ति की धारा में बह ले जाता है। तो दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा और सुंदर गीत।

जय श्री कृष्ण श्रोताओ, यह थी सातवी कला वाद्य माधुरी। यह कला हमें सिखाती है कि जीवन का हर स्वर ईश्वर की ध्वनि से जुड़ सकता है। जब हम अपने मन को शुद्ध करते हैं तो उसमें भी वही दिव्य संगीत गुनने लगता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण की आठवीं कला अलंकार माधुरी यानी अलंकारों की मधुरता। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण दोस्तों, सुनते रहो सुनते रहो। इसी के साथ सुनते हैं हम एक छोटा सा सुंदर गीत।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: या पर्सनल लाइफ में भी देखें कि सिचुएशंस आती जाएंगी और मुश्किलें, मुसीबतें, और अभी तक हम ये भी बातें करते आ रहे थे कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई, लेकिन रियल सेंस में जब हमने देखना शुरू किया हमें पता चला कि कोई भी मुश्किल, कोई भी प्रॉब्लम एक्चुअली एक परिवर्तन, एक चेंज है। और उसको हैंडल करने के लिए या उसको कैसे उससे गुजरना है उसके लिए हमने देखा था कि हमारे पास, हम दो तरीके अभी तक कर रहे थे, या तो हम उससे भिड़ जाते थे उस सिचुएशन से, या फिर हम अपने आप को गिव इन करके उसके साथ बह जाते थे। लेकिन अगर हम जहाँ हम खड़े हैं वहीं खड़े रहें और उस सिचुएशन को गुजर जाने दें, दैट इज़ वेयर यू नो द राइट सेंस हमारे पास आती है। ऐसे में अगर देखें तो पिछली कड़ी में ही हमने बात की थी कि सही सोच हमारी बहुत मदद करती है, पॉजिटिव थिंकिंग, जिसके बारे में कितना कुछ हम पढ़ चुके हैं, लेकिन उसे सही तरीके से कैसे लेना है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आगे भी हम बात करेंगे, और इस पर बात करने के लिए हमारा सौभाग्य है, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, अगर पिछली कड़ी को देखें तो हमने यही कहा था कि हमारा ही क्रिएट किया हुआ थॉट हमारी डेस्टिनी तय करता है। आप जैसे हम एक जर्नी हमने की थी आपके साथ,
1: आपको सब जर्नी याद है पूरे?
0: मैं ट्राई करती हूँ कि वो जो एक सोच मेरी, एक थॉट मेरा फीलिंग को क्रिएट करता है, और जब बार बार वो फीलिंग आती है, हम मुसीबत ये ना समझकर परिवर्तन समझें, चैलेंज समझें। अब परिवर्तन तो होता ही है, हर पल परिवर्तित हो रही है ज़िंदगी, हम सब बिलीव करते आ रहे हैं, हम सब मानते हैं, लेकिन इसे एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है कि मेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन हो जाएगा। उस परिवर्तन में गुडनेस कैसे देखनी है, उस परिवर्तन को रिस्पॉन्ड कैसे करूँगा, उसमें मेरा क्या रिएक्शन होगा, ये मैं खुद तय कर सकता हूँ, मैं खुद सक्षम हो सकता हूँ। और इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए आज का सिलसिला भी शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: एक बार फिर से हम सिस्टर शिवानी उस बात को लेते हैं कि जो जिंदगी में हो रहा है, आज ही नहीं, कल ही नहीं, बल्कि आने वाले वक्त में भी, वो सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें आधा वक्त भय में गुजर रहा है मेरा, आधा वक्त उससे जूझने में गुजर रहा है, आधा वक्त और एनर्जी, और आधा वक्त उसे एक्सेप्ट करने में ही, आधे से ज़्यादा वक्त कि ये मेरे साथ हो गया। चाहे वो डिवोर्स केस की बात की थी, चाहे हमने ये देखा था कि बच्चा मेरा जो है वो, अच्छा इनफैक्ट हमने डेथ की भी बात की थी, लेकिन एक और बहुत बड़ी सिचुएशन, बच्चा मेरी ज़िंदगी से कहीं और जा रहा है, वो चेंज हो रहा है, या उसके जीवन में कुछ ऐसा घट गया है जो मेरे लिए स्वीकार नहीं हो पा रहा, तो इन सब में जो मेरा वक्त जा रहा है, एक थॉट जो है वो उसे चेंज कर सकता है।
1: तो वही जो आपने कहा ना, जूझना, जूझना भी रिस्पॉन्स है। परिस्थिति तो आ गई, अब हम ट्राई करेंगे कि अब हम परिस्थिति को एक तरफ रखते हैं, अब हम रिस्पॉन्स पर चलते हैं, क्योंकि येस वी हैव अंडरस्टूड दैट इट्स वेरी बिग, बट नाउ स्टिल व्हाट डू आई हैव टू डू, आई कैन नॉट चेंज द सिचुएशन, नाउ लुक, लेट मी लुक एट द अदर साइड ऑफ द टेबल, एंड द अदर साइड ऑफ द टेबल आई एम स्टैंडिंग, यू नो सिचुएशन वहाँ है, दिस साइड आई एम स्टैंडिंग, यू आर नॉट इन माई कंट्रोल, इज दिस इन माई कंट्रोल। तो कहीं ना कहीं पहले अपने फोकस को हम शिफ्ट करें कि परिस्थिति है, मान लिया, अब एक साइड पर उसको रखते, बट एनी सिचुएशन, एनी चैलेंज, फर्स्ट थिंग डिमांड्स अ रिस्पॉन्स। परिस्थिति आएगी तो रिस्पॉन्स होना ही है, दैट्स द फर्स्ट थिंग। कोई भी परिस्थिति आपके बिना रिस्पॉन्स के नहीं आगे जाती है, लेकिन अब रिस्पॉन्स क्या और कैसा, दैट्स इन माई हैंड।
0: और उसमें एक मुझे जो दिख रहा है, मुझे समझ में आई एक बात कि जैसी परिस्थिति आती है, पहली चीज होती है जो रिस्पॉन्स की बात करती हूँ, पेन। पेन हिट्स अस, और कितनी बार
1: पेन हिट्स अस ना, पेन हिट्स अस, सी सच अ कॉमन सेंटेंस, लॉट ऑफ, वो दर्द मेरी तरफ आ गया, या दैट पेन हिट मी। नाउ व्हेन आई से पेन हिट्स अस, दैट मींस आई एम सेइंग इट्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। पेन हिट्स अस मतलब, तो जैसे कि किसी ने मुझे मारा आकर, तो पेन हिट्स अस मींस द पेन इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। हमने अभी देखा कि परिस्थिति बाहर से आएगी, एंड जैसे ही परिस्थिति आएगी, आई हैव टू क्रिएट अ रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स किसने क्रिएट किया? आपने क्रिएट किया, मैंने क्रिएट किया। अब रिस्पॉन्स क्रिएट करना मतलब क्या? क्रिएट करना,
0: थॉट क्रिएट,
1: थॉट क्रिएट करना, इमीडिएट परिस्थिति, थॉट परिस्थिति, थॉट, दिस इज गोइंग ऑन कंटिन्यूसली। अब परिस्थिति आई कितनी भी बड़ी, थॉट किसने क्रिएट किया?
0: एक्चुअली मुझे तो पता नहीं चलता ना कि मैंने क्रिएट किया,
1: बट नाउ द

0: What we are trying to do is that कि focus, yes, situation, very big. Now, response किसने create किया? मैंने create किया. And what is the meaning of response? Response मतलब क्या? कि first चीज मैंने क्या create की? जैसे आपने कहा, एक thought create की, feelings create हुई, action में आ गया. अब action किसने create किया? मैंने create किया. दर्द create किया? किसने create किया?
1: मैंने create किया.
0: क्योंकि दर्द is the response ना? और फिर वो एक्शन में आया. अब जैसे एक्शन में आएगा उसका रिजल्ट फिर सिचुएशन के रूप में फिर मेरे सामने आएगा. लेकिन फिर जब सिचुएशन मेरे सामने आएगी फिर क्या क्रिएट किया? अगेन आई क्रिएटेड अ थॉट. नाउ बिकॉज इट्स लाइक टू पीपल आर हियर, सिचुएशन रिस्पॉन्स, सिचुएशन रिस्पॉन्स. क्योंकि मेरा सारा टाइम इसको देखने में जा रहा है, सिचुएशन को, तो मेरा ध्यान इस तरफ तो जा ही नहीं रहा कि आपका रोल क्या है इसमें प्ले करने में. तो इसलिए हमने समझा कि रिस्पॉन्स तो ऑटोमेटेड है,
1: natural reaction. So many times we say that it's a natural reaction.
0: Natural reaction क्यों? क्योंकि मैंने सोच समझ के response नहीं create किया, एक automated response create किया. You know, एक जैसे हमारे पास emails आते हैं, एक है कि उस email को पढ़ के उसके ऊपर बैठ कर सोच कर एक answer हम लिखेंगे, और एक है कि एक automated response create कर दिया है.
1: मुझे आता है.
0: Yes. So every email wherever we send today out into the world, आपको immediate automated response आता है ना. आपकी वहां पहुंची नहीं होगी, अभी आपने सेंड बटन दबाया होगा, 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको वहां से जवाब आया. सोचा समझा हुआ जवाब नहीं था, ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स था. तो ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स मतलब जो एक मेरी पुरानी प्रोग्रामिंग बहुत पहले से फिक्स करके रखी हुई है सिस्टम के अंदर, उसने क्वेश्चन को समझा भी नहीं, उसने परिस्थिति को देखा भी नहीं, लेकिन उसके पास उसका रिस्पॉन्स fixed hai, and that is that response, whether it's of pain or fear or whatever, but it's an automated response. Why? Because I did not take out time internally to look at whether I have a choice to create a response, whether I need to sit and think what has to be my response. I just said natural response. Gussa, natural response. Dard, natural response. Stress, natural response. To usko fir hum reaction kehte hain. जैसे दो वर्ड्स है हम बार बार यूज कर रहे हैं, रिएक्शन रिस्पॉन्स. तो रिएक्शन है
1: ऑटोमेटेड,
0: ऑटोमेटेड.
1: हम बार बार ये भी देखते हैं सर शिवानी कि दूसरा कोई होता तो वो क्या करता. हम ये भी कहते हैं ऐसे ही तो रिस्पॉन्ड करता, ऐसे ही तो उसका रिएक्शन.
0: क्योंकि ज्यादातर फिर हम किसको देख रहे हैं, मेजोरिटी अराउंड अस आर लिविंग विद ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेस. और क्योंकि फिर मेरे आसपास मेजोरिटी लोग ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स पे चल रहे हैं, तो फिर मैंने एक और बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर लिया कि दिस इज द राइट वे टू लिव. कि अगर एक कुछ गलत करेगा तो ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स है कि गुस्सा तो आएगा ही. मैंने अपने आप को ऑप्शन नहीं दिया बीच में कि डू आई हैव अ चॉइस, कितना गुस्सा करना है, कब तक करना है, किस पर करना है, कितने समय तक उसको पकड़ कर रखना है. ये सिचुएशन पर डिपेंडेंट है.
1: नहीं, इनफैक्ट यस, बट मेरे ऊपर है, आई कैन मेक इट आउट. बट एक्चुअली अगर मैं देखूं तो अभी तक जिंदगी में यही हो रहा था कि इट जस्ट टेक्स ओवर,
0: टेक्स ओवर, बिकॉज आपने इस पर अटेंशन ही नहीं दिया ना. आप यहाँ जिसकी एनर्जी, जहाँ अटेंशन जाएगी एनर्जी फ्लोज. वी हैव वर्कड विद दिस लॉ थ्रू आउट, वेर एवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज. तो जहाँ आप ध्यान देंगे, जिस साइड पर आप अटेंशन डालेंगे, आपकी सारी शक्ति, जितनी भी शक्ति आपके पास, वो उस साइड पर जाएगी. अब ये दो साइड ऑफ द टेबल है, सिचुएशन, माय स्टेट ऑफ माइंड व्हिच इज रिस्पॉन्स. इस तरफ तो ध्यान ही नहीं है
1: पूरा. हाँ,
0: इस तरफ तो ध्यान ही नहीं है, क्योंकि इसको तो कह दिया कि ये तो ऑटोमेटिक है. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ क्यों ध्यान नहीं है? क्योंकि हमने सोचा ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये तो गुस्सा तो आना ही है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है. मेरे कंट्रोल में मुझे लगा कि वो है, वो परिस्थिति मेरे कंट्रोल में है. तो जो चीज मेरे कंट्रोल में है, मैंने अपना सारा ध्यान किस तरफ लगाना शुरू कर दिया? उस तरफ कि मैं इस सिचुएशन को किसी तरह चेंज कर दूं. और सिचुएशन को चेंज करना मतलब सामने वाले लोगों को चेंज करना,
1: और वो टेंशन में ही मैं सब कुछ कर. ओह यस.
0: सो नाउ राजयोगा मीन्स, स्पिरिचुअलिटी मीन्स शिफ्ट फोकस दिस साइड. सिचुएशन यस, नॉट इन माई कंट्रोल. हर सिचुएशन में भले उस टाइम नहीं भी याद रहे, लेकिन बाद में भी बैठकर, क्योंकि जो बाद में बैठकर आप इंट्रोस्पेक्ट करके स्टडी करोगे, वो आपको नेक्स्ट सिचुएशन में हेल्प करेगी. कई बार ठीक है, ये सिचुएशन आई, मैंने नहीं ठीक से हैंडल किया, आई वेंट थ्रू पेन, लेकिन इफ आई सिट बैक एंड आई थिंक ओवर इट, आई विल बी रेडी फॉर माई नेक्स्ट सिचुएशन एंड दैट इज व्हाट इज इन माय कंट्रोल. जैसे फॉर एग्जांपल बीमारी फैल गई, लेट्स से अभी ये जो स्वाइन फ्लू फैल गया, यू ट्राई टू स्टॉप दैट, यू कांट स्टॉप दैट. तो व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू, हाउ डू आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. तो आप लोगों को देखेंगे वो लोग मास्क लगाकर घूम रहे हैं, लोग हर जगह टेम्परेचर वट एवर मेजर्स दे आर टेकिंग. वो फ्लू को तो नहीं रोक सकते ना, वो किसको बचा सकते हैं, हम अपने को बचा सकते हैं. सो दिस इज इंटेलिजेंस ना. अगर आप सोचें आप वायरस को ढूंढ के उसको रोकने की कोशिश करेंगे, इट्स नॉट हैपनिंग. तो एवरी कंट्री एवरी नेशन व्हाट हैव दे डन, हमें क्या करना है जिससे हम अपने को बचा सकें ताकि ये एपिडेमिक फैले नहीं. अब जिस समय एंगर और स्ट्रेस और ये डिप्रेशन हिट कर रहा था, हमने सारा ध्यान किस पर दिया,
1: सिचुएशन
0: वायरस. वो सारा वायरस का, मैं उसको वायरस को ही रोक दूं तो मुझे दर्द नहीं होगा. अगर हमने ध्यान अपने ऊपर उसी समय से देना शुरू कर दिया तो बीमारी कैच ही नहीं होगी ना, बीमारी भी पकड़ ली और उसके बाद भी बीमारी को ना ध्यान देते हुए परिस्थिति को ही देते गए. तो परिस्थिति तो क्योंकि मेरे कंट्रोल में थी नहीं तो वो आई नहीं, लेकिन बीमारी मेरी दिन ब दिन
1: बढ़ती
0: गई. वी स्टार्टेड 20 ईयर्स बैक विद अ वर्ड कॉल्ड टेंशन, चिंता. स्ट्रेस वर्ड नहीं था 20 साल पहले. आई रिमेम्बर व्हेन वी वर इन स्कूल देयर वाज नो सच वर्ड एज स्ट्रेस. स्ट्रेस हमारे लिए सिर्फ साइंस में आता था कि मेटल का स्ट्रेस कितना होता है. पर्सनल का स्ट्रेस ऐसा कोई शब्द नहीं था, इट वाज नॉट देयर इन द वोकैबुलरी. इस 8-10 साल के अंदर स्कूल के बच्चे बच्चे को ये शब्द मालूम है, स्ट्रेस. आज स्कूल के बच्चों को डिप्रेशन मालूम है, एंड नॉट जस्ट एज अ वर्ड, एज एन एक्सपीरियंस. दे आर एक्सपीरियंसिंग इट. क्यों? क्योंकि जब वो बीमारी स्ट्रेस के लेवल पर थी, रुका नहीं, अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया. सिलेबस को क्या करे, कॉम्पिटिशन को क्या करे, बाहर बैग्स को हल्का कर दो, विच इज ओके, इट्स इम्पोर्टेंट, बट बीमारी कहाँ है, फेस किसको करना है उस सिलेबस को, उसकी ताकत को बढ़ाए. No one was thinking about that, because जो लोग सोच रहे थे वो भी तो खुद भी तो
1: depleted.
0: अपने ही दर्द में है. तो वो वर्ड स्ट्रेस से बढ़कर आज डिप्रेशन पर आ गया है. टुडे डिप्रेशन इज ग्रेजुअली बिकमिंग अ वेरी यू नो, जैसे कि एक आम बुखार की तरह है, किसी को भी हो रहा है.
1: शिवानी बहुत लोग ये बोलने वाले हैं, मतलब मेरे, मैं भी अगर सोचूं कि जब सिचुएशन आ रही है तो उसको ग्रैपल करने का कोशिश करूं, उसको सेव करने की कोशिश करूं, या अपने ऊपर काम, मतलब अपने ऊपर देखने लग जाऊं. यू नो दिस इज लाइक, उस वक्त मेरा पूरा फोकस इस कि मेरे को सिचुएशन को उस पर कैसे सेव करना है.
0: सिचुएशन आपके कंट्रोल में है नहीं, दैट्स द फर्स्ट बॉटम लाइन. यस, हमें करना है कि व्हाट विल गेट द बेस्ट रिजल्ट. तो बेस्ट रिजल्ट के लिए मुझे दोनों में से फर्स्ट चूज करना पड़ेगा, विच वन इन माई कंट्रोल, विच वन आउट ऑफ माई कंट्रोल. अभी क्या हो रहा है, दो साइड्स है, सिचुएशन रिस्पॉन्स. हो क्या रहा है, चैलेंजेस जैसे आपने कहा दिन ब दिन बहुत फास्ट स्पीड से, चेंज की भी जो गति है ना, चेंज की भी एक स्पीड होती है. चेंज तो यस है, लेकिन चेंज जो अब हो रहा है, इट इज एट अ वेरी फास्ट रेट. अब ये भी तो हो सकता है इससे आगे आने वाली परिस्थितियां और कुछ लेकर आएंगे. हमें लग, इट्स नॉट टू गेट स्केयर्ड, अगेन दिस इज नॉट बीइंग पेसिमिस्टिक, हम डर नहीं रहे हैं, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड बाहर है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, किसी भी स्पीड पर जा सकता है, मेरे कंट्रोल में ये. लेकिन अब क्या हुआ, ये फास्ट बढ़ता गया, ये फास्ट घटता गया, तो जो गैप है उसके बीच में, चेंज और रिस्पॉन्स के बीच में, वो गैप बहुत बढ़ता गया. और क्योंकि ये गैप बढ़ता गया, क्या फीलिंग आई, मेरे अंदर शक्ति नहीं है टू फेस दिस,
1: गिव अप, देन यू नो लाइक यस,
0: अ फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस, यू नो, शक्तिहीन, कि मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मेरे से ये दैट्स व्हेन वी हैव दोस काइंड ऑफ थॉट्स, के मेरे से नहीं फेस होगा, मेरे जीवन जीने का कोई लक्ष्य नहीं. इतनी एकदम नेगेटिव थॉट क्रिएट करना कि मेरे जीवन का कोई फिर लक्ष्य नहीं है, जीने का कोई मतलब नहीं है, फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस. क्यों? क्योंकि वो गैप वॉज टू मच टू फेस. उसकी वजह से जो मुझे रिस्पॉन्स क्रिएट करना है, जब मैंने अपने आप को बता दिया कि मैं कमजोर हूँ, मेरे अंदर ताकत नहीं है इस परिस्थिति को फेस करने के लिए, तो जो मुझे रिस्पॉन्स क्रिएट करना है, आई एम नॉट एबल टू क्रिएट. एंड देन कम्स द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज, बिकॉज आई कांट डू इट, आई स्टार्ट ब्लेमिंग यू. कि ये सब जो मेरे साथ हो रहा है ना, ये सारा जो मुझे फेस करना पड़ रहा है, इसके लिए आप और पूरी दुनिया इसके लिए जिम्मेदार है.
1: भगवान तो आता है.
0: हाँ, वो तो जब व्हेन आई डोंट गेट एनीवन टू ब्लेम, तो आई से ये उसकी वजह से हो रहा है, ये भगवान कर रहा है. तो ये तीन बहुत डीप चीजें सेट हो जाती हैं, फीलिंग ऑफ पावरलेस, शक्तिहीन, दूसरा नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड एंड तीसरा ब्लेम, क्योंकि जैसे ही हम ब्लेम मोड में चले जाते हैं, औरों की तरफ उंगली उठाना शुरू करते हैं, तो फिर मेरा अपने पर काम करने वाला प्रोसेस तो बंद हो जाता है, आई स्टॉप इमिडिएटली. तो नॉर्मली क्या होता है, कोई भी सिचुएशन आती है, जितनी भी परिस्थितियां हमने देखी, जो आज हम जिसको नॉर्मल कहेंगे, नॉर्मल नहीं है लेकिन जो एक बहुत कॉमन हो गया है, जो हमारी थॉट क्रिएट होती है, फर्स्ट थॉट उस सिचुएशन को लेकर, वो ज़्यादातर आज नेगेटिव हो रही है. नेगेटिव थिंकिंग, बिकॉज वी सॉ कि आपको रिस्पॉन्स क्रिएट करना है, रिस्पॉन्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ थॉट. एक थॉट क्रिएट करनी है, दैट इज रिस्पॉन्स, और कुछ भी नहीं करना. और वो थॉट फिर एक्शन में आ जाएगी और वो एक्शन फिर आपका अनुभव बन जाएगा. लेकिन वो थॉट की क्वालिटी वो बहुत नेगेटिव की तरफ बढ़ती जा रही है. जैसे कि अपने लिए हम किस तरह की थॉट्स क्रिएट करते हैं, ये बहुत मुश्किल है. मेरे से नहीं हो सकता है ये, दूसरे लोग मुझे लाइक नहीं करते हैं, इसीलिए फिर उन्हें मेरा काम भी पसंद नहीं आता है, मैं ही सिर्फ क्यों बदलूं,
1: अब क्या होगा,
0: अब क्या होगा मेरे साथ,
1: यू नो, ओह माय गॉड, इट्स द एंड, यू नो, ऐसे जो थॉट्स, एक्चुअली आई कैन मेक इट आउट नाउ, द मोमेंट देयर इज अ सिचुएशन, सपोज हमें कुछ भी पता चलता है, पहला जो वो है कि इट्स लाइक व्हाट टू डू नाउ.
0: ट्रू, सो दैट्स दैट नेगेटिव थॉट. एक है सेट ऑफ नेगेटिव थॉट्स फॉर माई सेल्फ, अपने प्रति हम नेगेटिव हो जाते हैं, मेरे से नहीं होगा, ये लोग मुझे कोई लाइक ही नहीं करता, मैं तो हुई ऐसी, मेरे से सब, मैं जो करना शुरू करती हूँ मेरे से गलत हो जाता है. सो अपने लिए एक नेगेटिव थॉट, अपने से स्टार्ट हुआ, उसके बाद औरों के लिए नेगेटिव थॉट, ये कोई काम करने का तरीका है, ऐसे थोड़ी करना होता है, ये इनको ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए था मेरे साथ, यू नो, अगेन I'm going to look at everyone around.
1: In fact, यहाँ पे बहुत बड़ी एक बात होती है कि मैं जब भी कोई काम शुरू करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे परिवार का साथ नहीं मिलता. There is nobody understands me.
0: Nobody understands
1: मैं कितना काम करना चाहती हूँ, मेरे किसी भी प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं मिलता. परिवार का ही सपोर्ट नहीं है तो कैसे आगे बढ़ेगा.
0: Now see the whole series of thoughts. किस क्वालिटी की है ये. अब अगर थॉट, क्योंकि बिकॉज वो बीज है आपका, बाकी आगे जो भी आपके साइकिल में होने वाला है, लेकिन बीज इस क्वालिटी का बो देंगे, फिर औरों के प्रति भी, विश्व के प्रति. टुडे द वर्ल्ड इज इन अ मेस, दैट इज वन कॉमन थॉट. माय कंट्री, इट सीम्स टू बी गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, इस देश का कुछ नहीं हो सकता.
1: अच्छा, और वो जो दुनिया में हो रहा है वही तो मुझे मिल रहा है,
0: वो तो फिर साइकिल आ गया ना, क्योंकि मेरी तो गलती वैसे भी नहीं थी, इट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड. अच्छा, दुनिया में इतना सब हो रहा है, एक मैंने अगर चेंज कर भी लिया अपने आप को, उससे क्या फायदा होगा. सो ये इस क्वालिटी की जब थिंकिंग हमारी शुरू हो जाती है, एंड इट इज सच अ विशियस साइकिल, कि ये एक बार थिंकिंग का एक जो मैकेनिज्म बैठ के अंदर, तो एक से अगली थॉट फिर नेगेटिव ही होनी है, उसके बाद नेगेटिव ही होनी है, एंड आफ्टर सम टाइम नाउ वी आर नॉट बीइंग एबल टू कम आउट ऑफ दैट साइकिल. पॉजिटिव थिंकिंग इतना कॉमन शब्द हो गया है आज, एवरीवन इज सेइंग पॉजिटिव थिंकिंग. किताबें देखो तो सबसे ज्यादा किस टॉपिक पर है आज मार्केट में, पॉजिटिव थिंकिंग. दैट मीन्स समवेयर देयर इज अ वेरी डीप डिजायर कि मुझे अपनी थिंकिंग की क्वालिटी को बदलना है. लेकिन किताब पढ़ते समय, या सपोज ये सेशन देख रहे हैं, ये देखते समय ठीक लगेगा, लेकिन वो बदलेगा कौन. आई विल हैव टू कॉन्शियसली सिट डाउन, एंड व्हेन आई क्रिएट द नेगेटिव थॉट, इवन इफ उस समय नहीं हुआ मेरे से, चलो वो स्टेज को क्रॉस करे, बाद में बैठकर कौन करेगा. थिंकिंग अपने आप तो नहीं चेंज हो जाएगी, इट विल नॉट हैपन ऑन इट्स ओन, इट हैज गॉट इन टू अ वेरी डीप साइकिल, क्योंकि थॉट नेगेटिव होगी तो फीलिंग भी
1: नेगेटिव होगी कंप्लीट.
0: लेट्स से अ सिंपल चीज जो आपने बोला कि मुझे अपना बॉस पसंद नहीं है, जहां मुझे काम करना है आई डोंट लाइक माय बॉस. वन थॉट, आई डोंट लाइक माय बॉस. अब या तो जॉब चेंज करो, वो तो आज करने की हालत में नहीं है, अब आप उसी जॉब में हैं, उन्हीं लोगों के साथ हैं, लेकिन थॉट कौन सी शुरू हो गई है साइकिल में, I don't like my boss. I can't stand my boss. You know, the way people will say, I just can't stand that person. So I don't like my boss. Feeling kaisi wali create hogi automatically?
1: Repel. Yes. Repel. I cannot be with
0: you. Kyunki meri thought hai, I can't stand you. Ye sentence itna common hai. I can't stand you. So feeling kaun si aayegi? Anger?
1: Hatred. Anger, yes.
0: Resentment? Yehi aayega. तो जो मेरा आपके साथ व्यवहार होगा, जब वो ऐसी थॉट्स और ऐसी फीलिंग्स पर बेस्ड होगा, तो वो व्यवहार कैसा होगा. नॉट कोऑपरेटिव. देयर विल ऑलवेज बी दैट यू नो टेंशन.
1: एंड इनफैक्ट वो जेन्युइन भी मुझे कुछ कहेंगे करने को, माय आई विल नॉट बी एबल टू टेक इट. आई विल फील कि वो ही इज ट्राइंग टू पुट मी डाउन.
0: नाउ द रिजल्ट ऑफ ऑल दिस, व्हाट विल हैपन टू यू? आप काम तो उसी ऑफिस में कर रहे हैं ना, आपके साथ आपका सीनियर तो वही है, लेकिन क्योंकि ये थॉट और ये फीलिंग के साथ काम चल रहा है, एक थॉट सिर्फ, आई डोंट लाइक माय बॉस, यू सी हाउ इट विल कम आउट इनटू द रिजल्ट. और आपके करियर पर इसका इम्पैक्ट आना ही आना है, क्योंकि यू आर वर्किंग देयर विद दिस थॉट. आप वहां काम कर रहे हैं, लेकिन आपका जो बीज आप रोज बो रहे हैं, हर घंटे हर पल जो आप बीज बो रहे हैं, जो आप लोगों के साथ बार बार डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या है? I don't like this person. I don't like this person. I don't like this person. ये जो energy
1: और मजबूरी का जो पूरा एहसास है, बिल्कुल.
0: और इसका effect हमारी performance पे नहीं आएगा, आएगा. वो किसने create किया? हमने create किया. But I don't see that it started from my thought. I think all this is happening
1: because you are bad. Because I'm not able to like you. Yes. But then there are people who say, I am being genuine. You know. To myself, at least मैं अपने आप से सच तो बोल रहा हूँ.
0: भले वो ठीक है, लेकिन फिर अगर आपका genuine negative होने वाला है, you see, क्योंकि हर एक में plus and minus, understandable, वो तो अभी हमें समझ में आया कि everyone will have their share of weaknesses and strengths, and so do I, just share of my weaknesses and strengths. But if my situation demands कि मुझे उस व्यक्ति के साथ उस क्षेत्र में कार्य करना है, next is what is the choice, the thought. I can't change my boss. Again, कौन सी चीजें control में हैं, कौन सी चीजें control में नहीं हैं? Job, I can't change. Boss, I can't change. Who can I only change?
1: Myself.
0: Only if I want to cross this whole thing without pain. दर्द के साथ जीना है? दर्द में जीना है?
1: Compromise, मजबूरी, ये सब कुछ.
0: Suffocation अंदर, and फिर सिर्फ वो अंदर की बात नहीं रहेगी. We saw that the result will come out on the performance. फिर सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब वो परफॉर्मेंस पे आपके हिट करेगा और वो रिजल्ट आपको वापस आएगा, बी रेडी टू टेल योरसेल्फ, आई एम रिस्पॉन्सिबल बिकॉज दिस वाज ऑल माय क्रिएशन. लेकिन वहां भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए नहीं लेने क्योंकि वो डाल दिया आपके ऊपर. तो अगर हम ये देखेंगे ये चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज मेरे कंट्रोल में है, माई थॉट. Is it possible that I work on myself, look at my negative thoughts and try to convert? देखो हम negative thought को positive word में convert करते हैं. आप सारा दिन में देखो हम ये बहुत काम करते हैं. अंदर भले मैं आपके बारे में अच्छा नहीं भी सोच रही हूँ, ठीक है, पर भी मैं आपसे बात तो बहुत अच्छी तरह से कर सकती हूँ. तो हमने क्या किया? Convert किया ना, क्योंकि वो नेगेटिव आपको नहीं सुनाई देना चाहिए, तो उसको अंदर ही रखा. लेकिन आपसे बात कैसे की?
1: तो अपने आप से तो मैं सच्ची रही ना, ये मैं कहती हूँ.
0: Yes, लेकिन अगर कन्वर्ट करना ही है genuinely, तो कन्वर्ट वर्ड लेवल पर करने के बजाय क्यों ना थॉट लेवल पर कर दिया जाए? क्योंकि जो एनर्जी क्रिएट होकर आप तक पहुंचने वाली है, इट्स नॉट ऑफ द वर्ड्स. कई लोग बोलते हैं मेरे पास तो कोई चॉइस नहीं है, मजबूरी है, इधर ही काम करना पड़ेगा. अगेन दैट्स पेन. I have a choice, and the choice is start seeing the other side of the person, start changing myself. आप उनको नहीं change कर सकते.
1: That's what I'm saying ना, कि मुझे उन्हें like करने का प्रयास करना चाहिए और उसके लिए मुझे उनकी positivity देखनी पड़ेगी.
0: लेकिन उसके लिए मुझे पहले अपने दर्द से निकलना पड़ता है. जब मैं दर्द में हूँ, मुझे आप क्यों अच्छे लगेंगे? आप क्यों अच्छे लगेंगे? क्योंकि मैंने ये समझा कि मेरे दर्द का कारण आप हैं, तो फिर आप कैसे अच्छे लग सकते हैं मेरे को उसके बाद? जब तक मेरा वो दर्द हील नहीं होता ना, तो आप मुझे अच्छे नहीं लग सकते, क्योंकि यू आर द वन हु कॉज्ड मी पेन. यू नो, ये जो मैं जिस चीज से आज गुजर रही हूँ ना, सारी इसका सारा
1: आप हैं जिम्मेदार. ऑफ कोर्स.
0: तो देन हाउ कैन आई लाइक यू? व्हेन व्हाट आई डिडंट अंडरस्टैंड वाज द कॉज इज मी. आप वहां हैं, आप अभी भी उस कुर्सी पर हैं, आप यहाँ नहीं हैं. और दर्द जो सारा क्रिएट हो रहा था, वो यहाँ क्रिएट हो रहा था. आप वहां से बैठकर कुछ कर सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, मुझे फिजिकली भी मार सकते हैं, उतना ही आपके कंट्रोल में है. लेकिन यहाँ जो क्रिएशन होती है सारी,
1: वो मेरी है. ओह वाओ,
0: वो सारी मेरी है.
1: आई थिंक दिस इज व्हाट वी नीड टू रब इन एक्चुअली टू अंडरस्टैंड.
0: दिस इज द ओनली थिंग कि ठीक है, यू आर व्हाटएवर यू आर, ओके, बट स्टिल हुज क्रिएटिंग द पेन? हुज क्रिएटिंग द पेन? मी, नॉट द अदर पर्सन. कब तक? Stop. Ask yourself, who's creating the pain? I. कब तक?
1: I can stop it now.
0: Whenever. आप जब रोकना चाहे, आपको एक साल बाद दर्द खत्म करना, आपको 6 महीने बाद खत्म करना.
1: No, I want to do it now.
0: Finish it then, yes, right finish. Now. That's what it is. जब focus यहाँ आएगा तब तो finish होगा ना. That's why we always rubbing this in focus self, self. सेल्फ, क्योंकि सिर्फ वही है जहां आप बिंदी लगा सकते हो. आपको नहीं बिंदी लगा सकती मैं. अगर आपने मेरे से रूडली बात करनी है तो करनी है, मैं बिंदी नहीं लगा सकती आपको. बिंदी जहां लग सकती है.
1: वेरी ट्रू एक्चुअली, इट्स सो क्लियर नाउ. इनफैक्ट हमारे पास वक्त नहीं रहा है, लेकिन अब ये बहुत बिंदी लगानी कैसे है, हाउ टू फिनिश एक्चुअली, यू नो व्हाट टू रियली डू. पर पहली बात तो यही समझने की थी कि ये जो सब कुछ है, जहाँ तक सिचुएशन है वो वहाँ है, लेकिन जो कुछ भी मैं अनुभव कर रहा हूँ वो मेरा क्रिएट किया हुआ है. दीज आर द टू पैरामीटर्स विच वी नीड टू वर्क ऑन. थैंक यू सो मच शांति, और इस पर हम आगे आने वाली कड़ियों में ज़रूर बात करते रहेंगे. अब आप सभी से हम यही कहना चाहेंगे, बार बार यही कह रहे हैं कि जो कुछ भी हम इस प्रोग्राम में कह रहे होते हैं वो सिर्फ हम बात कर लें अच्छा लगता है, बिल्कुल जैसा सुशी शिवानी ने कहा, नेगेटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग. लेकिन अगर हम रियल में अपनी लाइफ में देखें, हम सबके सामने सिचुएशंस आती हैं, हम सबके सामने प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मेरा अनुभव क्या है, मैं कितना दर्द में हूँ, कितनी परेशानी में हूँ, कितना मैं उसके कारण अपने आप को बंधा हुआ या जो भी वो इमोशंस हैं वो मैं फील करता हूँ, वो मैं खुद क्रिएट कर रहा हूँ. इट मींस सिचुएशन और फीलिंग्स एक्चुअली अलग अलग हो गई
0: है ही अलग.
1: आपके पास कोई सवाल, कोई ऐसी बात जो इस कड़ी से जुड़ी हुई है, या पूरा जो ज्ञान आपके साथ है इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपका हम स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से, क्योंकि हमारी कोशिश है ये प्रोग्राम आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाए, जो हमारा सफ़र है उसमें हर कदम पर आपके साथ हो. तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर है 0999-344-555, 0998-73-666-555, 0999-744-555. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी, इसमें इन दिनों हम बात कर रहे हैं खुद की. वैसे तो हर बार हमारा प्रयत्न रहता है, जैसे कि सिस्टर शिवानी ने कहा कि फोकस इज ऑन सेल्फ, खुद पर. हम से ज़्यादा सेल्फिश लोग नहीं हो सकते कि बार बार हम ये कहते हैं कि फोकस हम पर होना ज़रूरी है. लेकिन बाहरी के बात बावजूद जो अंदर मैं हूँ, जो बहुत कुछ काम करता है, जो सोचता है, जो फीलिंग्स क्रिएट होती हैं, उस पर फोकस करना ज़रूरी है. आगे हम बहुत सी और बातें करेंगे सिचुएशंस को देखते हुए, लेकिन फिलहाल आपसे विदा लेते हैं. हम शांति.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा है। ठीक है, चाहे वो हमारी साइकोसोमैटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुनेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले, पुनेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले।
1: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा।
2: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार। पृथ्वी मेरी जननी, जनक नील अंबर है, भौगोलिक सीमा में बंधा रहा न मेरा घर है। यहां रम गया हृदय, मैंने आवास बनाया, काया से पहले ही मेरा अंतस भारत आया। भारत मेरा, मैं भारत की होकर सदा रहूंगी, जन्म कहीं भी हुआ हो निज को यहां की सदा कहूंगी। भारतीय सभ्यता, संस्कृति, धर्म और दर्शन जिनकी आत्मा का संगीत था, वो थी भारत की दत्तक पुत्री सिस्टर निवेदिता, जिनका असली नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता, लेखिका, शिक्षिका और स्वामी विवेकानंद की शिष्या थीं। सिस्टर निवेदिता का जन्म 28 अक्टूबर 1867 को आयरलैंड में हुआ था। उनके पिता पुजारी थे, जिन्होंने बचपन में ही उन्हें जीवन का बहुमूल्य पाठ दिया कि मानव सेवा ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। यही संस्कार लेकर वो बड़ी हुईं। जब पढ़ाई पूरी हुई तो उन्होंने अध्यापन का कार्य शुरू किया और साथ ही उनकी रुचि खान मजदूरों के कल्याण में भी थी। वो सेवा कार्यों से जुड़ी रहती और जीवन मृत्यु से जुड़े बहुत से सवाल उन्हें परेशान करते रहते। लेकिन 1895 में जब वो स्वामी विवेकानंद से मिली तो जैसे जीवन का सारा अंधेरा दूर हो गया, सारे संशय मिट गए। वो स्वामी जी से बहुत प्रभावित हुईं। स्कॉटलैंड के नेशनल पार्क में स्वामी विवेकानंद का ओजस्वी भाषण हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि संसार का नया निर्माण करने के लिए ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 समर्पित लोग मिल जाएं तो मैं दुनिया की तस्वीर ही बदल दूं। और सुबह सवेरे स्वामी जी के दरवाजे पर निवेदिता दस्तक दे रही थी। स्वामी जी ने आश्चर्य से पूछा, इतनी सुबह आप यहां? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? मन ही मन जिन्हें गुरु मान लिया था, उनके वचन सुन निवेदिता का गला रुंध गया, आंखों से आंसू बहने लगे और वो बोली, स्वामी जी, कल आपने दुनिया का नक्शा बदलने के लिए सच्चे मन से समर्पित 20 साथियों की मांग की थी, बाकी 19 कहां से आएंगे मैं नहीं जानती, पर एक मैं आपके सामने हूं। मेरा मन और मस्तिष्क अब आपको समर्पित है।

प्रेम और करुणा एक सार्वभौमिक भाषा है। इस भाषा को जो भी बोलता है उसकी दुनिया में कोई दीवार नहीं होती, ये संसार उसका परिवार होता है। मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल की यही भाषा थी, इसीलिए वो सन 1898 में अपना सब कुछ छोड़कर भारत आ गईं। विवेकानंद उनके आध्यात्मिक गुरु हुए और भारत उनकी कर्मभूमि। स्वामी जी ने उन्हें दीक्षा दी और नया नाम दिया निवेदिता। साथ ही गुरु मंत्र देते हुए कहा, लव इंडिया, सर्व इंडिया। गुरु की प्रेरणा से निवेदिता स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में उतर गईं। उन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जिसमें आधारभूत शिक्षा के साथ साथ कला और शिल्प के प्रशिक्षण का भी एक विशेष खंड था। स्वामी जी की शिष्या बनने के बाद वो रामकृष्ण मिशन के सेवा कार्यों में पूरी तरह से लग गईं। सन्यासिनी निवेदिता ने 14 वर्ष तक भारतीय समाज में शिक्षा और जागृति का मंत्र फूंका और अवहेलित नारी समाज को ऊंचा उठाया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वो अपनी छात्राओं को दूसरे स्कूल की सभाओं में होने वाले भाषण सुनवाने ले जाती थीं, ताकि देश की संघर्षकारी परिस्थितियों से वो परिचित हो सकें। सिस्टर निवेदिता की सहानुभूति हमेशा क्रांतिकारियों के साथ रही। उन्होंने क्रांतिकारियों को न केवल अपने लेखों से समर्थन दिया बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से उनकी सहायता भी की। स्वामी जी उन्हें अपनी मानस पुत्री मानते थे। वो कहीं भी होते पत्रों के माध्यम से उन्हें निर्देश देते रहते थे। स्वामी जी अक्सर उनसे कहते, हमें वीर कर्मों की आवश्यकता है, ये संसार दुख से जल रहा है और तुम में वो शक्ति है जो संसार को हिला सकती है। उठो, जागो और चलो।

4 जुलाई सन 1902 को स्वामी जी के अवसान ने सिस्टर निवेदिता को हिला कर रख दिया। बड़ी मुश्किल से उन्होंने खुद को संभाला और फिर गुरु के बताए मार्ग पर चलना आरंभ किया। उन्हें लगता था कि भारत की दुर्दशा का कारण परतंत्रता है और उन्होंने आजादी के संघर्ष में भाग लेने का मन बना लिया। सिस्टर निवेदिता ने स्वदेशी आंदोलन, विशेषकर बंग भंग विरोधी आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया। इस दौरान उनकी लिखी कविताएं क्रांतिकारियों के बीच लोकप्रिय हो गईं। 1906 के अकाल और बाढ़ में उन्होंने घर घर जाकर सेवा कार्य भी किया। इस दौरान उनका संपर्क अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पॉल, रविन्द्रनाथ टैगोर और जगदीश चंद्र बसु से हुआ। निवेदिता ने भारत भ्रमण किया और इस दौरान वो भाषण जरूर देती थीं। अपनी सभाओं में उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार किया। उनके क्रांतिकारी स्वरूप को देखकर सभी लोग चकित थे। उनके प्रत्येक कार्य और हर शब्द से एक ज्वाला धधकती दिखाई देती थी। भारत की मिट्टी, पानी, हवा और अन्न में जाने वो कौन सा आकर्षण था कि उनकी आत्मा यहीं की होकर रह गई। अपने अंतिम समय में उन्होंने जगदीश चंद्र बसु से कहा था, मेरा कालखंड समाप्त हो रहा है, मेरा दाह संस्कार ऐसे पर्वतीय स्थान पर करना जहां हवा के प्रवाह से बहकर मेरी भस्म का कण कण भारत की मिट्टी में सदा सर्वदा के लिए मिल जाए। मुझे लगेगा मैं जगत जननी मां भारती की गोद में बैठी हूं। इसी भाव के साथ 13 अक्टूबर सन 1911 को उन्होंने दार्जिलिंग की पुण्य भूमि पर अंतिम सांस ली। यहीं उनका अंतिम संस्कार हुआ और उनकी समाधि पर अंकित किया गया, यहां चिर शांति में लीन है भगिनी निवेदिता, जिन्होंने भारत के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ऐसी महान आत्मा को हमारा शत शत

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया श्री राजेश प्रसाद मिश्र ने, समन्वय किया संजय यादव ने और इसे प्रस्तुत किया सुनीता सिंह ने।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार, अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8 खुश रहो खुशियां बांटो।

0: आज फिर आप सभी का स्वागत करते हैं अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें ओम शांति। इस तरह आपसे बातचीत करते करते आपके जो हमें इतने ढेर सारे ईमेल्स आ रहे हैं उनसे हमें बहुत कुछ पता चल रहा है कि अभी भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जीवन के जो नहीं सुलझ पा रहे हैं, क्योंकि मकसद यही है कि प्यार से आसानी से खुद को पहचानते हुए इन सभी मुद्दों को सुलझाया जा सके और ज़िंदगी जैसी होनी चाहिए सत्यता के रूप में, प्यार के रूप में, शांति के रूप में, उसी तरह से हमें जीना चाहिए। तो उसको समझते हुए आज हम उस पड़ाव पर पहुँचे हैं जब एक मुद्दा ऐसा है जो अभी भी कहीं परेशान करता है, समझ नहीं आता कि उससे कैसे सुलझा जाए, और वो है प्रेशर। प्रेशर हमारे ऊपर काम का होता है और भी कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, पढ़ाई का होता है, अपनी परफॉर्मेंस को लेकर होता है। तो क्या ये प्रेशर सही है? क्या ये प्रेशर हमें परेशान करता है और क्या हम इस प्रेशर से भी परे जा सकते हैं? और इस पर बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। सचमुच अगर हम दर्शकों की बात करते हैं, अपनी बात करते हैं, जीवन में हर वो बात जो हम करते आ रहे हैं उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने शुरू में ही यही कहा था कि ये पूरा ज्ञान अनुभव पर केंद्र करेगा, अनुभव पर कंसंट्रेटेड होगा कि हमें क्या एक्सपीरियंस हो रहा है। एंड बिलीव मी, ये पूरा बहुत से दर्शकों के भी हमें कॉल आ रहे हैं कि हम कोशिश करते हैं इसे इम्प्लीमेंट करने की, याद आ जाता है, एकदम से वो बात याद आ जाती है और हम फिर वो पॉज ले लेते हैं और वो उसी तरह से जीने लगते हैं। वरी की हमने बात की थी, स्ट्रेस की बात की, एंगर की बात की, और ये समझ में आया कि ये प्रॉब्लम्स थी। अब आता है प्रेशर। अगर हम डिफाइन करने को कहें, सो व्हाट इज एक्चुअली प्रेशर?
1: प्रेशर अगेन आई वुड फील इट इज आउटसाइड बट इट इज एक्चुअली इनसाइड। तो प्रेशर भी एक इमोशन है जो मैं क्रिएट करती हूँ।
0: इमोशन इज ऑलवेज यू नो
1: नेगेटिव। तो इट्स एन इमोशन व्हिच आई क्रिएट, क्योंकि मुझे लगता है, आई फील के व्हाट विल हैपन इफ आई एम नॉट एबल टू डू दिस। यू नो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में उसको दे सकते हैं। चिंता वो थी कि व्हाट हाउ विल आई फील अगर आपको कुछ हो जाए या बाहर कुछ
0: हो जाए। इमेजिनेशन का एक
1: वो इमेजिनेशन। तो वो ये थी कि मेरी फीलिंग औरों पर डिपेंडेंट थी, तो मैं कैसा महसूस करूंगी अगर ऐसा कुछ हो जाता है। एंड प्रेशर हम तब एक्सपीरियंस करते कि मैं कैसा महसूस करूंगी अगर मैं ये नहीं कर पाई। यू नो थोड़ा सा आपकी वजह से मुझे प्रेशर महसूस हो रहा है। प्रेशर मुझे हमेशा अपनी ही किसी बात को लेकर होता है। सो दैट्स अ वेरी थिन, व्हाट हैपेंस इज ये सारे इमोशंस हम क्रिएट तो करते हैं सारा दिन में, बट हमें थोड़ा सा बारीकी से इनको समझना पड़ेगा। चिंता काल्पनिक थी कि वर्तमान में परिस्थिति है, लेकिन चिंता में हम वर्तमान से हटके भविष्य में चले गए और हमने एक दृश्य ऑलरेडी क्रिएट कर लिया और उस सीन को क्रिएट करके देखकर डरते जा रहे हैं। आई एम फियरिंग लुकिंग एट दैट पिक्चर। और प्रेशर है कि अभी कुछ जो परिस्थिति है उसमें मुझे अपने आप से डर है कि क्या आई विल बी एबल टू
0: डू दिस।
1: इट कुड बी परफॉर्मेंस, इट कुड बी व्हाटएवर रीजन, लाइक जैसे आपने कहा बच्चों का प्रेशर, बच्चों को जो एग्जाम टाइम पर होता है। प्रेशर कैन बी मेरा अपनी वजह से, एंड इट आल्सो कुड बी कि औरों की एक्सपेक्टेशंस की वजह से मुझे प्रेशर फील होता है। तो नॉर्मली जो बहुत कॉमन प्रेशर हम फील करते हैं वो है, बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं पेरेंट्स का एग्जाम के टाइम पे, या अदरवाइज भी उनकी लाइफ में वो क्या बनना चाहते हैं, इसमें पेरेंट्स का हमेशा बहुत ज़्यादा प्रेशर वो एक्सपीरियंस करते हैं। ऑफिस में एक जूनियर स्टाफ हमेशा अपने
0: बहुत सीनियर pressure, का इवन पीयर प्रेशर, नाम ही है पीयर प्रेशर।
1: सो व्हाट इज पीयर प्रेशर? सी आई हैव टू आस्क मायसेल्फ, क्योंकि ये राइट, इट्स ब्यूटीफुल, ये वर्ड हम इतना कॉमनली यूज करते हैं। तो व्हाट इज पीयर प्रेशर? कि आपको देखकर
0: मुझे लगता है कि मुझे भी ऐसा ही करना है,
1: तो इट ऑलवेज कम्स बैक टू मी। तो हम कहते हैं पीयर प्रेशर में आकर हमने ये कर दिया, मतलब बाकी सब कर रहे थे तो मुझे करना ही था, अदरवाइज आई विल फील
0: लेफ्ट आउट। यस,
1: इवन इफ माय कॉन्शियसनेस इज टेलिंग मी दिस इज नॉट राइट फॉर यू
0: बेसिकली यस यू नो ये जो सारी एडिक्शंस की तरफ जाते हैं स्मोकिंग तो आई थिंक स्टार्ट्स फ्रॉम हियर कि कहीं ना कहीं मतलब मैक्सिमम से पूछा जाए अगर कि आपने स्मोक कैसे शुरू किया स्कूल कॉलेज में दोस्त पीते थे मैं नहीं पीता तो मेरा मजाक उड़ाया जाता
1: मेजोरिटी चीजें आप सारा दिन स्टूडेंट लाइफ में तो मेजोर क्या स्टूडेंट क्यों बड़ों के साथ भी आज ये होता लेकिन यू नो जैसे बंक करके मूवी के लिए जाना दिस इज पीयर प्रेशर एक या दो या तीन लोग सोचेंगे ऐसा करने का कि स्कूल मिस करके या कॉलेज मिस करके जाना और फिर अगर हम नहीं करेंगे तो आई फील के यू नो ये लोग सोचेंगे कि मैं उतना ताकत
0: बड़े लोगों के मन में भी मतलब सोसाइटी में मैं एंटर करूँ मेरे ड्राइवर बोलते हैं मुझे कि आपको पता है सबके पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ गई हैं अब इट्स वन वे यू नो एंड वी डू क्रिएट दैट प्रेशर
1: और फिर हम ही तो वो बच्चों के साथ भी वो फॉरवर्ड कर देते हैं तो पीयर ये एक अंदर हमें महसूस होता है कि मुझे उस तरफ पहुँचना है अगर ये ऐसा कर रहे हैं मुझे भी वो करना है नहीं तो आई फील troubled inside. तो peer pressure, yes. फिर एक होता है pressure कि मुझे खुद ही लगता है कि मैं इस level तक पहुंच पाऊंगा नहीं क्योंकि जरूरी नहीं आपके साथ competition है मेरा लेकिन मैंने अपने लिए कोई ना कोई ऐसा level जैसे sports person, एक athlete है in the race, लेकिन उसने अपने लिए personal level कुछ एक set किया हुआ है और कहीं ना कहीं वो pressure महसूस करता है कि मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं प्रेशर मीन्स मैं कैसे चेक करूँ क्या मैं एक्सपीरियंसिंग प्रेशर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं नेचुरल नहीं हूँ मैं इजी नहीं हूँ सरल नहीं हूँ अंदर कुछ
0: यू आर ऑन योर टोज एक्चुअली
1: सो दैट्स प्रेशर तो अब लेकिन अगेन क्या हो गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी गॉट हैबिचुएटेड टू दिस प्रेशर स्ट्रेस भले हो ना हो चिंता भी शायद ना हो सबको लेकिन प्रेशर
0: हर कोई महसूस करता है बिल्कुल
1: हर कोई महसूस कर रहा है एंड वी हैव गिवन आवरसेल्फ द लिबर्टी
0: टू कंटिन्यू टू टेक इट यू नो अगेन बिकॉज वो हम प्रेशर और चिंता के साथ तो आई थिंक बहुत ज्यादा हमने काम ही नहीं किया इस पे वो दबाव जो है वो महसूस
1: बिल्कुल वो महसूस करते हैं और वो इसीलिए कि इफ आई एम नॉट एबल टू डू इट तब क्या एंड मेजोरिटी हम में से बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि प्रेशर अगर फील करेंगे बिकॉज अगेन दैट्स अ फीलिंग ना मतलब इमोशन है बट आई स्टार्ट फीलिंग दैट पेन तो प्रेशर अगर हम क्रिएट करेंगे तो मेरी परफॉर्मेंस और भी बढ़ जाएगी प्रेशर नहीं होना मतलब वेरी लेट बैक विच इज नॉट ट्रू क्योंकि जैसे ही प्रेशर फील करना शुरू करते हैं तो मेरी परफॉर्मेंस पर उल्टा नेगेटिव इफेक्ट आता है बच्चों में तो कितनी बार हम ये देखते हैं कि प्रेशर के अंडर वो जितना परफॉर्म कर सकते थे वो भी नहीं कर पाते इवन स्पोर्ट्समैन आज उनके लिए कितनी काउंसलिंग और मेडिटेशन क्यों कराई जाती है कि कंपटीशन है सब कुछ है लेकिन जब आप प्रेशर में आ जाते हो यू नो सो मेनी टाइम्स वी सी इन द क्रिकेट मैच कि जब उनके साथ सामने बहुत बड़ा टारगेट है सेट करने का तो अच्छे से अच्छे एंड देन दे से दे क्रम्पल अंडर प्रेशर सच ब्रिलियंट स्पोर्ट्समैन वंडरफुल बैट्समैन लेकिन क्या हो गया सडनली और एक के बाद एक के बाद एक क्योंकि जितना वो टारगेट सेट हो गया वो देख देख के डर लगता गया तो मेरी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस थी उससे भी मैं तो हाउ कैन आई से दैट प्रेशर इज गुड फॉर मी
0: यस प्रेशर कैन नेवर बी इनफैक्ट अगर हम देखें तो कितनी बार लाइव परफॉर्मेंसेस में ब्लॉक हो जाता है
1: कितनी बार एग्जाम के दिन पे बच्चा ब्लॉक हो जाता है
0: बच्चे ब्लॉक हो जाते हैं
1: एंड जिसको कहते हैं ब्लैंक आउट हो गया पूरा बीमार हो जाते हैं उसकी वजह
0: भूल जाते हैं पूरी मेमोरी से गायब हो जाते हैं कितनी बार बच्चों के ये ब्रेकडाउन्स होते हैं
1: आजकल बहुत ज्यादा बच्चों के अंदर स्पेशली जो प्रेशर वो लोग ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं जो हाई अचीवर्स होते हैं बच्चों में भी क्योंकि एक बार वो एक आदत पड़ जाती है फर्स्ट आना है या 90% या जो भी प्लस है वो आना है तो उससे इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट होने के बावजूद वो स्मूथली सेल कर जाएंगे अपने एग्जाम्स के थ्रू अच्छे भी मार्क्स आ जाएंगे लेकिन प्रेशर कि मैं सेकंड नहीं आ सकती और वो उनको पूरे वो स्टडी लीव जब वो पढ़ रहे हैं वो इसी थॉट के साथ है इतना पावरफुल मुझे फर्स्ट आना है
0: सर शिवानी आपने कहा कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो फर्स्ट आते ही जा रहे हैं वो उस प्रेशर में रहते हैं कि मुझे फर्स्ट आना है वो पूरा टाइम उसमें गुजार देते हैं एग्जाम्स होते हैं फर्स्ट आ भी जाते हैं फर्स्ट वो वैसे भी आ सकते थे क्योंकि उनका इंटेलिजेंस लेवल था उतना हाई लेकिन मैं यह जानना चाहती हूँ बहुत से दर्शक भी जानना चाहेंगे कि जब हम उस प्रेशर में होते हैं उस दबाव में होते हैं हमारे साथ क्या हो रहा होता है
1: नॉर्मली क्या होता जैसे आपने कहा वो प्रेशर में है और फिर वो फर्स्ट भी आ जाते हैं अब जब वो फर्स्ट आ जाते हैं वो ये फील करते हैं कि वो प्रेशर बिल्डअप करने की वजह से उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई, तो द नेक्स्ट टाइम वो प्रेशर अपने लिए फिर वो क्रिएट करते हैं। कई बार जरूरी नहीं है पेरेंट्स का प्रेशर हो बच्चों पर, कई बार बच्चे अपना प्रेशर खुद क्रिएट करते हैं, क्योंकि बहुत परिवारों में हम देखते हैं कि पेरेंट्स कह रहे हैं इट्स ओके, रिलैक्स, इट्स ओके, वी हैव नो प्रॉब्लम कि अगर आप सेकंड भी आओ, लेकिन बच्चे ने अपना टारगेट अपने आप सेट किया है कि मुझे फर्स्ट आना है, और जब वो प्रेशर क्रिएट करके आ जाता है ना, वो उसके बिलीफ सिस्टम को और भी स्ट्रॉन्ग कर देता है, और धीरे धीरे वो हैबिट इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि हम दूसरा ऑप्शन ट्राई नहीं करते, क्योंकि मुझे सेकंड नहीं आना ना। अगर सपोज मैंने वो प्रेशर नहीं बिल्डअप किया इस बार और मैं सेकंड आ गई, तो वो एक्सपेरिमेंट के रूप में मेरा तो नुकसान हो जाएगा। ऑफिस में भी अगर हम देखें कोई डेडलाइन है, 2-3-4 लोग सेम डेडलाइन की तरफ काम कर रहे हैं और चारों लोग अचीव कर लेंगे। स्कूल में भी जो लोग वो टारगेट रखते हैं सभी अचीव कर लेते हैं, लेकिन उस यात्रा का क्या,
0: वही जर्नी जो है वो इतनी प्रेशर से भरे हुए।
1: बिल्कुल। अब अगर वो डेडलाइन को पूरा करने में कई बार हमें 1 या 2 दिन होते हैं, लेकिन कई बार 1 महीने के बाद डेडलाइन पूरी होती है। अब 1 महीना 2 लोग वही डेडलाइन पर काम कर रहे हैं, एक बहुत आराम से कि हो जाएगा मैं कर लूंगा, और दूसरा इस थॉट के साथ अगर नहीं हुआ तो
0: नहीं, मुझे करना है,
1: मुझे करना,
0: मुझे
1: है,
0: करना है।
1: क्यों? बिकॉज द फियर बिहाइंड दिस इज अगर नहीं हुआ तो क्या, तो वो अगर नहीं हुआ तो का जो फियर है, तो वो 1 महीना किसमें बीता, फियर में, तो वो फियर क्रिएट करने से मेंटली ड्रेन्ड, फिर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ापन आना। आप देखो एनीबॉडी हु इज गोइंग थ्रू प्रेशर उनका पूरा व्यवहार चेंज हो जाता है।
0: ब्यूटीफुल। आई थिंक वंस अगेन इट कम्स डाउन टू कि डेस्टिनेशन जो है वो तो है इम्पोर्टेंट, जर्नी इज,
1: लेकिन डेस्टिनेशन से ज्यादा शायद जर्नी इम्पोर्टेंट है इस केस में, क्योंकि इस केस में डेस्टिनेशन वर्क है, डेस्टिनेशन बाहर की कोई चीज है कि आपने अचीव कर लिया मार्क्स, रिजल्ट, टारगेट, सैलरी, बोनस, व्हाटएवर, लेकिन जो जर्नी है वो अंदर की चीज है, और वो अंदर की चीज मेरे रिलेशनशिप्स पे भी अफेक्ट करती है। उस 1 महीने के दौरान उस व्यक्ति का घर पे जो रिलेशनशिप रहेगा, एंड इवन मे बी ऑफिस में कोलीग्स के साथ जो रिलेशनशिप रहेगा,
0: वो कहते हैं कि ये तो कांस्टेंट प्रेशर में रहते हैं, ये तो हमेशा ही प्रेशर में रहते हैं,
1: तो वो नेचुरल पता चल जाएगा, और जिस दिन डेडलाइन हो गई पूरी, यू विल सी कि वो डिफरेंट होंगे, क्योंकि जैसे कि उनके ऊपर से एक प्रेशर हट गया। तो मतलब वो प्रेशर के आने से इफेक्ट सिर्फ काम से नहीं रिलेटेड होता, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी फैमिली लाइफ, मेरी सोशल लाइफ सब पे असर पड़ता, एंड मेरी फिजिकल हेल्थ, क्योंकि ये हाई ब्लड प्रेशर, अल्सर्स, आर्थराइटिस, डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर, ये सारी प्रॉब्लम्स ये आ कहाँ से रही हैं? अनहेल्दी माइंड। अब हमने इन इलनेसेस को भी एक्सेप्ट कर लिया कि चलता है, ये तो होता रहता है, लेकिन ये सारा इधर है, क्योंकि आई एम यूज टू लिविंग इन प्रेशर। और डेडलाइन अब एक तो होगी नहीं, या तो है कि ठीक है ये 1 महीना है, ये डेडलाइन पूरी कर लो, उसके बाद आराम है, तो ठीक है बॉडी कहीं ना कहीं थोड़ा ले लेगी, लेकिन उस डेडलाइन के बाद और भी बहुत सारी बातों का होगा। अगर मैंने वो बिलीफ सिस्टम बना लिया कि प्रेशर से ही आई अचीव, तो देन वेरी सून आई विल बी अंडर प्रेशर मोस्ट ऑफ द टाइम।
0: टेंडेंसी आपकी जो है वो ये बना लेते हैं,
1: एंड इफ आई स्टार्ट लिविंग अंडर प्रेशर मोस्ट ऑफ द टाइम, देन द बॉडी कैन नॉट टेक इट एनीमोर, और तब वो प्रेशर सिर्फ यहाँ ड्रेन नहीं करता, यहाँ भी ड्रेन करना शुरू कर देता, एंड फिर उसका रिजल्ट मेरे रिलेशनशिप्स में दिखाई देता, तो आई नीड टू आस्क माई सेल्फ इज इट वर्थ ऑल द पेन दैट आई गो थ्रू। इससे तो अच्छा मे बी, आई डोंट नो, मे बी द स्टूडेंट्स वुड नॉट लाइक, बट आई वुड से इससे तो अच्छा मैं सेकंड आ जाऊँ, वुडंट रियली मेक मच ऑफ अ डिफरेंस।
0: एक्चुअली यस, यू नो दिस, वो फर्स्ट आने का जो या 95% तक पहुँचने का जो एक टारगेट्स होते हैं बच्चों के, जो अगेन यू नो उसके ऊपर इतना प्रेशर करके अगर वो स्मूथली पहुंचा जा सके तो ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा लेके जो चलते हैं,
1: क्योंकि हमें ये मे बी आजकल बच्चे बोलेंगे नहीं, लेकिन आपको क्या पता कंपटीशन है, एडमिशन नहीं मिलती है,
0: या क्वेश्चन व्हिच कैन बी यू नो लाइक जो उठ सकता है वो ये कि अचीवर्स नहीं होंगे फिर हमारे,
1: वो रैंक होल्डर्स,
0: यू नो नॉट हैव दोस अचीवर्स, वो कप उठाने वाले नहीं होंगे हमारे पास।
1: हाँ मे बी, बट आई हैव नेवर सीन कि अगर आप प्रेशर हटा दो तो आपकी अचीवमेंट कम हो जाती है। लॉजिकली एंड एक्सपीरियंस ओनली सेज कि अगर आप प्रेशर हटा दो तो आपकी जो अचीवमेंट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रेशर आपको सिर्फ ड्रेन आउट करता है. तो लेट मी गेट रिड ऑफ द बिलीफ सिस्टम. हाउ आई गेट रिड ऑफ द प्रेशर इज अगेन अ सेकेंडरी, बट फर्स्ट आई हैव टू गेट रिड ऑफ द बिलीफ सिस्टम कि प्रेशर मेरी परफॉर्मेंस को इन्हांस करता है. और ये सबसे ईजी तब हो जाता है जब पता चलता कि डेडलाइन प्रेशर नहीं क्रिएट करती, वो डेडलाइन के बारे में सोच के और अगर मैं नहीं अचीव कर पाऊंगा उसके बारे में सोच के मैं प्रेशर क्रिएट करती. तो प्रेशर से मुक्त होने के लिए अगेन फर्स्ट स्टेप विल बी प्रेस द पॉज बटन. आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप अनुभव कर रहे हैं कि कुछ जैसे बहुत बोझ है आपके ऊपर, स्टॉप एक मिनट के लिए, स्टॉप एंड इंटरप्ट द थॉट. क्योंकि ये एक सीरीज चलती है, नहीं हुआ तो क्या, नहीं हुआ तो क्या, होना ही होगा, बाकी लोग क्या बोलेंगे, इट्स जस्ट गोइंग ऑन वेरी फास्ट. स्टॉप इट. पहला स्टेप होगा पॉज, उससे डिटैच हो जाए. और दूसरा स्टेप ये अंदर देखें बहुत ध्यान से कि जो फियर का इमोशन हम फील कर रहे हैं, आई एम फीलिंग दैट इमोशन एंड आई फील फियर, बट इट्स नॉट दैट आई एम जस्ट फीलिंग द फियर, आई एम क्रिएटिंग द फियर. I first create the fear,
0: then only I can experience
1: then
0: it actually.
1: I feel it. अभी क्या होता है, हमें वो वाला पार्ट नहीं याद रहता, मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं खुद डर क्रिएट कर रहा हूँ.
0: तभी तो डर लग रहा है. वंडरफुल एक्चुअली, यू नो, हम हर बार ये वेरी ट्रू, हम कहते हैं कि मुझे डर लग रहा है, लेकिन डर किसी और ने तो क्रिएट किया ही नहीं, मैंने खुद ही किया.
1: तो ये जब समझ में आ जाएगा कि आई फर्स्ट क्रिएट दैट फियर एंड देन आई फील द फियर. अब फीलिंग का सोर्स क्या है? थॉट्स. थॉट क्रिएट होती है तो फीलिंग फॉलोस. तो जब मुझे ये समझ में आ जाता है ये फीलिंग मैंने क्रिएट की है, देन मैं एक स्टेप और पीछे जाती हूँ. व्हाट इज द थॉट बिहाइंड दिस? कौन सा संकल्प आ रहा है मन में जिसकी वजह से ये फीलिंग डर की क्रिएट हो रही है? एंड मोस्टली द थॉट विल बी, अगर नहीं हुआ तो, अगर मैं फेल हुआ तो, अगर डेडलाइन मिस हो गई तो, वट एवर, ये दिस काइंड ऑफ थॉट्स. एक बार थॉट को देख लिया, देन अगेन जैसे हमने चिंता में किया कि थॉट को
0: कन्वर्ट
1: रिवर्स कर दो, कि जो ये डर वाली फियरसम थॉट्स क्रिएट हो रही है, एंथुसियास्टिक थॉट्स क्रिएट करो, उसको थॉट को चेंज करो.
0: आई हैव द कैपेबिलिटी, यू नो, आई एम कैपेबल.
1: एब्सोल्युटली. सो आई हैव टू चेंज द थॉट, बट थॉट इज बेस्ड ऑन बिलीफ. तो बिलीफ को फिर पकड़ना होगा. बहुत सारी बिलीफ्स जो हमारी लाइफ में सिचुएशंस हैं, बहुत सारी बिलीफ्स को लेकर हम चलते हैं. फॉर एग्जांपल, डेडलाइन है मेरे सामने, तो मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि अगर मैंने ये डेडलाइन नहीं मीट की तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. एंड आई लिव विद दैट फियर. नहीं मीट की तो क्या, नहीं मीट की तो क्या. स्टॉप. और अपने आप को सत्यता से वाकिफ करें कि अगर नहीं मीट की तो भी क्या. एक डेडलाइन मिस होने से कुछ भी नहीं होता है. और फिर भी अगर फील करते कि अगर ये डेडलाइन मिस हो गई तो जॉब चली जाएगी तो भी क्या. अगेन, मे बी अ लॉट ऑफ पीपल विल से हाउ इलॉजिकल. इनके लिए बोलना कितना इजी है.
0: और एक और लोग बोलेंगे कि इसका मतलब तो हम लेजी हो जाएंगे. फिर हम कहेंगे कि ठीक है, फिर उससे भी क्या, अचीव करने से क्या.
1: सो इट्स नॉट दैट वी आर नॉट, सी इट्स अ वेरी थिन लाइन अगेन कि हमें कहाँ समझना पड़ता है कि परफॉर्म करना है लेकिन बोझ रख के परफॉर्म नहीं करना.
0: एक्चुअली हम ना जानते हैं अंदर, वी ऑल अंडरस्टैंड. अगर हम अपने सभी दर्शकों से भी कहें कि अंदर अगर जरा टटोलेंगे, हम जानते हैं,
1: सब पता है, लेकिन काम करना नहीं चाते हैं. तो इसलिए हम कह देते हैं इनको क्या पता ये कितनी, क्योंकि आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि हाँ, वट इज द ट्रुथ बिहाइंड द डेडलाइन, कि आई लूज माई जॉब. बट देन थिंक अबाउट इट, वट्स द वर्स्ट,
0: क्या हो जाएगा
1: जॉब. But I thought if anybody has to hear this, वो कहेंगे अच्छा इनको क्या पता एक जॉब आज मिलना कितना मुश्किल है. Yes, बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपके अंदर वो इमोशनल स्टेबिलिटी है तो 99.999% आपका तो वो जॉब जाएगा नहीं.
0: हाँ, बिल्कुल नहीं जाएगा.
1: मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, ये हमारी हैलुसिनेशन होती है जो हम क्रिएट कर देते हैं. तो ये जॉब जाएगा नहीं. और अगर वर्स्ट केस 0.1% चला भी जाता है लेकिन आप स्टेबल रहे उससे, तो मे बी इट्स जस्ट अ चांस जहां आपके लिए कुछ बहुत अच्छा वेट कर रहा
0: था.
1: लेकिन ये नेगेटिव सोच सोच के तो जॉब पता नहीं जाए या ना जाए, लेकिन और पता नहीं क्या क्या चला जाएगा. दैट आई हैव टू अंडरस्टैंड. मेरी पूरी लाइफ खत्म हो रही है उस प्रोसेस में, मेरे अंदर की खुशी जा रही है. वो नहीं सोचते कि खुशी जा रही है, उमंग उत्साह खत्म हो रहा है, संबंध टूट रहे हैं, तबीयत खराब हो रही है. वी हैव अंडरस्टूड कि चाहे कुछ भी हो जाए, लाइफ विल गो ऑन वेरी ब्यूटिफुली इफ आई एम हैप्पी एंड स्टेबल इनसाइड. Then there are so many openings all waiting for me.
0: Another thing which we at times think is कि बिना प्रेशर के परफॉर्मेंस नहीं हो सकती. बॉसेस वो जो हमने एंगर की भी बात की थी, एंगर नहीं तो प्रेशर दो, प्रेशर दो, प्रेशर के कार के बाद ही परफॉर्मेंस करेंगे, ये परफॉर्म करेंगे.
1: और ये भी पता है डीप डाउन आई नो द ट्रूथ एक्चुअली कि प्रेशर अप्लाई करते ही परफॉर्मेंस अफेक्ट हो जाती है. आप देखेंगे नॉर्मली घरों में या ऑफिस में आप देखिए बहुत आराम से काम चल रहा होगा. इनफैक्ट जस्ट माई एक्सपीरियंस, आई वॉज एट अ हॉस्पिटल रिसेप्शन पर, एंड वो हॉस्पिटल मतलब एक ब्यूटिफुल कल्चर था उस हॉस्पिटल का. वो लोग बहुत ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी पर ध्यान देते थे कि रिसेप्शन पे व्यवहार, बात करने का तरीका शुड बी वेरी गुड. एंड मैंने बहुत बार गई थी उस रिसेप्शन पे, मिली थी उन सब से, एंड आई हैव टू ऑलवेज अप्रिशिएट कि ये लोग यू नो इन स्पाइट ऑफ इतने लोग इनके ऊपर सारे खड़े हैं, ये कितना कम्फर्टेबली काम करते हैं. उस दिन उनके हॉस्पिटल का कोई बहुत सीनियर चेक करने के लिए आकर वहाँ बैठ गए, और वो बीच बीच में ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए. एंड यू नो व्हाट एक्चुअली हैपेंड, वो लोग, वो ही लोग जो रोज बहुत स्मूथली काम करते थे, उस दिन गलतियां करते गए.
0: फंबलिंग, हाँ.
1: गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलत एंट्री, कैश दिया नहीं किसी का वापस, किसी की रिसीट देनी भूल गए. Going all wrong. And जितना वो गलती करते जा रहे थे, उतना वो जो सीनियर बैठा था,
0: और उनका वो belief system और strong होता जा रहा था.
1: Now, and that senior walks off thinking कि ये लोग हमेशा ही ऐसे काम करते हैं. But they are so good otherwise. And यही normally बहुत बार होता है office में. अगर boss आकर वहाँ खड़ा हो जाए तो मेरा सारा कुछ गलत होने लग जाता है. कहते आप फिर कहेंगे आप हमेशा गलतियां करते हो. नहीं सर, हमेशा ठीक हो जाता है काम, पता नहीं आपके सामने क्यों गलती हो रही है. कई बार हमें भी रीजन नहीं पता होता, बट व्हाट इज हैपनिंग, फियर क्रिएट हो रहा है, और फियर क्रिएट होने से मेरी एफिशिएंसी क्रिपल होती जा रही है. और कई बार प्रेशर इस बात का हो जाता है कि अगर मैंने वो परफॉर्मेंस नहीं अचीव की तो क्या होगा. तो ट्रुथ, सत्यता से अपने आप को वाकिफ करें कि मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ. सी, प्रेशर से रिलीव होना डजंट मीन परफॉर्म करना बंद कर दे, बट टेल योरसेल्फ कि मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, और अभी के लिए मेरी कैपेसिटी में ये बेस्ट है. इवन इफ आई एम नॉट एबल टू अचीव वो फर्स्ट रैंक, लेट्स से, लेकिन इतना जो मैं पढ़ूंगी और जो सब करूंगी और अपने आप को इस ट्रेनिंग से लेकर जाऊंगी, ये मुझे नेक्स्ट टाइम के लिए हेल्प करेगा. इस पर शायद मैं थर्ड या फोर्थ आ जाऊँ, नेक्स्ट टाइम आई विल अचीव. इट्स नॉट नेसेसरी कि मुझे इसी बार में उस चीज को अचीव करना. तो वो भी एक बहुत डीप प्रेशर हमारे पर बिल्ड होता है. और जो बहुत सूक्ष्म एक प्रेशर हम सारा दिन एक्सपीरियंस करते, एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर्स, मुझे आपकी एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरना. आई हैव टू लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशन. और बिलीफ क्या है कि इफ आई डोंट लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशन, you will not love me and my self-esteem will go down. अब इसके साथ हम चलते रहते हैं. सत्यता क्या है? Most important कि have to नहीं है. I don't have to live up to somebody's expectations. I can choose to live up
0: I
1: to somebody.
0: I want to, you know. It's again my decision.
1: अगर मैं करना चाहूँ तो करूँ, और दूसरी बात मेरी self-esteem दूसरों के एक्सपेक्टेशंस पे डिपेंडेंट नहीं है. मैं इतना प्रेशर एक्सपीरियंस कर सकती हूँ सिर्फ ये एक रॉन्ग बिलीफ के साथ चल के कि मेरी सेल्फ एस्टीम क्रैश हो जाएगी अगर आपकी अप्रूवल मुझे नहीं मिलती. तो रुक रुक के बीच में ये बिलीव्स को चेक करके ट्रुथ अपने आप को देनी पड़ेगी. और जो बहुत बड़ी बड़े लेवल पर हमारा बिलीफ होता है कि जो मेरे गोल्स और एम्बिशंस मैंने अपनी लाइफ में सेट किए हैं वो मिलेंगे तो ही खुशी मिलेगी.
0: अगेन अचीवर्स की जहाँ हम बात कर रहे हैं, वो कांस्टेंट इस प्रेशर में रहते हैं कि वही मेरी मंजिल है, वहीं जाके मैं खुश होऊंगा. अगेन यू नो अचीविंग दैट विल मेक मी हैप्पी, नॉट द जर्नी.
1: नॉट द जर्नी. तो कहीं ना कहीं मेडिटेशन हमें बहुत ज्यादा इसमें मदद करता है, क्योंकि सिचुएशंस हैं, लोग हैं, लेकिन प्रेशर एक्सपीरियंस करना या नहीं करना ये मेरे हाथ में है. तो मेडिटेशन के कुछ क्षण अगर हम हर रोज बिताते हैं, फ्यू मिनट्स ऑल्सो एवरी डे, तो एक तो वो मेरे बिलीफ सिस्टम्स को राइट ट्रैक पे ठीक रखता है, और मुझे पावर दे देता है कि जब वो सिचुएशन कोई आएगी भी, आई हैव दैट इंटरनल पावर टू बी एबल टू क्रॉस थ्रू द सिचुएशन. एंड मेडिटेशन सबसे इम्पोर्टेंट क्या करता है, हमें फियरलेस बताना शुरू कर देता है. डर धीरे धीरे से, ये सारे जो, बिकॉज ये सारा जो खेल है वो डर का है.
0: डर का, क्योंकि हमने यही माना हुआ अल्टीमेटली कि दिस इज व्हाट माय लाइफ इज, यू नो. अगेन बड़े लेवल पे अगर हम जाते हैं, इसका विस्तार करते हैं, तो वही बात आ जाती है कि यही तक सीमित नहीं है, ये तो इसी पार्ट का हिस्सा है, इस प्ले का
1: ये
0: हिस्सा.
1: सब मेरा रोल है जो मुझे प्ले करना है. मैं एक्टर क्या हूँ, प्योर पावरफुल हैप्पी. लेकिन एक्टर सब कुछ भूल जाता है अपने बारे में और सिर्फ रोल में ही फंस जाता है, और कहीं ना कहीं रोल की परफॉर्मेंस में इतना इंग्रोस्ड हो जाता है कि एक्टर अपनी ओरिजिनल नेचर को कॉम्प्रोमाइज भी करने के लिए रेडी है. कोई बात नहीं शांति नहीं है लाइफ में, कोई बात नहीं खुशी नहीं है, कोई बात नहीं प्यार नहीं है, परफॉर्म तो करना है, अचीव तो करना है. तो मेरी प्रायोरिटी कितनी ट्रुथ से कितनी बाह्य की तरफ चली गई. और जब ये हम अपनी सत्य पहचान, इसलिए सेल्फ रियलाइजेशन इतनी डीप है, जैसे ही वो पता चल जाता है प्रायोरिटी राइट आ जाती है और डेफिनेटली स्टेबिलिटी अंदर आ जाएगी, तो परफॉर्मेंस अपने आप हो जाएगी. उसके पीछे बहुत ज्यादा
0: भागने की जरूरत नहीं पड़ेगा. बहुत सुंदर शिवानी. और जिस तरह से प्रेशर, जिसे हम अगेन बार बार मैं यही कहती हूँ, लेकिन बात यही आ जाती है सामने कि इसके ऊपर हमने काम ही नहीं किया होता. प्रेशर तो चाहिए ही, प्रेशर तो लेना ही पड़ेगा, प्रेशर तो है ही, प्रेशर है तो इसीलिए. लेकिन अब ये बात समझ में आती है कि प्रेशर है ये भी हमने ही कहा है, और प्रेशर हम नहीं लेंगे ये भी हमें ही तय करना है. आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति.
1: ओम शांति.
0: हमने बहुत से ऐसे मुद्दों को साथ मिलकर देखा है और हर बार बात यहीं पर आ जाती है, चॉइस मेरी अपनी है, मुझे अपने आप सिलेक्ट करना है, मुझे अपने आप तय करना है कि किस जिंदगी को मैं अपनाना चाहती हूँ. सारे एस्पेक्ट्स देख लिए, इस जिंदगी पे भी चलते हुए देख लिया, इन सब चीज़ों को सच मान के भी जिंदगी चली हमने, और ये देखा कि हम खुश नहीं थे, हम शांत नहीं थे, हमें प्यार नहीं मिल रहा था, हम प्यार का एहसास नहीं कर पा रहे थे. दूसरा एस्पेक्ट देखा, इन छोटी छोटी चीज़ों से जब खुद को परे करना शुरू किया, सचमुच वो सारी चीज़ें जो हमें चाहिए थी वो अपने आप अपने अंदर से ही बाहर आती गई और हम बांटना शुरू कर देते हैं. ऐसी कोई बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, जो आपके मन में सवाल उठ रहा है, हम हर बार की तरह कहेंगे कि आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9999 3445 9999 3446 9873 666 555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी का ये सफर यूं ही चलता रहेगा. आने वाले एपिसोड्स में कुछ और बातें करेंगे, आपके सवालों को भी उठाएंगे जो खास हमारे पास पहुंच रहे हैं. अब दीजिए इजाजत. ओम शांति.

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस, कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुश।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप ऐकत आहेत रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आनंदाचे सुर पुण्याचा नाद आपण ऐकत आहेत रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियां बांटो।
1: चल चल चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर, कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियां बांटो। चल।

0: मेरी आवाज 107.8 FM खुश रहो, खुशियां बांटो
1: और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर।
3: ओम शांति।
2: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन।
3: थैंक यू।
2: आपने एक बहुत सुंदर बात कही थी लास्ट टाइम कि ईगो इज अ रॉन्ग, क्या था वो, इमेज अबाउट माई सेल्फ।
3: यस, नॉट ओनली अ रॉन्ग इमेज अबाउट माई सेल्फ, अटैचमेंट टू दैट रॉन्ग इमेज अबाउट माई सेल्फ।
2: अटैचमेंट तो बड़ा तगड़ा वर्ड हो गया।
3: अटैचमेंट ही तो मेन वर्ड है। If ego was only a wrong image of myself is easier. Hmm. But when it becomes attachment to a wrong image.
2: तो detach करने को तो बहुत मुश्किल हो जाता।
3: नहीं, easy है, easy है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। हम अगर कोई ऐसी चीज से अटैच हो जाते हैं जो सही नहीं है, हमें सिर्फ सही की नॉलेज चाहिए।
2: अटैचमेंट के साथ साथ बिलीव भी एड हो जाता है कि भाई एक आदमी बोले मैं जनरल हूँ तो हूँ, आई एम दिस माय बिलीफ, आई एम एक्टर हूँ तो हूँ, मैं डॉक्टर हूँ तो हूँ।
3: वो आपका प्रोफेशन है, वो आपका रोल है।
2: आज हम ये बात कर रहे हैं सिस्टर, मैं जनरली वर्ल्ड की बात कर रहा
3: हूँ। क्यों, हमें मालूम नहीं है कि वो हमारा प्रोफेशन है?
2: कोई भी नहीं कहता, कहता आई एम जज सो एंड सो, आई एम जस्टिस सो एंड सो।
3: ईगो डज नॉट नेसेसरी मीन कि आप किसी से सुपीरियर फील करते हैं। ईगो ऑल्सो मीन्स हम किसी से इन्फीरियर फील करते हैं।
2: ब्यूटिफुल।
3: ईगो इज नॉट नेसेसरी कि आई एम सुपीरियर। It is just that I'm attached to a wrong image, so I could be inferior. आप और ड्राइवर, ठीक है, दो लोग। अब रोल वाइज देखें अगर, तो एक सुपीरियर है रोल, एक इन्फीरियर है रोल। अगर हम उसको उन शब्दों में भी लें कि एक मालिक है, एक स्टाफ है, तो फिर आज समाज ने कहा ये हायर है, ये लोअर है। सपोज एक्चुअली तो सिर्फ दो अलग अलग रोल्स है, बट फिर भी अगर हम उसको एक हायरार्की सिस्टम में भी डालें रोल वाइज, तो इनका रोल हायर है, इसका रोल लोअर है। लेकिन रोल हायर और लोअर है, नॉट पर्सन, रोल, पोजीशन। लेकिन क्योंकि हमने सोचा आई एम दिस एंड देन आई गॉट अटैच्ड टू दैट इमेज, अब सिर्फ रोल हायर और लोअर नहीं था, हम हायर और लोअर हो गए। डिफरेंस नहीं है दोनों चीजों में?
2: बहुत है, लेकिन पॉसिबली
3: जस्ट वी हैव टू ओपन द माइंड टू दिस अंडरस्टैंडिंग। रोल हायर और लोअर है, समाज है, इतने सारे काम हो रहे हैं, हालांकि को अलग अलग डेजिग्नेशन, अलग अलग रोल मिले हुए हैं। एक सिर्फ एक कंपनी में भी देख लें हम, तो जैसे आपने कहा प्यून, प्यून से लेके CMD, चलो तो कितने रोल्स होंगे एक कंपनी के अंदर, एक ऑफिस में। रोल्स हायर एंड लोअर है। तो अगर प्यून है और चेयरमैन है, रोल हायर एंड लोअर है, पर्सन ऊंचा और नीचा है?
2: ये तो समाज है।
3: रोल ऊंचा और नीचा है, पोजीशन बड़ी और छोटी है, एज ज्यादा और कम है, व्यक्ति हायर और लोअर है।
2: क्लास में ये फर्स्ट आता है, ये लास्ट आता है, ये फेल होता है, वहां भी तो बोलते हैं कि
3: बेसिस ऑफ अक्वायर्ड ना, ऑन द बेसिस ऑफ अक्वायर्ड, कि कोई फर्स्ट आया, कोई लास्ट आया।
2: अक्वायर्ड क्लास से लेके बिजनेस तक, एक आदमी की फैक्ट्री चल पड़ी, एक की फेल हो गई, तो चल पड़ी वाला बड़ा आदमी हो गया, जो फेल हो गया वो लूजर है।
3: आप मूवी में एक्ट करते हैं, अलग अलग रोल्स हैं, रोल डिफरेंट है एंड एक्टर डिफरेंट है, या एक ही चीज है?
2: नहीं, movies...
3: एक एक्टर नहीं, मूवी में ही देख लेते हैं, एन एक्टर प्लेइंग द रोल, तो देयर इज अ डिफरेंस ना, एक्टर अलग, रोल अलग।
2: करेक्ट, लेकिन एक्टर्स में भी एक ज्यादा पैसे लेने वाला है, कम पैसे लेने
3: That's
2: वाला
3: okay,
2: एक ज्यादा,
3: बट एक्टर अलग, रोल अलग। अब आपने कहा एक एक्टर में भी कोई कम पैसे लेने वाला है, कौन ज्यादा लेने वाला है, मींस कोई ज्यादा सक्सेसफुल होगा, कोई कम होगा, तभी तो मुझे कम और ज्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है, अब एक मूवी है, आपका रोल अलग, मेरा रोल अलग, ठीक है, प्रॉपर मूवी है। सपोज यू आर अ सक्सेसफुल एक्टर, तो यू आर गोइंग टू बी पेड हायर, आई एम गोइंग टू बी पेड लोअर। तो एज एन एक्टर आप हायर हैं,
2: मोर पॉपुलर है.
3: ओके, तो एज एन एक्टर आप हायर हैं, मैं लोअर हूं. लेकिन उस मूवी में ये हो सकता है कि मेरा रोल आपसे हायर है.
2: वो तो हमेशा होता है.
3: हो सकता है. तो उस मूवी में ये हो सकता है कि मैं मालिक हूं, आप स्टाफ है.
2: हो सकता है.
3: हो सकता है. अब रोल वाइज अगर हम इंटरैक्ट करें तो मैं हायर हूं, आप लोअर है. मूवी में रोल
2: देखिए ना, फिल्म मजदूर में दिलीप कुमार एंड मी, आई वाज द मालिक, ही वाज द मजदूर.
3: तो फिर द डिफरेंस हो गया. लेकिन अब अगर आप एक्टर के लेवल पर देखें तो आप कहेंगे कि दिलीप कुमार जी मेरे से
2: सीनियर हैं. और
3: सीनियर हैं. अब इसका मतलब एक्टर अलग, रोल अलग. अगर आप उनके साथ रोल कॉन्शियसनेस पर इंटरैक्ट करने लगे तो फिर आप क्या फील करेंगे? मैं इनसे,
2: मैं मालिक के मजदूर.
3: हाँ, रोल कॉन्शियसनेस. दिस इज रोल कॉन्शियसनेस. अगर आपने रोल कॉन्शियसनेस पे इंटरैक्ट किया तो मैं मालिक, ये मजदूर, ये आपकी ईगो है. और अब ये सिर्फ आपकी ईगो नहीं, इवन जो मजदूर का रोल प्ले कर रहा है वो भी अगर रोल कॉन्शियसनेस में है तो कहेगा ये मालिक, मैं तो मजदूर. वो भी ईगो है. ईगो इज नॉट ओनली हु फील सुपीरियर.
2: इनफीरियोरिटी वाली है.
3: एनीथिंग विच इज नॉट ट्रूथ इज ईगो. आपके लिए आप समझ रहे हैं कि मैं मालिक हूं, ये सत्य नहीं है, तो ईगो है. उसके लिए वो समझ रहे हैं मैं मजदूर हूं, वो भी सत्य नहीं है, तो वो भी ईगो है. अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ.
2: तो फिर सारी दुनिया में हजारों साल से चीजें बने गई है. बहू का ये रोल है, बेटा का ये रोल है, बेटी का ये रोल है, पाप का ये है, टीचर का ये है, गुरु का.
3: ड्यूटी, ड्यूटी.
2: तो उस हिसाब से
3: तो रोल तो है, लेकिन रोल के लेवल पर हमने एक दूसरे के साथ जो इंटरैक्ट करना शुरू किया. अभी इस मूवी में भी रोल तो है ना. मैं मालिक हूँ इस मूवी में, आप स्टाफ हैं, तो रोल है. हम मूवी में अपना रोल प्ले करते हैं. लेकिन अंदर से कॉन्शियसनेस आपको मालूम है ना कि कौन कौन है.
2: तो जब अब टीचर आता था स्कूल में और हम सब मिलकर गुड मॉर्निंग सर करके खड़े होते थे.
3: वेरी गुड.
2: वी आर प्लेइंग अ रोल फॉर अनदर रोल देयर.
3: वी आर एंड वी नीड टू.
2: ओके, डिसिप्लिन.
3: इट्स डिसिप्लिन, इट्स रिगार्ड फॉर द रोल.
2: तो कुर्सी की इज्जत है.
3: रिगार्ड.
2: रिगार्ड
3: इज्जत नहीं. रिगार्ड. इज्जत इज रिस्पेक्ट.
2: यहाँ पर रिगार्ड टू द टीचर्स
3: रोल.
2: रोल.
3: अब उसी स्कूल में एक प्यून भी है. ठीक है, जो स्कूल की सिर्फ घंटी बजाता है. उस प्यून के लिए आपको खड़े नहीं होने की जरूरत है. उस प्यून को आपको अपनी कुर्सी भी देने की जरूरत नहीं है. लेकिन क्या उस प्यून से हम उतने ही प्यार और रिस्पेक्ट से बात कर सकते हैं जितना हम टीचर से कर रहे थे?
2: कर सकते हैं चाहे तो.
3: कैन वी सी द डिफरेंस के दोनों में चीजों में फर्क क्या है? उसी स्कूल में एक प्यून है, उसी स्कूल में एक टीचर है. टीचर के लिए हम खड़े होंगे, प्यून के लिए हम खड़े नहीं होंगे. जरूरत नहीं है. टीचर को हम कुर्सी ऑफर करेंगे, प्यून हो सकता है हमें कुर्सी ऑफर करते हैं. दीज आर रोल्स. रोल, रिगार्ड फॉर द रोल. लेकिन क्या हम टीचर और प्यून दोनों से उतने ही प्यार और रिस्पेक्ट से बात कर सकते हैं?
2: कर सकते तो हैं, लेकिन करते नहीं है. मैं तो नहीं करता.
3: दैट इज वेयर द ईगो इज कमिंग. क्योंकि उस समय हम उस इंसान से नहीं, हम प्यून से बात कर रहे हैं. प्यून से. सेम जो हमने पिछली बार देखा कि आप अपने घर से निकले और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पहुंचे. तो आपने पहले ड्राइवर से बात की. तब ड्राइवर से बात करने के लिए आपने कहा मैं कमांडिंग वॉइस में बात कर सकता हूं. अगर उसने ठीक नहीं चलाया मैं डांट भी सकता हूं, क्योंकि मैं किससे बात कर रहा हूं. रोल ये था कि वो गाड़ी चलाएगा, आप गाड़ी में पीछे बैठेंगे. रोल ये नहीं था कि आप गाड़ी चलाएंगे, वो पीछे बैठेगा. रोल बहुत क्लियर है. रोल ये भी था कि आप उसको बता सकते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, इतने टाइम में हमें पहुंचना है. लेकिन That is a role to role. क्या था? लेकिन person to person, मैं commanding voice में बात कर सकता हूं. मैं उसको डांट भी सकता हूं क्योंकि मैंने सोचा मैं बड़ा हूं वो छोटा है। और जब मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में गया तब मैं ऐसे होके बात करने लगा। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जब हम गए, हम खड़े होंगे रिगार्ड फॉर द रोल, हम कुर्सी भी दे देंगे रिगार्ड फॉर द रोल, लेकिन वहां हम ऐसे होके जो बात करेंगे उसकी जरूरत नहीं है। हम उतनी ही डिग्निटी और रिस्पेक्ट से वहां
2: भी बात नहीं होंगे,
3: वैसे भी नहीं होंगे।
2: जस्ट बी योरसेल्फ।
3: व्हाई व्हेन विल यू बी योरसेल्फ? हम वी विल बी आवरसेल्फ व्हेन वी आर टॉकिंग पर्सन टू पर्सन। आज हम योरसेल्फ क्यों नहीं है? क्योंकि हम रोल से बात कर रहे हैं, तो कोई हमारे से ऊंचा है तो हम ऐसे हो जाते हैं, कोई हमारे से नीचा है हमें लगता है तो हम ऐसे हो जाते हैं। अब ये सब में हमारे बिहेवियर्स बहुत बार बदल जाते हैं, बिहेवियर्स बदल जाते हैं, अहंकार जो हम कहते हैं जो बढ़ता जाता है, फिर वो छोटी छोटी चीजों में कोई भी बिहेवियर हमारे अनुसार नहीं होगा तो हम कहेंगे ईगो हर्ट। तो आज इस लाइन को हम अंडरलाइन करते हैं, अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ। एंड अब सारी इमेज,
2: इज इट पॉसिबल टू हैव अ रॉन्ग इमेज ऑफ द अदर पर्सन?
3: व्हेन आई हैव अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ, I cannot have a right image of the other person.
2: How come?
3: जब आप ड्राइवर से बात कर रहे हैं एंड आपको ये कॉन्शियसनेस है कि आप मालिक हैं, तो आप सामने वाले को भी कौन सी कॉन्शियसनेस में देखेंगे?
2: कि वो मालिक नहीं है,
3: वो ड्राइवर है। तो when a wrong image of yourself, तो wrong image of the other person.
2: सारी दुनिया के साथ फिर रॉन्ग ही रॉन्ग होता रहेगा।
3: इसीलिए तो हम कहते हैं ना,
2: तो यहाँ करेक्ट कर लो तो सब ठीक।
3: Absolutely. यहाँ करेक्ट कर लो तो सब ठीक। Who am I right हो गया।
2: That's why you said it's not very difficult. Now I understand.
3: It's very
2: मैंने बोले एक-एक को कैसे करेंगे?
3: एक-एक को नहीं, जैसी हमारी कॉन्शियसनेस उसी नजरिए से हम सबको देखेंगे।
2: अब देखिए, मैं घर पे बात भी कैसे करता हूँ, इफ आई कॉल अ कुक हू इज यंग, छोटा, हे शंकर इधर, कोई सीनियर है, दीदी जरा प्लीज रोटी, तो वो डिफरेंस तो होता है ना?
3: क्यों डिफरेंस होता है?
2: मैं करता हूँ,
3: हम करते हैं। हाँ। लेकिन डिफरेंस होता नहीं है, हमने डिफरेंस क्रिएट किया है, आज हम चेंज कर सकते हैं।
2: और छोटों को मतलब बोलते हैं, ए इधर तू इधर, आप इधर आइए। नॉर्मली तो ऐसे करते ना कि तू तुम और आप।
3: हाँ।
2: तो उसमें टोन में डिफरेंस आ जाता है।
3: टोन में डिफरेंस,
2: तू उसको बोला छोटे को, तुम उसको बोला छोटे।
3: टोन में डिफरेंस, सोच में डिफरेंस, व्यवहार में डिफरेंस, वाइब्रेशन में डिफरेंस, हर एक के साथ मिलते मिलते डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट होते हुए अपनी ओरिजिनलिटी। अब जैसे आपने कहा उससे बात की इधर ला, उससे बात की हाँ जी आप लेंगे, ये दो बार चेंज होने की क्या जरूरत है?
2: ये होता रहता है नेचुरली।
3: अब ये होते रहने से यहाँ क्या होता जाएगा?
2: वहां तो इजी है, नॉर्मल हो गया ना।
3: नॉर्मल हो गया, इसीलिए तो एंगर इरिटेशन एजिटेशन भी तो नॉर्मल हो गया ना। ईगो नॉर्मल हो गया तो बाकी सारी नेगेटिव इमोशंस नॉर्मल में आ जाएंगे। ईगो हट गया,
2: अभी आप उसको नेगेटिव बोल रहे हैं, ये तो बस
3: इनमें से कौन सा नेगेटिव नहीं है? हर्ट हुआ नेगेटिव है, उदास हुए नेगेटिव है, इरिटेट हुए नेगेटिव है, एंगर है नेगेटिव है, मैनिपुलेट आपने कहा किया नेगेटिव है, ईर्ष्या हुई नेगेटिव है, इसमें से पॉजिटिव कौन सा? एंड सिंपल है, नेगेटिव मतलब जो यहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, यहाँ
2: उदास और गुस्सा अगर दुख में आए तो तकलीफ में कि मेरा बेटा अगर रॉन्ग कर रहा है और मैं उदास भी हुआ और दुख भी हुआ, वो भी नेगेटिव है? नो,
3: बिकॉज आई हैव क्रिएटेड पेन।
2: फॉर होम?
3: आई हैव क्रिएटेड पेन फॉर,
2: आई नो अ पर्सन,
3: आई हैव क्रिएटेड पेन।
2: बोलेंगे लड़का, आपका बेटा है, किसी का बेटा रॉन्ग काम कर रहा है, किसी ड्रग पे जा रहा है, किसी गलत रास्ते पे जा रहा है, तो उदास भी है गुस्से में भी है, तो वो नेगेटिव हो गया,
3: पेन तो क्रिएट हो ही गया ना।
2: जैसे प्यारा वाला पेन,
3: प्यारा वाला पेन नहीं होता, कोई भी पेन पेन होता है, प्यारा वाला पेन कौन सा?
2: प्यार से नहीं डांटते
3: आप, कुछ प्यार से समझा रहे हैं और आप पेन क्रिएट कर रहे हैं, दोनों में कितना फर्क है? पेन क्रिएट करना,
2: हाँ, जो 6 महीने 7 महीने के बच्चे को तो प्यार से डांटना अलग ही होता है, और वो 6-10 साल का हो जाता है,
3: क्रिएट हो रहा है, दर्द क्रिएट हो रहा है, एंग्जाइटी क्रिएट हो रही है, वरी क्रिएट हो रही है, चिंता क्रिएट हो रही है।
2: 2 साल के बच्चे को वही मैं प्यार से जब करना डांटना चाहता हूँ तो कितने प्यार से डांटता हूँ, और वो 20 साल वाले को,
3: बिकॉज अंदर एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप हो गई है ना 20 साल वाले से, 2 साल वाले से एक्सपेक्टेशंस नहीं है, तो पेन तो क्रिएट हो रही है। अब एनी पेन क्रिएटेड, आपने कहा प्यार से डांट रहे हैं, मतलब एक्चुअली वो अटैचमेंट है, अटैचमेंट है अगेन।
2: अटैचमेंट टू व्हाट?
3: अटैचमेंट टू द पर्सन। तो हमने कहा प्यारा वाला दर्द, प्यारा वाला दर्द कैसे है? दर्द तो दर्द ही है, अगर हमने उसको इंडोर्स कर दिया हम उस पर वर्क नहीं करेंगे। दर्द तो दर्द ही है, इट इज नॉट गोइंग टू मेक मी फील नाइस, इट इज नॉट गोइंग टू मेक द अदर पर्सन फील नाइस। आर मंत्रा वॉज मेक मी फील नाइस, मेक द अदर पर्सन फील नाइस, दिस इज नॉट गोइंग टू मेक मी फील नाइस। तो वो हम देखेंगे कि कैसे हमें रिश्तों में भी सबके साथ रहते हुए, सबका ध्यान रखते हुए, सारे रोल्स निभाते हुए, लेकिन ये प्यारा वाला दर्द अब हमें क्या करना है धीरे धीरे, क्योंकि वो प्यारा वाला दर्द जो आप कह रहे हैं वो चिंता होती है। चिंता एंड केयर डिफरेंट, केयर फॉर समवन एंड वरी फॉर समवन, इज देयर अ डिफरेंस? क्या फर्क होगा केयर एंड चिंता?
2: हाँ, केयर में आदमी प्यार करता है और ठीक करता है चीज को, चिंता में उसके मिस्टेक्स ढूंढ के उसके ऊपर रोता रहता है, कुड़ता रहता है,
3: उसमें भी वो ठीक करेगा, लेकिन चिंता मतलब वो अंदर एक कंटिन्यूस चलती जाएगी, एक वाइब्रेशन जो हेल्दी नहीं है। केयर में आप करेंगे उसके लिए सब कुछ, कंसर्न में आप उसके लिए प्लान करेंगे कि ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, चिंता में हम फियर और एंग्जाइटी क्रिएट करते रहेंगे। तो वी कैन नॉट से वो प्यारा है, नो पेन इज प्लेजेंट, नो पेन इज हेल्दी, सो वी हैव टू टेल आवरसेल्फ नो आई हैव टू चेंज दिस, एंड दैट इज ऑल्सो बेस्ड
2: नो डांट इज हेल्दी,
3: केयर एंड कंसर्न इज वेरी हेल्दी।
2: केयर कंसर्न,
3: केयर एंड कंसर्न अलग है चिंता। चिंता मतलब आपके यहाँ अंदर नेगेटिव चलेगा, ऐसा हुआ तो, अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो, अगर उनसे वो काम पूरा नहीं हुआ तो, ये जो करियर वो चूज कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आ गई तो, क्या होगा मेरे बेटे का, सोचा क्या था, हुआ क्या, ये इसमें से एक भी थॉट पॉजिटिव नहीं है, एक भी थॉट इसमें से पॉजिटिव।
2: सही बात है, अगर वाइफ अगर ऐसे बोले या हस्बैंड ऐसे बोले, और उसको वाइफ और हस्बैंड बोले आप इस तरह ऐसे वर्ड्स क्यों बोलते जा रहे हो, तो बोले आई नो माय चाइल्ड, वो ऐसा ही करता है, वो हमेशा ही मिस्टेक करता है, इसीलिए तो कर रहा हूँ चिंता में।
3: तो ये केयर एंड कंसर्न नहीं,
2: कंसर्न भी है और खुद को एंडोर्स भी कर रहे हैं,
3: ये कंसर्न नहीं है, ये चिंता है। केयर एंड वरी, केयर करना है, एंड केयर मीन्स उनके लिए हर थॉट हमें प्योर क्रिएट करनी है, उनको हर राय भी देनी है, हर बार देनी है, नहीं मान रहे हैं तो भी देनी है, क्योंकि केयर है। अगर केयर खत्म हो गई तो इनडिफरेंट हो जाएंगे कि ठीक है फिर जो करना है करो, फिर तो केयर छोड़ दी, कंसर्न छोड़ दिया, छोड़ना भी नहीं है,
2: इनडिफरेंट नहीं होना है,
3: इनडिफरेंट नहीं होना है। लेकिन चिंता मीन्स हमने अंदर नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया।
2: बट मेरा प्रॉब्लम यही है, या तो मैं बहुत बोल देता हूँ या मैं एकदम इनडिफरेंट हो जाता हूँ। ठीक है, आज से नहीं।
3: इनडिफरेंट अगर हो गए तो हमने अपनी केयर,
2: बीच का जो आप वाला रास्ता है मुझे मुश्किल लगता है।
3: नो, नॉट एट ऑल।
2: या तो मैं डायरेक्ट तो तुम समझ में नहीं आता कितनी बार बोला ये से इतना नुकसान हो सकता है, ये हो जाता है, तुम ऐसी बात करते हो, ये क्या हो जाएगा, ये करो लॉस हो जाता है, दर दर दर दर एंड ओवर, अदरवाइज इनडिफरेंट जॉब।
3: ओके,
2: जो करना है करो, गिरो आपके
3: समझ में आएगा। अगर जो करना है करो, गिरो और अपने आप समझ में आएगा। अच्छी थॉट तो नहीं है ना?
2: नहीं, ये इनडिफरेंट, या तो मैं ऐसा हो जाता हूँ कि बच्चा 10 बार दिए में हाथ लगाएगा ना, तो बोले ठीक जलने दो एक बार, उसको पता चले।
3: हम 10 बार उसको बोलेंगे कि नहीं हाथ लगाना, ये केयर है। वो नहीं भी सुन रहा है तो भी बोलेंगे। लेकिन चिंता क्या है? अगर लगाया तो, इसको इतनी बार बोला फिर भी लगाया, हर बार ये ऐसे ही करता है, इसका आगे कैसे होगा? देन वी आर नॉट रेडिएटिंग गुड वाइब्रेशन टू द चाइल्ड। तो ये सारे एक एक वर्ड्स में क्लैरिटी, क्योंकि नहीं तो हम क्या करते हैं, चिंता को केयर बोल देते हैं. आई केयर फॉर यू, नो आई वरी फॉर यू. वरी इज नॉट हेल्दी, केयर करें. केयर इज वेरी हेल्दी. एंग्जाइटी इज नॉट हेल्दी, कंसर्न इज हेल्दी. अब ये दोनों शब्द इस ईगो कॉन्शियसनेस से शिफ्ट हो जाएंगे. ईगो है, अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज है, सामने वाले के भी एक इमेज से अटैचमेंट है, तो इमेज से एक्सपेक्टेशन है, तो वरी एंग्जाइटी फियर आएगा. इसीलिए ये ईगो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे वर्क करना. क्योंकि अगर ये खुलना और हटना शुरू हो गया, जीवन के बाकी सारे एस्पेक्ट स्ट्रीमलाइंड हो जाएंगे. इट्स ओनली दिस वन थिंग, अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ. अगर आपसे कोई कहे हु आर यू, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ,
2: तो मैं तो सिर्फ नाम बताऊंगा.
3: नाम बताएंगे बस. फिर हम एक दूसरे के बारे में पूछना और बताना शुरू करेंगे ना. तो हम अपने परिचय में क्या बताते हैं, सबसे पहले हम अपना नाम बताते हैं, राइट? फिर हम क्या कर रहे हैं वर्तमान समय वो बताते हैं, अपनी पोजीशन बताते हैं, हम किस फैमिली से हैं वो बताते हैं. ये सब कुछ हम अपने परिचय में बताते हैं. एक विजिटिंग कार्ड पे भी हमारा ये सब कुछ ही लिखा होता है, दिस इज हु आई एम. अब अगर somebody asks me who I am, then I will tell all this. If I have to visualize, एक picture create करें, image, चित्र, who am I? तो सामने क्या आएगा? आपको अपनी picture लानी है सामने कि who am I?
2: शीशे में दिखता है वही आएगा.
3: जो शीशे में दिखता है वही आएगा. तो जैसे ही हमने कहा I, तो family, position, ये सब कुछ I में आता है. और जैसे ही हमने कहा I का picture, तो आपने कहा शीशे में जो दिखाई देता है वो सामने आता है. अब ये पिक्चर बॉडी, इस शरीर के एक एक अंग के लिए अगर हम बात करें, सी, आप कहेंगे आज मेरा सर दर्द हो रहा है. आप कहेंगे चलते चलते आज मेरा पैर मुड़ गया. मैं चाकू से कुछ काम कर रहा था किचन में, मेरा हाथ कट गया. एंड फाइनली वी कैन से टुडे माय होल बॉडी इज हर्टिंग, मेरा पूरा शरीर दर्द हो रहा है आज. माइन, इसके लिए हमने कभी नहीं, आपने ये नहीं कहा मैं उंगली कट गई, मैं हाथ कट गया, नहीं, मैं सर दर्द हो रहा हूं, मैं आंखों पे चश्मा लग गया. मैं तो किसी के लिए भी नहीं कहा,
2: मेरी आंखों पे,
3: मेरी आंखों पे चश्मा लग गया, मेरे बाल ये हो गए, मेरा हाथ दर्द हो रहा है, मेरा सर आज दर्द हो रहा है, ये मेरा है. तो जबकि ये मेरा है, This body is my body, not I body. And ये भी एक मिनट पहले आपने कहा who am I, पिक्चर सामने लाए, तो कौन सी पिक्चर सामने आ रही है?
2: जो मैं मिरर में देखता
3: हूँ. जो मैं मिरर में देखता हूँ, मतलब ये, अब ये पिक्चर जो मैं मिरर में देखता हूँ, ये I है या माइन है?
2: My body
3: है. तो मिरर में तो I see my body. We even say I was looking at my face in the mirror, my face. We don't say I'm looking at I face in the mirror. I'm looking at my face in the mirror. My face. तो mirror में I दिख रहा है या my दिख रहा है?
2: My
3: दिख रहा है. थोड़ी देर पहले हमने कहा I mirror में क्या दिखता है, वो I है. This is attachment to wrong image. ये सब कुछ my है, इसको हमने I कह दिया. This was the first thing that we acquired. तो ये जो हमें शीशे में दिख रहा है, ये शरीर, टुडे आई हैव टू फर्स्ट आस्क माई सेल्फ, ये शरीर, ये आय है या माई है?
2: ये
3: मैं है या मेरा है?
2: मेरा शरीर, माई बॉडी.
3: माई बॉडी. थोड़ी देर पहले आपने कहा हु एम आई, ना ये बात तो छोटी लग रही है.
2: नहीं, आई हैव टू इमेजिन, यू सेड सपोज यू हैव टू इमेजिन योरसेल्फ.
3: यस, यू हैव टू इमेजिन योरसेल्फ.
2: आई सी, इमेजिन व्हाट आई लुक इन अ फोटोग्राफ.
3: हु एम आई? यस, सो व्हाट यू लुक इन अ फोटोग्राफ. आपने ये भी तो पहना हुआ है फोटोग्राफ में, ये ड्रेस. तो इफ यू हैव टू इमेजिन, विल यू लुक एट दिस ड्रेस?
2: नो.
3: नहीं, पर ये भी तो पहनी हुई है.
2: मैं तो चेहरा यूजुअली मोस्टली चेहरा करूंगा ना.
3: ये नहीं, ड्रेस के लिए हमें बहुत क्लियर है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी ड्रेस है. मैंने पहनी हुई है ड्रेस
2: जी,
3: वे वेरी क्लियर. लेकिन ये जो है, इसके लिए हम नहीं कहते ये मैंने पहना हुआ है, ये मेरे शरीर, मैंने पहना हुआ है. नहीं, हु एम आई? attachment to the first wrong image of myself. What we acquire first, the body. सारे जो हमारे रिश्ते हैं वो रिश्ते आए हैं या माइन है?
2: मेरे रिश्ते हैं.
3: तो सारे रिश्ते भी मेरे हैं. सारे जो रोल्स हैं
2: मेरे रोल्स हैं.
3: सारी जो जिम्मेवारियां हैं वो मेरी जिम्मेवारियां हैं. सारी जो प्रॉपर्टी है, पोजेशन है, जो कुछ मैंने खरीदा है इस जीवन में, दैट्स ऑल माइन. हर चीज इस शरीर से लेके रिश्तों तक, डिग्री जो मुझे मिली, पोजीशन जो मुझे मिली, और जो कुछ मैंने खरीदा इस जीवन काल में, जो स्किल मैंने अक्वायर किया, जो टैलेंट मेरे पास है, सब कुछ मेरा है. मैं नहीं, ये सब कुछ मेरा है. लेकिन छोटी सी गलती हमने क्या की, जो सब कुछ मेरा है हमने उसको आई कह दिया. मैं, आपने थोड़ी देर पहले कहा नेचुरल है ना, मैं एक्टर, उसमें रोंग क्या है, नेचुरल है. सिमिलरली नेचुरल था ना इसको भी आई कहना, हमने कहा ये रोंग क्या है. सब कुछ जो मेरा है उसको आई कह दिया, और क्योंकि सब कुछ जो मेरा है उसको आई कह दिया, आई कौन है वो नहीं मालूम. सपोज इस ड्रेस को आज एक दिन के लिए ये एक्सपेरिमेंट करके देखें पूरा, कि क्या क्या फर्क आता है जीवन जीने के तरीके में. आज आपने ये जो व्हाइट कुर्ता पजामा पहना है, सिर्फ आज, एक दिन भी नहीं, एक घंटा, आज एक घंटे के लिए यहां से चलें, अपना सारा काम करें सिर्फ इस कॉन्शियसनेस के साथ, ये मैं हूं.
2: पॉसिबल भी नहीं है ना इमेजिन.
3: एक मिनट कॉन्शियसनेस में ये एक शिफ्ट डालें. एक्टर है ना, करना इजी है. क्या फर्क पड़ेगा, ये ड्रेस जो मैंने पहनी है
2: ये
3: मैं हूं. व्हाट विल चेंज इन माय वे ऑफ लिविंग विद दिस वन कॉन्शियसनेस, ये ड्रेस जो मैंने पहनी हुई है ये मैं हूं. चेक टुडे फॉर एटलीस्ट 1 आवर कि हाउ डू यू फील एंड व्हाट डिफरेंस डज इट मेक.
2: चलिए, इट्स अ गुड होमवर्क फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.
3: ओम शांति.
2: ओम शांति. थैंक यू.
4: ईगो इज अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माय सेल्फ. ईगो डज नॉट मीन ओनली फीलिंग सुपीरियर टू अदर्स. ईगो इज ऑल्सो वेन वी फील inferior. Any image which is not our true identity or the true identity of others is ego. Our roles and positions in society are different. For example, a chairman and a driver. We called the roles higher and lower. We then got attached to our roles and made them our identity. Higher and lower roles then became superior and inferior people. This created ego. External courtesies and protocol need to be according to roles and positions, which is regard for the role. Respect should not change according to the role. Respect is for the soul, which should be same for everyone. When we say I, we visualize what we see in the mirror. The body is the first thing we acquire and make it our identity. But for every part of the body, we call it my. Our body, relationships, position, religion, nationality, everything for which we said I, truth is, it is my.
5: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099 99 559 660.

0: आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे? अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। The person who I have to live with 24/7, I need to be comfortable with that person. I have to live with myself. दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, so we need to say.
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार श्रोताओं, जय श्री कृष्णा। आप सुन रहे हो रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका हम सफर RJ संजय। स्वागत है आपका हमारी श्रृंखला श्री कृष्ण की 16 कलाएं के 7वें अध्याय में। आज हम जानेंगे वह अद्भुत कला जिसे कहते हैं वाद्य माधुरी। यह वह माधुरी है जिसमें श्री कृष्ण के वाद्य यंत्र की ध्वनि प्रेम भक्ति आनंद का अद्भुत संगम बन जाता है। जब काना बांसुरी बजाते हैं तो केवल स्वर ही नहीं बल्कि हृदय की गहराई को तक प्रेम की धारा बहने लगती है। मृदंग की लय, वीणा की मधुरता और अन्य वाद्यों का संगम सब मिलकर भक्ति का ऐसा वातावरण रचते जिसमें संपूर्ण वृंदावन डूब जाता है। यही है वाद्य माधुरी, जहाँ वाद्य यंत्र केवल ध्वनि नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का साधन बन जाता है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं एक सुंदर और प्यारा श्री कृष्ण का गीत।

श्रोताओ जय श्री कृष्णा। श्रोताओ श्री कृष्ण की सातवी कला वाद्य माधुरी का परिचय होना अपनी जीवन सफर में बहुत ही जरूरी है। कृष्ण की बांसुरी केवल एक वाद्य नहीं था, वह उनके हृदय की आवाज थी। जब ये बांसुरी बजाते तो वृंदावन का हर जीव, गोपी, ग्वाल, पशु पक्षी उस स्वर में खो जाता। उनकी बांसुरी की तान आत्मा को ईश्वर को जोड़ने का माध्यम बन जाती। यही है वाद्य माधुरी का सार, जहाँ स्वर केवल संगीत नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का दिव्य संदेश बनकर संपूर्ण सृष्टि को आलोकित करता है। तो श्रोताओ सुनते हैं एक मधुर भक्ति गीत।

जय श्री कृष्ण श्रोताओं, भागवत पुराण में वर्णन आता है कि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो गोपियां अपने घर आंगन का काम छोड़कर उनकी ओर दौड़ पड़ती, गाय चरना छोड़कर उनकी ध्वनि की ओर खींच जाती। यह वाद्य माधुरी हमें बताती है कि ईश्वर की ध्वनि हर जीव को अपनी ओर आकर्षित करती है। राधा के लिए तो कृष्ण की बांसुरी आत्मा की पुकार थी, प्रेम का वह स्वर जो सीधे हृदय को छू लेता है। यही है वाद्य माधुरी का सार, जहाँ संगीत केवल ध्वनि नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का दिव्य सेतु बन जाता है। तो दोस्तों, सुनते हैं और एक प्यारा सा सुंदर गीत।

जय श्री कृष्ण श्रोताओं, वाद्य माधुरी हमें ये सिखाती है कि जीवन भी एक वाद्य है। जब हम अपने मन को शुद्ध करते हैं तो ईश्वर की ध्वनि उसमें गूंजने लगती है। कृष्ण की बांसुरी हमें ये संदेश देती है कि सच्चा संगीत वही है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे। यह केवल मनोरंजन नहीं बल्कि साधना है, जहाँ हर स्वर भक्ति का दीप बनकर आत्मा को आलोकित करता है। वाद्य माधुरी का दर्शन हमें ये प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन को ईश्वर की ध्वनि के साथ एकाकर करें, तभी हमारा अस्तित्व प्रेम भक्ति और आनंद का मधुर संगम बन जाता है। तो दोस्तों, सुनते हैं हम एक प्यारा और सुंदर गीत।

हे श्री कृष्ण श्रोताओं, श्रीमद् भागवत में कहा गया है, वेणु कन्वयंतो गोविंद। इसका भावार्थ है कि जब गोविंद बांसुरी बजाते हैं तो संसार की सारी दुनिया मौन हो जाती है। यह श्लोक हमें बताता है कि कृष्ण का वाद्य केवल संगीत नहीं बल्कि ईश्वर की पुकार है। उनकी बांसुरी का स्वर आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला सेतु है, जो हर जीव की प्रेम और भक्ति की धारा में बह ले जाता है। तो दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा और सुंदर गीत।

जय श्री कृष्ण श्रोताओं, यह थी शास्त्रीय कला वाद्य माधुरी। यह कला हमें सिखाती है कि जीवन का हर स्वर ईश्वर की ध्वनि से जुड़ सकता है। जब हम अपने मन को शुद्ध करते हैं, तो उसमें भी वही दिव्य संगीत गुंजने लगता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण की आठवीं कला अलंकार माधुरी, यानी अलंकारों की मधुरता। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण दोस्तों, सुनते रहो, सुनते रहो। इसी के साथ सुनते हैं हम एक छोटा सा सुंदर गीत।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया। सबको डांट रहा था तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा। इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे, किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां और ठीक करने की उंगली भी यहां। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं, उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के स्पेशल एपिसोड में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान सुनील कुमार।

0: नमस्कार
1: नमस्कार, कैसे हैं आप?
0: बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मैं पुणे में हूँ, खराड़ी में।
1: अच्छा अच्छा,
0: मेरी बेटी के पास।
1: हाँ, सुनील कुमार जी, मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आपके प्रोफेशन के बारे में, और फिर आपकी साहित्य से जो रुचि है वो कैसे जुड़ा।
0: मैं 35 साल नौकरी है जो है अपनी रेलवे में रही है, नॉर्दर्न रेलवे नवी दिल्ली। इससे पहले से ही मैं कविताएं लिखते रहा, पर मैंने अपनी किताबें 2014 में ही छपी है। बाकी मेरी रुचि कविता लिखना और गजल लिखना, लघु कथाएं लिखना है। रेलवे में एसीएम रिजर्वेशन करके रिटायर हुआ हूँ।
1: क्या
0: रिजर्वेशन? ACM रिजर्वेशन, असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर रिजर्वेशन, IRCA बिल्डिंग, नॉर्दर्न रेलवे हेडक्वार्टर।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
0: वैसे टिकट कलेक्टर से नौकरी जारी की थी, धीरे धीरे प्रमोशन लेते लेते मैं इस पद तक पहुंचा।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, काफी मेहनत की है आपने, तो अच्छा लगा हमें सुनकर आपका ये प्रोफेशन के बारे में। और साहित्यिक यात्रा के कुछ अनुभव सुनाइए, और सबसे पहली जो कविता या कहानी जो आपको आपने लिखी है उसके बारे में बताइए और उसे सुनाइए अभी।
0: शुरू में मैंने जो बिल्कुल ही अलग थी उस कविता को ये कहूं कि मतलब वो कविता मेरे लिए बहुत ही मार्मिक थी।
1: जी जी जी।
0: बस सब तरंग में से आदमी इस तरह से मतलब ये होता है कि उसको इंद्रधनुष नजर आता है। मेरा जीवन एक किरण की तरह है। मेरा जीवन एक किरण की तरह है जो एक कृत्रिम प्रिज्म में से निकलकर सात रंगों में विभक्त हो जाता है। बैनी आपी नाला में इसी तरह मेरा जीवन का शुरुआत थोड़ी थोड़ी वहां से हुई।
1: अच्छा अच्छा।
0: उसके बाद मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी। अभी मैंने 2-3 कविताएं तो मेरी इस तरह से है कि उम्र के हिसाब से उम्र को ना देखो यारो है, और उसके अलावा और भी है।
1: जी जी जी।
0: तो मैं सुनाना चाहता हूँ, उम्र को ना देखो यारो।
1: क्या बात है,
0: अगर आपकी अनुमति हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए सुनील।
0: उम्र को न देखो यारो, आंखों की चमक गई नहीं, दूर का भी दिखता है रोशनी की दमक गई नहीं। कॉलेज के दिन याद है, कॉलेज के दिन याद है, उसकी मुस्कान गई नहीं। कॉलेज के दिन याद है, उसकी मुस्कान गई नहीं। चलकर पार्क में घूमना, चलते पाव भी थकते नहीं।
1: अच्छा, क्या बात।
0: सैर करने निकले जब भी बचपन की यादें गई नहीं। हम उम्र बैठे जब चौपाल में, मस्करी से तौबा नहीं। हो गया युग मोबाइल का, हाथों से फेसबुक हटता नहीं। इंस्टाग्राम पर तस्वीर देखना, व्हाट्सएप मोह घटता नहीं। बढ़ता चला हूँ कारवा के साथ, जिंदगी में गमगीन साया नहीं। हंसते चलते प्रेम बांटते रहे, अब वो कंचन काया नहीं। उम्र को दराज में रख देना अब, हमजोली के हाथों में हाथ सही। मित्रों और संगिनी का साथ रहे, मुड़कर अब पीछे देखना नहीं।
1: जी जी जी, बहुत सुंदर कविता सुनाया सुनील कुमार जी। आइए आगे बढ़ते हैं, और मैं चाहूंगा साहित्य सम्मेलन या कवि सम्मेलन में आपने कोई शिरकत की हो तो उसके बारे में बताइए कुछ। जी,
0: साहित्य सम्मेलन हमारे विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन जो है मोर भवन

0: रोड में होता है वहाँ पर विनोद नाइक जी आजकल वहाँ पर ये करते हैं, उसका अध्यक्षता वगैरह करने के लिए बहुत से लोगों को बुलाया जाता है बीच बीच में।
1: अरे वाह।
0: और काफी कवि इकट्ठा होते हैं वो, जहाँ अपनी वो कविताएं सुनाते हैं, सब लोग उसका आनंद लेते हैं और अच्छी कविताओं का वहाँ पर ये समागम होता है, कवि समागम होता है।
1: अरे वाह।
0: बीच हर हफ्ते, पहले हफ्ते में कवि सम्मेलन होता है, दूसरे हफ्ते में गजल वगैरह का कार्यक्रम होता है, तीसरे हफ्ते में लघु कथा का कार्यक्रम होता है, शनिवार को ये कार्यक्रम होते हैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया।
0: तो मैं अपनी एक कविता उसी समय की मैं सुना रहा हूँ
1: जी।
0: तो क्या करे, एक गजल के रूप में है। मिलने की आस लगाई हमने, मिलने की आस लगाई हमने, आई न वह रात तो क्या करे, आई न वह रात तो क्या करे, वादे किए उन्होंने बहुत मगर भूल गए जज्बात तो क्या करे।
1: क्या बात।
0: जिंदगी भर रहता साथ उनके, जिंदगी भर रहता साथ उनके, नहीं हुई मुलाकात तो क्या करे, नहीं हुई मुलाकात तो क्या करे, मंडराते रहे बादल आसमां में, नहीं हुई बरसात तो क्या करे, नहीं हुई बरसात तो क्या करे। कश्ती तो लग जाती किनारे से, कश्ती तो लग जाती किनारे से, बदल गए हालात तो क्या करे, बदल गए हालात तो क्या करे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: कैसे गुजर रही क्या हम बताए, दुखड़े है दुखड़े मालूमात तो क्या करे, है दुखड़े मालूमात तो क्या करे, इंतजार में रहा चांद आसमान में, इंतजार में रहा चांद आसमान में, चांदनी आई न साथ तो क्या करे, चांदनी आई न साथ तो क्या करे, गुमशुदगी की तलाश में जमाना छप गई जाहिरात तो क्या करे, दो राहे पर आकर भटक गया, दो राहे पर आकर भटक गया तू नी, उन्हें न भाई सौगात तो क्या करे, उन्हें न भाई सौगात तो क्या करे।
1: क्या बात है सुनील सर, बहुत ही सुंदर कविता आपने सुनाया और आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है। सुनील कुमार जी, एक और होली पर भी आपकी कविता लिखी हुई है, तो होली पर भी सुनाइए
0: जी। आई होली, होली आई रे,

0: ये होली रंग की ये होली कहीं बरसाने की होली रे, राह है तक रही सावरी रे, राह है तक रही सावरी रे, आई होली होली आई रे।
1: जी जी जी
0: मीठी मीठी बोली, मीठी मीठी बोली,

0: आई होली होली आई रे, आई होली होली आई रे।
1: सुनील कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत ही प्यारा सा होली पर भी आपने कविता सुनाई, अच्छा लगा हमें। और आइए इसके साथ में जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक लघु कथा छोटी सी अगर आपके पास हो तो सुनाइए, उसके बाद हम लोग एक मैसेज के साथ कार्यक्रम को पूरा करते हैं। जी
0: सुनाने जा रहा हूँ। लघु कथा का शीर्षक है कान बजते हैं। कान बजते हैं
1: जी।
0: घर वाली ने आवाज लगाई, उठ भी जाओ, सुबह हो गई है, सूरज उगाया है, बच्चों को छोड़ना भी है और आप कि अभी तक नींद से जागे नहीं, रिटायर्ड क्या हुए? खाने और सोने के अलावा घर के काम में हाथ बटाया करो। गजानन सोते से जाग गए, तड़ातड़ी में नहाने चले गए, तौलिया ले जाना बोल रहे। अजी सुनती हो, जरा तौलिया देना और साबुन भी, क्या ये भी मुझे ही देना होगा? रेशमा गरज उठी, नानू नानू ये लेना तौलिया और साबुन, जल्दी तैयार हो जाओ, स्कूल जाना है। गजानन राव बच्चे को स्कूल छोड़कर घर लौट आए, आते आते इमरती ले आए। फिर क्या था, रेशमा तो लट पड़ी, एक तो डायबिटीज और यह इमरती ले आए। अरे क्यों गुस्सा करती हो रेशमा जी, आपको तो बहुत अच्छी लगती है, थोड़ा मुस्कुरा दो, फूल नहीं दिखे, नहीं तो गुलाब ले आता, तेरे जूड़े में लगा देता, थोड़ी शर्म करो, वो बेटा घर पर ही है। रेशमा शर्मा कर धीरे से बोली, 60 पार हो गए हैं पर एक बार का किस्सा है। गजानन अब कम सुनने लगे थे, खाना खाया कि नहीं? नहीं अभी गाना गाया नहीं। फिर क्या, रोज रोज ऐसे ही कुछ ज्यादा सुनते या कान बजते? कोई घर आता कुछ पूछता तो गजानन राव जवाब कुछ और देते। ऐसे ही दिन बीतते रहे और वह दिन आया, गजानन राव का जन्मदिन था। खुशी का माहौल और बधाई संदेश गजानन राव को आने लगे। मोबाइल के व्हाट्सएप और फेसबुक पर ताता सा लगा रहा। शाम को घर में फूलों के गुलदस्ते के साथ मंगल कामनाएं मिली और बच्चों ने खुशियां जताई। गजानन राव ने केक काट कर सबका मुंह मीठा किया। आखिर में गजानन राव को एक गिफ्ट भी मिला, लाल कागज में छोटी सी डिबिया पर। यह क्या, डिबिया के भीतर सब आश्चर्य से देख रहे थे। बेटी ने पिता गजानन राव के कान में श्रवण यंत्र लगाया। गजानन राव को स्पष्ट सुनाई दे रहा था। सब खुशी में झूम उठे। अब गजानन राव के कान नहीं बजेंगे, रेशमा की आंखों में खुशी के आंसू थे।
1: बहुत बढ़िया सुनील कुमार जी, बहुत ही सुंदर लघु कथा आपने सुनाया। जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक मैसेज क्या देना चाहेंगे सबके लिए?
0: मैं तो ये सोच सभी के लिए कहता हूँ कि अब हम लोग वृद्ध अवस्था की ओर बढ़ते जा रहे हैं, 60 से ऊपर हो गए, 70 हो रहे हैं अभी। अपना बच्चों के साथ में अपना हिल मिल के रहना चाहिए, सभी मित्र मंडली के साथ में खुशियां बांटते हुए जाना चाहिए और सब मिलजुल कर रहे, यही एक संपत्ति है, इसके अलावा और कुछ नहीं है जीवन में, कुछ और कुछ लेके जाना नहीं है, यही मैं चाहता हूँ, सदा सब खुश रहे।
1: सुनील कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ रेडियो पुनेरी आवाज के साथ 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: इतनी ही खुशी है यहाँ की जो दो बूंद पानी में बह जाती है। जानते हो, अगर हम शहर में होते तो चाहे आंधी तूफान या बारिश जो कुछ भी आ जाता, हम लोग मजे से उसी क्लब या रेस्टोरेंट में डांस करने लगते। लेकिन यहाँ
1: अच्छा, अब देखो

लता जी, लोग कहते हैं भी तुम्हें इतना मानती हैं लता जी, तुम्हें उस्ताद समझती हैं, तुम्हें प्यार करती हैं, ये सब मैं समझती हूँ उनका बड़ापन है ना। लता तो लता है, लता जी की तरह मेरी नज़र में अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। लता जी को अल्लाह ने आवाज़ दी है, इल्म को उनके वालिद साहब से मिला, खुदा की तरफ से उन पर करम है।

0: लपक झपक तू वार बदर मा बरस बरस तू कार बदर मा लपक झपक लपक झपक लपक झपक तू आ
1: गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन

ಬರದೋ

0: कमाल की बात है लता जी
1: के इस कि
0: वो इतनी अच्छी इतनी बड़ी कलाकार है, मगर वो कभी मेरे ख्याल से ये नहीं सोचती कि मैं, हाँ मैं तो बहुत अच्छी बहुत बड़ी आर्टिस्ट हूँ, मैं लता मंगेशकर हूँ, तो मैं कोई भी वक्त कोई भी गाना किसी भी तरह गा लूँ। हम सबके लिए उन्होंने गाया, मेरे से पहले वालों के जनरेशन के लिए भी गाया और आज तक गा रही। उनमें एक बहुत बड़ी खूबी वो ये है कि वो जिस आर्टिस्ट के लिए गाती हैं वो उनके हिसाब से गाती हैं।

अजब है ये दुनिया गजब है जमाना के बुलबुल है चुप गाए उल्लू तराना सुनो है

0: ऐसे मत देखो, मेरा दिल धड़कता है।
1: दिल, हाय मेरा दिल, तेरा दिल, दिल से दिल।

है खड़ी लेकिन वहाँ कोई और थी इनके लिए है मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम हाँ देखिए साहिबो वो कोई और थी और ये नाजनी है मेरी मैं इन पे मरता हूँ।

इनको भी है मेरा खुमार, इनको भी है इनके लिए है मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम। हाथ देखिए साहिबो वो कोई और थी, और ये नाजनी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ।

गम दोस्तो रुसवा हुए हम दोस्तो इनके लिए ऐ मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम। हाँ देखिए साहिबो वो कोई और थी और ये नाजनी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ।

मुझ पर यकीन अब कम सही हा, हा। मैं सादा दिल मुझ जिम सही हा, हा। इनके लिए ऐ मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम हाथ देख।